हल्की सी ठंड के साथ त्योहारों की भी खुशबू आने लगी है और फिर से बाजार सजेंगे, रोशनी फैलेगी, उत्सवों की धूम होगी और हम दिल्ली वाले तो वैसे भी खाने पीने और मौज मस्ती में सबसे आगे होते हैं और दिल्ली वाले तो खैर हैं ही खुश दिल लोग जो बेरंग चीज में भी रंग भर दे। बाकी खाना पीना अलग, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखें और मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। वैसे अभी जो है धीरे धीरे जैसे सुबह होगी तो लोग अब पार्क वगैरह में घूमने के लिए जाएंगे और हिस्सा तो ये हेल्थ को जरूर बनाना ही चाहिए, एक अच्छी स्वास्थ्य बहुत जरूरी है और वैसे भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए एफएम गोल्ड पर बजने वाले इन गानों को सुनते रहिए। भोर सुहानी, मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और इन दो गाने के बाद में आपसे फिर मिलता हूं।

चोर पुलिस मूवी का ये गाना आपने सुना, और अब जो है मैं पंकज भूर सुहानी शो से आपसे अनुमति लेता हूँ और अगले घंटे मुक्ता होंगी आपके साथ अर्पण शो में। तो इसी तरह सुनते रहिए हर पल आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। दोबारा आपसे जल्दी मिलूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्ते।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। सुबह के 5:55 हुए हैं और आइए अब हम आपको बता दें आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, जिसमें मुक्ता आपके साथ रहेंगे। सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान अयोध्या कांड भाग 67। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात, इसमें मुक्ता आपके साथ रहेंगे। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल की कार्यक्रम, इसमें मुक्ता आपके साथ रहेंगी। सुबह 9:10 पर इंदु पांडे के साथ सुनिए कार्यक्रम स्पेशल सीरीज जन सेवा से देश सेवा भाग 12। सुबह 9:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी, इसमें आज आप सुनेंगे वर्ल्ड हार्ट डे पर और इंटरनेशनल

ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इंदु पांडे इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स आप सुन पाएंगे सुबह 10:30 पर इंदु पांडे के साथ। सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तस्वीर, जिसमें आज आप सुन पाएंगे तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम के बारे में। इसमें इंदु पांडे आपके साथ होंगे। दोपहर 12:10 पर महिलाओं का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे घर आंगन। इसमें आज आप कई विषयों पर बातचीत सुनेंगे, जिसमें मुख्य हैं एआई बन सकती है आपकी प्यारी सहेली, विश्व हृदय दिवस और प्रेरक शख्सियत लद्दाख की पहली महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्त्रिंग लेंडोल के बारे में। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी आप जानकारी हासिल कर पाएंगे। इसमें अंजलि आपके साथ रहेंगी और सोनाली रक्षित भी होंगी। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज के अभिनेता होंगे महमूद। इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत करेंगी अंजलि। दोपहर 2:30 पर संगीत.com अंजलि के साथ आप सुन पाएंगे। दोपहर 3:10 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम मन भावन। ये फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम है। इसमें देविका दत्ता आपके साथ रहेंगे। शाम 4:10 पर देविका दत्ता आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम फिल्म सॉन्ग्स। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, जिसमें 90s के गीतों का आप आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही 80s के दशक के गाने भी सुनवाए जाएंगे। देविका दत्ता इसमें आपके साथ होंगी। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विश्लेषण। इसमें विमलेश आपके साथ रहेंगे। शाम 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मार्केट मंत्रा का। तो ये थी आज एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त

0: अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the conference on Prahar, National CET Policy and Strategy in New Delhi yesterday. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning with international efforts, and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to US from today till 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 trade ministers meeting, which will commence tomorrow. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal will hold bilateral meetings with his counterparts. The engagements will focus on expanding opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, MSMEs and other enterprises. The minister also engaged bilaterally with his counterpart from the United States as part of ongoing efforts to advance a balanced and mutually beneficial India-US bilateral trade agreement and finalize an interim deal. Indian Navy will host second edition of

भक्ति और शक्ति के सर्वोत्तम प्रतीक पवन पुत्र हनुमान। मंगल की इस प्रभात अर्पण के इन क्षणों में आइए सर्वप्रथम नमन करते हैं श्री हनुमान के चरणों में। मंगलवार की इस प्रभात 6:11 और ठीक 51 सेकंड हो चले हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुक्ता है आपके साथ, सुप्रभात।

जो परमात्मा को हमेशा अपने अंग संग महसूस करता है, उसका विश्वास लगातार बढ़ता है। संत कहते हैं कि जीवन में जब हम किसी राह पर चलते हैं तो अंतर मन जिस अदृश्य शक्ति पर भरोसा करता है, वही शिव तत्व है। जब तक मनुष्य में शिव रूपी विश्वास जागृत नहीं होता, तब तक वो अपने भीतर छिपे ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। शिव विश्वास का साक्षात रूप है।

भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि भक्ति हर परिस्थिति में शांत, प्रसन्न और नेकी पर चलना सिखाती है। मन से ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को मिटाकर खुद को परमात्मा की इच्छा पर सौंपना भक्ति है। ईश्वर के प्रति निष्काम और अनन्य प्रेम भक्ति है।

जिसने ये बात मान ली कि जो कुछ हो रहा है इसकी रजा में ही हो रहा है, फिर उसे न डर होता है न चिंता होती है। अपने विश्वास के साथ भक्त आगे बढ़ता है और ये विश्वास होता है जागृत अर्पण के माध्यम से। जी हाँ, आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर रोजाना प्रभात इसी वक्त हम आपके लिए अर्पण लेकर आते हैं भक्ति के इन क्षणों के साथ। 6:30 और ठीक 50 सेकंड हो चले हैं। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। ईश्वर का तू अंश है बंदे, इसका तुझको ज्ञान नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तेरी पहचान नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, तेरी कोई जात नहीं। तू आत्मा है, शुद्ध स्वरूप है, तुझे ये बंदे ज्ञात नहीं।

अपना सब कुछ इस परमात्मा के चरणों में अर्पित करने के बाद ही जीवन में शांति आती है। और संत कहते हैं कि मन की शांति ही जीवन का वास्तविक सुख है। हमारे जीवन में धन, साधन, सुविधाएं सब हो सकती हैं, लेकिन यदि मन शांत नहीं है तो सब कुछ अर्थहीन है। प्रार्थना केवल यही कि हमारी लाज, हमारी मां, हमारे परम पिता उनके हाथ में है।

यही प्रार्थना यही कामना कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सर्वस्व के भले की कामना लिए आइए अर्पण कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। छह बजकर 44 मिनट और ठीक 30 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का, आइए श्रवण करें।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुनें।

0: 4.0 इति प्रणाल्याः स्थापनायै 23,200,000,000,000 रूप्यकाणि अनुमोदितानि। अनुमोदितया परियोजनया वाराणसी मण्डलस्य चिह्नितेषु अवशिष्टेषु खण्डेषु कवच 4.0 इति प्रणाल्याः विस्तारो भविष्यति, येन रेल परिचालनाय उपलब्धं सुरक्षातन्त्रं सुदृढं भविष्यति। उपक्रमोयम् अधिक सुरक्षितं विश्वसनीयं च रेल परिचालनं सुनिश्चेतुं तथा सम्पूर्णे भारतीय रेलजाले स्वदेशीय कवच प्रौद्योगिक्याः विस्ताराय क्रियमाणानां प्रयासानां समर्थनं करिष्यति। भारतेन स्वीय वस्तूनां सेवानां च आहत्य निर्यातस्य परिमाणं 63.8 बिलियन डॉलर परिमित धनात् वर्धयित्वा 1 ट्रिलियन डॉलर परिमितं विधातुं उच्च लक्ष्यं विनिर्धारितम्। ह्यः मुंबय्यां संजातस्य भारत संयुक्त अरब अमीरात निवेश संबंधी उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबलस्य 14 उपवेशनानन्तरं अस्य ऐतिहासिक लक्ष्यस्य घोषणाकारी। वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोदीरितं यत् जागतिक संकटेषु सत्यपि प्रवृत्तस्य वित्तीय वर्षस्य प्रथम षट् मासेषु पण्य निर्याते 15% अधिकं वृद्धिः समवापि। जापान देशस्य आइची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक प्राप्ति क्रमः ह्यः अपि अनुवर्तितः। लक्ष्यवेद क्रीडा क्रिकेट कुराश मुष्टियुद्धम इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। भारतेन पदक संख्यायां 8 पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपान्त्य चक्रे प्रविष्टम्। पुरुषाणां कुन्तक्षेप स्पर्धायां भारतस्य 2 पदके प्राप्ते, यशवीर सिंहेन रजत पदकं तथा रोहित यादवेन कांस्य पदकं अवाप्तम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्र हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस बुधवार से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तु, कृषि कारोबार, खुदरा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख अमरीकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे कारोबारियों, स्टार्टअप और नवोन्मेषी कंपनियों के साथ परिचर्चा में भी हिस्सा लेंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री

0: दल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि यूएई ने भारत में अब तक करीब 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और जल्द ही 25 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश भी करने जा रहा है। हमारा दीर्घकालिक निवेश का लक्ष्य 100 अरब डॉलर है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CV जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर POC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत, 21 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Home Minister Amit Shah inaugurated the conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi yesterday. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to US from today till the 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 Trade Ministers meeting, which will commence tomorrow. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal will hold bilateral meetings with his counterparts. The engagements will focus on expanding opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, MSMEs and other enterprises. The minister will also engage bilaterally with his counterpart from the United States as part of ongoing efforts to advance a balanced and mutually beneficial India-US bilateral trade agreement and finalize an interim deal. The Supreme Court has directed the Centre and the CBSE to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three-language framework that has been granted to students of Class 7. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohanna asked the Centre and the CBSE to grant the same relaxation granted to students of Class 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. The Solicitor General told the bench that the latest data showed that implementation-related difficulties affected only about 1.2% of CBSE-affiliated schools. According to the centre, nearly 99% of schools had adopted the third language policy and had the necessary facilities. Indian Navy will host the second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation operational and area commanders. On the opening day of the conference, Defence Minister Rajnath Singh will share his vision and guidance on national maritime perspectives and expectations from the Indian Navy. The Chief of the Defence Staff and the Chief of the Army Staff will also engage with naval commanders to foster tri-services synergy and integration. The FASTag annual pass has crossed the significant milestone of 1 crore passes issued after its launch on 15th of August last year. Minister of Road Transport and Highways said that the milestone reflects growing acceptance of the annual pass among private vehicle owners for providing a seamless and economical travel option on the national highways and expressways. India has dispatched about 3 tons of anti-tuberculosis medicines to Colombo to help support Sri Lanka's public health system. In a social media post, External Affairs Minister S. Jaishankar announced the dispatch and expressed India's commitment to supporting its neighbouring country. Dr. Jaishankar said India remains committed to supporting Sri Lanka's public health system. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over parts of northeast India, Andaman and Nicobar Islands, south interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. According to IMD, thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over Madhya Maharashtra, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe, Konkan, Goa and Odisha today. Meanwhile, IMD has said that the line of withdrawal of southwest monsoon continues to pass through Gurdaspur, Chandigarh, Muzaffarnagar, Alipur, Dholpur, Udaipur, Disa and Nalia. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya, Japan, with athletes and shooters adding several medals to the country's tally. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. In shooting, Isha Singh won silver in the women's 25-meter pistol individual event. Currently, India are 12th in the Asian Games medal standings with a total of 40.
2: आकाशवाणी पुणे प्राची गावस्कर प्रादेशिक बातम्या देत आहे. ठळक बातम्या. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान करणार राज्यातल्या दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळी आधी मदत मिळण्यासाठी अचूक पंचनामे करण्याचे महसूल मंत्र्यांचे निर्देश. पुणे आर्थिक प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 2036 पर्यंत 200 ते 220 अब्ज डॉलर पर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट. चाकण हिंजवडीतली वाहतूक आणि नागरी सुविधांसाठी एकात्मिक पायाभूत विकास आराखड्याला मुख्यमंत्र्यांची तत्वतः मंजुरी. आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 3 ऑक्टोबरपासून नियोजित 3 परीक्षा लांबणीवर. आता सविस्तर बातम्या. राज्यातल्या दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक पाठवण्यात येणार असून केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहानही राज्याचा दौरा करणार आहेत. नवी दिल्लीत राष्ट्रीय कृषी संमेलनात चौहान यांनी स्वतः काल ही माहिती दिली. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगामातलं पीक नियोजन पाण्याच्या उपलब्धतेवर आधारित असावं, तसंच प्रत्येक राज्य आणि जिल्ह्यानं सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी आणि जमिनीतला ओलावा यांचं मूल्यमापन करून त्यानुसार पिकांची निवड करावी असं चौहान यांनी सांगितलं. या राष्ट्रीय कृषी संमेलनात केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान आज सर्व राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करणार आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळी आधी मदत मिळावी यासाठी अचूक पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल दिली. नांदेड जिल्ह्यातल्या अर्धापूर इथं पीक परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर ते बोलत होते. शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि पीक विम्याच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी नुकसानाचे पंचनामे अचूक होणं आवश्यक असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावीपणे मदत मिळू शकते असंही बावनकुळे यावेळी म्हणाले. राज्य सरकारनं दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी काढलेल्या आदेशामध्ये अपेक्षित थेट आर्थिक मदत नसल्याचा आरोप करत लातूरमध्ये क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेनं आंदोलन सुरू केलं आहे. तर नाशिक जिल्ह्यातल्या 4 तालुक्यांना दुष्काळाच्या ट्रिगर वन मधून वगळण्याचा आरोप करत काल महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांनी चांदवड तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. दुष्काळ निवारणासाठी आगामी 8 ते 9 महिन्यांचं ठोस नियोजन सुरू असून राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे अशी ग्वाही महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम

0: ऐसे ही खूबसूरत से गीत इंतजार कर रहे हैं आपका, लेकिन ब्रेक के उस पार जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, बहुत खूबसूरत एहसास है ये प्यार, और जिसने किया है, जिसने इसको जाना है, वो इसकी खूबसूरती में, इसके नशे में ही रहता है हरदम हर पल। जीवन में कोई मुश्किल भी आ जाए तो उसका सामना करने की ताकत दे देता है ये प्यार। और अगर जीवन में ये प्यार नहीं है तो ये मानकर चलिए कि खुद के अंदर विश्वास, खुद से प्यार, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी वाली बात हो जाती है। तो अपने आप से प्यार करना सीखिए, खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। गोल सुप्रभात यहीं तक। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। मुक्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में हिंदी साहित्य में छायावाद की प्रमुख स्तंभ कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि मनुष्य को आलस्य का त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। महादेवी कहती हैं कि इंसान को अपनी पुरानी असफलताओं और दुखों को याद करके ठंडी सांसें नहीं भरनी चाहिए। जब हृदय में दृढ़ संकल्प और कुछ करने की आग होगी, तभी आंखों में आने वाले मनुष्य के आंसू भी सार्थक हो जाएंगे। कवित्री मनुष्य के मन के भीतर जीवंतता की अलख जगाने के लिए कहती हैं कि यदि इस सफलता रूपी साधना के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें हार का भी सामना करना पड़े, तो वो तुम्हारी हार स्वाभिमान और विजय की पताका बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पतंगा दीपक की लौ में जलकर राख तो हो जाता है, लेकिन वो राख उस अमर दीपक की निशानी बन जाती है। महादेवी श्रोताओं आगे कहती हैं कि हे कर्तव्य पथ के साधक, तुम्हें संघर्षों और कांटों रूपी अंगारों की शैया पर भी अपने कोमल मन से प्रेम और शांति के फूल बिछाने हैं, अर्थात तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य और कोमलता बनाए रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो श्रोताओं, सफलता के सौंदर्य रस से सनी हुई इन स्वर्णिम पंक्तियों को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए सफलता के मार्ग पर, मनुष्यता के मार्ग पर। आज के दिन की इस खूबसूरत और सुहावनी प्रभात में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम के इस अंक में आज मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू आज सवेरे, योर डेफिनेटिव डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम विद मी शगुन चोपड़ा एंड मुकेश। टुडे वी आर वेरी थ्रिल्ड, वेरी एक्साइटेड टू बिगिन इट, एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द हार्ट बीट ऑफ द नेशंस मेट्रो सिटीज। वी डाइव इनटू द लोकल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स टू, एंड आवर लास्ट सेक्शन इज स्पेशली क्यूरेटेड विद अ मिक्स ऑफ म्यूजिक। वी विल ऑल्सो हैव डायलॉग्स। It's actually dedicated to the personalities who were either born or they passed away today. Today it's 29th of September 2026, and we are very thrilled to begin our program. This is a beautiful morning. It's gotten cold.
0: जी बिल्कुल.
1: Right? Weather-wise. And now listeners, without any further delay, we are starting with the headlines first. जी.
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में श्री

0: ने दिल्ली के 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है। इस कार्य योजना के अंतर्गत श्रोताओं, दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं जैसी व्यवस्था लागू की जाएगी। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली में मेट्रो सारथी ऐप को भी इस अभियान के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा।
1: The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education CBSE to consider extending to the current class 6 students the exemption from the 3-language framework that has been granted to students of class 7. The bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joymalia Bakhchi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and additional Solicitor General Aishwarya Bhatti appearing for the Centre and the CBSE to grant the same relaxation granted to students of classes 7, 8 and 9th to students of class 6 this year.
0: और अब रुक करते हैं कृषि से जुड़ी खबर का। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से समन्वित योजना, वैज्ञानिक आकलन और जमीनी स्तर पर गहन निगरानी के माध्यम से रबी मौसम की तैयारियों को पूरा करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 में श्री चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और जल संकट के बीच खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीकों के बजाय आंकड़ों पर आधारित योजना और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना आवश्यक होगा।
1: Telling you about Kavach 4.0, Indian Railways has approved 223 crore rupees for Kavach 4.0 on more than 614 route kilometers of Varanasi division of Northeastern Railway. The approved project will extend Kavach 4.0 coverage across the identified balanced sections of Varanasi division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. So Kavach is an indigenously developed automatic train protection system which is designed to enhance operational safety.
0: और अब रेलवे के बाद देश के पशुधन के बारे में जानकारी। तो सरकार ने नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत भी कर दी है। ये पोर्टल पशुधन बीमा योजना के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग की पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, बीमा दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा।
1: Well, Mukesh, National Cardiovascular Disease Summit 2026 has put prevention and early detection at the center. So cardiovascular diseases, as we already know, they remain the world's leading cause of death, accounting for almost 29% of all deaths globally. So against this backdrop and just days ahead of World Heart Day on 29 September, the National Cardiovascular Disease Summit 2026 in Goa renewed focus on prevention, early detection and timely treatment for cardiovascular care across India. We have a detailed report from our correspondent from Goa. Let's listen in.
2: 3-day national summit was organized by the government of Goa in association with Tricog Health. The theme was policy and implementation for scalable cardiovascular care. The summit brought together policymakers, cardiologists, physicians, endocrinologists, pediatric and maternal health specialists, public health leaders, researchers, program implementers, and health technology experts. It saw participation from states like Uttar Pradesh, Karnataka, Odisha, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, and others. Sessions examined the burden of cardiovascular disease and the way hypertension, diabetes, dyslipidemia and cardio-kidney metabolic risk feed into it. The summit aims to serve as a dialogue forum that moves the country towards a healthier India. For Aaj Saveri, Mahesh Sopade, Panchi.
0: श्रोताओं, आज विश्व हृदय दिवस है। यह दिवस हृदय रोगों से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी एक कहानी जिसे लिखा और आवाज दी है हमारी सहयोगी इशिका और परम ने।
3: रमेश जी उठिए, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। रोज सुबह चाय और नमकीन ठीक नहीं है।
4: अरे मुझे कुछ नहीं होगा।
3: यही तो आप हमेशा कहते रहते हैं। डॉक्टर ने भी कहा है नमक और तेल कम कीजिए और थोड़ा टहला कीजिए।
4: समय कहाँ मिलता है?
3: 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। सेहत के लिए इतना समय तो देना ही चाहिए ना।
4: मुझे लगा था मैं ठीक हूँ।
3: मैं भी तो कब से यही कह रही थी, मैं आपको डराना नहीं चाहती।

0: दीदी, बस चाहती थी कि आप अपना ध्यान रखें।
1: अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगा।
0: मेरी नहीं, अपने दिल के सुनिए। बीमारी का इंतजार मत कीजिए। चलिए रमेश जी, आज से पार्क की सैर शुरू। खाने में नमक और धूम्रपान से दूरी और डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित जांच करना होगा।
1: और नमकीन?
0: कभी कभार चलेगा, लेकिन सेहत से समझौता नहीं।
1: ठीक है,
0: बस यही ठीक है रोज सुनना है मुझे। देखिए, दिल की धड़कन अनमोल है, इसे कल पर मत टालिए, आज से ही अपने दिल के सुनिए।
2: श्रोताओं, क्या खूबसूरत संदेश इस कहानी में दिया गया है कि दिल की धड़कन जो है हमारी वो अनमोल है। क्योंकि बिना दिल अगर हम बात करें तो धड़के तो इस दुनिया में कुछ नहीं है
3: जी।
2: तो ये कहानी हमें संदेश देती है कि एक स्वस्थ दिल में ही स्वस्थ जीवन की धड़कन बसती है। तो इस विश्व हृदय दिवस पर अपने दिल के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित तौर पर योगा, व्यायाम और जैसी गतिविधियों में संलग्न रहें। इसके अलावा अब बात करते हैं एक और खास खबर की। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी वाहनों के लिए शुरू किए गए फास्टैग वार्षिक पास की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये पास राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर लगभग 1000 से अधिक टोल प्लाजाओं पर मान्य है, जिससे 1 वर्ष की वैधता या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग के लिए 3075 रुपये के एकमुश्त शुल्क का भुगतान करके फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
4: India has reaffirmed its commitment to combating racism, racial discrimination, xenophobia and related forms of intolerance during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. Delivering India's official statement at the high-level meeting marking the 25th anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action yesterday, Ministry of External Affairs Secretary West C.B. George underscored New Delhi's stance on promoting global equality and human dignity.
2: उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने और पदक जीत लिए हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद की अगर हम बात करें शगुन, तो श्री शंकर मुरली ने इस स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया है। फिलहाल भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। भारत के कुल 45 पदक हैं, इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। और अब रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा शगुन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से उद्यमियों, व्यापारियों, MSME, स्टार्टअप्स, औद्योगिक इकाइयों और निवेशकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और अनुमतियों तक एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से आसान पहुँच मिलेगी। और दिल्ली सरकार ने राजधानी की समृद्ध कला, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और शैक्षणिक परिदृश्य को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की भी शुरुआत की है। और चेन्नई से आपके पास क्या है शगुन?
4: So Mukesh, the first update, it's about the Southern Bench of the National Green Tribunal, which has directed a starch firm to submit a compliance report to Tamil Nadu Pollution Control Board following several violations found during inspections. So TNPCB found that the firm had deployed additional machinery and commenced processes including commissioning of a corn steeping liquor evaporator without consent. Another update, Mukesh, the Consul General of France in Chennai and Puducherry, Etienne Roland Pieg, has said that the French companies have identified Chennai's potential as an innovation ecosystem about trade. This includes trade and economic collaboration between TN and France and the upcoming free trade agreement between India and EU. He has said that approximately 150 French companies operate in the state, including listed MNCs, family-owned businesses and entrepreneurs. So the first major automotive manufacturing and components with companies such as Renault and Valeo and Michelin. So this was the these were actually the updates from Chennai.
2: जी, और अब ले चलते हैं शगुन अपने श्रोताओं को मुंबई की तरफ, जहां पर

0: आज से फिक्की फ्रेम्स 2026 का शुभारंभ हो रहा है। इस वर्ष के फिक्की फ्रेम्स का विषय है भारत का मीडिया असीमित सामग्री के युग में मूल्य सृजन। इससे जुड़ी और जानकारी के लिए चलते हैं मुंबई में हमारी संवाददाता प्रार्थना के पास।
1: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के अम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र में फिक्की फ्रेम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा, जो फिक्की के पूर्व अध्यक्ष और जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर को दिया जाएगा। कार्यक्रम में भारत की स्क्रीन अर्थव्यवस्था, सिनेमा, डिजिटल क्रिएटर्स, खेलों में दर्शक अनुभव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कॉपीराइट सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी।
0: और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सतत सार्वजनिक वित्त समिति को राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार के लिए 6 महीने के भीतर एक कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया है। समिति संसाधन जुटाने, लेखांकन और उपलब्ध संसाधनों के कुशल आवंटन की समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति की सिफारिशों का उपयोग मौजूदा सरकारी प्रणालियों में बदलाव लाने के लिए किया जाएगा।
2: Let's now, Mukesh, head to Bengaluru. The first update, it's very, very interesting, so listen in intently, listeners. Scientists, including researchers from Bengaluru's Raman Research Institute, have achieved a significant breakthrough in astronomy with the first standalone detection by the Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, radio telescope of the faint glow of hydrogen from a time when the universe was about 5 billion years old only. The international team says the discovery opens a new way to study the expansion of the universe and the mysterious nature of dark energy. The technique would enable scientists to conduct such studies on much larger scale and at low cost and without depending on galaxy surveys from other telescopes. 3 teams from the union government will visit Karnataka to assess the drought situation. Deputy Chief Minister and Revenue Minister G. Paramaveshwara said that the teams will cover the Tumakuru, Chitradurg, Devanagari region, North Karnataka and the Mysuru region, including Mandya and Chamarajanagar.
0: अब चलते हैं कोलकाता की तरफ, जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर पात्र जूट मिल श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत किफायती आवास उपलब्ध करा रही है। राज्य के श्रम मंत्री अर्जुन सिंह ने कल बताया कि भारत में कहीं भी पक्के मकान के मालिक न होने वाले 3 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले जूट मिल श्रमिक इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। प्रत्येक आवास इकाई का क्षेत्रफल 30 से 45 वर्ग मीटर होगा, जिसमें 2 कमरे, 1 रसोईघर और 1 शौचालय शामिल है। प्रत्येक आवास की कुल लागत 5,50,000 रुपए है, जिसमें से संबंधित श्रमिक 50,000 का योगदान देगा। केंद्र सरकार 1,50,000 प्रदान करेगी और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तो शगुन, ये लोगों के आवास को सुगम बनाने के लिए कितनी एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल है।
2: That is true, Mukesh. Now let's head to Hyderabad.
0: बिल्कुल।
2: Voting for the University of Hyderabad Students Union elections concluded peacefully yesterday, recording an estimated turnout of nearly 80% across most departments and out of roughly 5,900 eligible voters. A strong majority turned out to decide the fate of 220 candidates competing for 9 central executive roles and 59 school board councillor positions across 13 academic divisions. So these were Metro City updates.
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और शगुन के साथ। और अब जानते हैं कि आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मौसम की, जहां पर कल रात से ही अगर हम देखें तो हवाओं में थोड़ी सी हम बात करें शगुन, तो ठंडक सी महसूस होने लगी है।
2: इट्स गॉटन कोल्ड।
0: बिल्कुल, जैसे आज मैं सुबह जब कार्यालय आ भी रहा था तो मुझे एक सामान्य तौर पर जो वातावरण महसूस होता है उससे इतर एक हल्की ठंड का एहसास हुआ
2: जी। तो एंड इट इज नॉट ह्यूमिड नाउ एक्चुअली।
0: ना ना, ये बिल्कुल ह्यूमिड वाली सिचुएशन नहीं है, ये बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि हम खुशनुमा मतलब मौसम जैसा दिल्ली में कुछ एंजॉय करने वाला मौसम बन गया है। तो राजधानी में आज अगर हम बात करें मौसम की, तो दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बौछारें भी पड़ सकती हैं। शहर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर हम बात करें कोलकाता की तो आज वहाँ भी बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

0: अब आप बताइए शगुन, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल।
1: सो मुकेश, चेन्नई इज लाइकली पार्टली क्लाउड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म इन चेन्नई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टली क्लाउडी स्काई। द टेंपरेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 28 डिग्रीज एंड मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस। इफ वी टॉक अबाउट बेंगलुरु, इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन, मिनिमम टेंपरेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 21 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द मैक्सिमम मे रीच 31 डिग्री सेल्सियस। Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. Temperatures are expected to range from 23 degrees Celsius to 34 degrees Celsius in Hyderabad.
0: श्रोताओं, आज का इतिहास जानने से पहले अब मौसम का तो हमने हाल जान ही लिया है, तो बात करते हैं एक सवाल जो हमको कह सकते हैं कि विचलित करता है। वो सवाल है कि अगर आपकी प्लेट में रखा हुआ खाना बोल पाता तो वो आपसे क्या कहता?
1: Maybe. It's just a guess that I'm venturing. जी. Please don't waste me. बिल्कुल. Someone somewhere is waiting for
0: बिल्कुल,
1: me eagerly.
0: बिल्कुल.
1: So have you ever wondered how much goes into the food on your plate? जी. Behind every grain of rice and every vegetable, there are the resources and raw materials which we can name as raw materials I use because of the lack of a better word, water, जी. Land, energy, time, and बिल्कुल. Most importantly, a farmer's hard work. Yet, huge amounts of food is lost every day and is also wasted every day. That is why 29th of September is observed as the International Day of Awareness of Food Loss and Waste with a simple message, Mukesh, stop food loss and waste for the people, for the planet.
0: जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो इससे संबंधित जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं कि दुनिया के भोजन का लगभग 13% से अधिक हिस्सा हार्वेस्ट या रिटेल तक पहुंचने से पहले ही बीच में कहीं खो जाता है, जबकि करीब 19% भोजन घरों, रेस्टोरेंट्स और रिटेल सेक्टर में बर्बाद हो जाता है। यानी भोजन ही नहीं अगर हम बात करें उसे सृजित करने में लगे संसाधन भी जो है इस प्रक्रिया में बर्बाद होते हैं। ये बहुत एक चिंता का विषय है। बिल्कुल।
1: And the impact goes beyond food. When food waste ends up in landfills, it contributes to greenhouse gas emissions.
0: बिल्कुल।
1: And thereby that leads to climate change.
0: बिल्कुल।
1: And at the same time, Mukesh, millions of people, they struggle to access enough nutritious food every day. And reducing food loss and waste, it may mean protecting resources, supporting food security, and building a sustainable future together.
0: बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए अगर हम बात करें तो एक सशक्तिकरण का प्रयास हमारा होगा जो खाने की कमी से जूझ रहे हैं। तो इस कड़ी में हम शुरुआत अपने शगुन घरों से ही कर सकते हैं कि ज़रूरत के अनुसार ही खाना खरीदें, सही तरीके से उसको रखें। याद रखिए, हमारी छोटी सी जो आदतें हैं श्रोताओं, वो एक बड़ा बदलाव इस संदर्भ में ला सकती हैं।
1: And especially at wedding events and functions, we should choose the food items as per the requirement, as per our hunger at that particular moment, so that food is not wasted. That must be our intent. And this 29th September, let's make every meal count. Well, plan it, save it, share it. And don't waste it.
0: जी बिल्कुल। और इस बारे में एक अंतिम संदेश हम अपने श्रोताओं तक यही पहुंचाना चाहेंगे कि उतना ही लें थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में।
1: Exactly, that is true. Stop food loss and waste for the people, for the planet. True?
0: बिल्कुल। अब बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो बरस 1836 में मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना आज ही की तारीख को हुई थी।
1: In the year 1911, Italy declared war on the Ottoman Empire, beginning the Italo-Turkish War. And in 1913 now, Rudolf Diesel, the inventor of diesel engine, disappeared from the steamship Dresden while traveling from Antwerp to England. In 1915, the first transcontinental message by telephone was sent.
0: 1959 में भारतीय तैराक आरती साह ने 16 घंटे 20 मिनट में इंग्लिश चैनल पार किया और ऐसा करने वाली वो एशिया की पहली महिला बनी। इसके 3 वर्ष बाद यानी कि 1962 में आज ही की तारीख को कोलकाता के एमपी बिरला तारामंडल ने जो है परिचालन में काम करना शुरू किया था।
1: In 1938, Britain, France, Germany and Italy reached the Munich Agreement, under which Germany was permitted to annex the Sudetenland land of Czechoslovakia. In 2010, the Aadhaar scheme was officially launched and in Tembili village, Shahada Taluka, Nandurbar district, Maharashtra.
0: और अब समय है श्रोता उन महान विभूतियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो इस कड़ी में बात मातंगिनी हजारा की, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे भारतीय स्वतंत्र

0: स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाली बंगाल की वीरांगनाओं में से एक थी। वर्ष 1942 में आज ही की तारीख को एक बड़ा जुलूस तामलुक की कचहरी और पुलिस लाइन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। मातंगिनी इसमें सबसे आगे रहना चाहती थी, किंतु पुरुषों के रहते एक महिला को संकट में डालने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ उस काल में। जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा, ब्रितानी सेना ने बंदूकें तान ली और प्रदर्शनकारियों को रुक जाने का आदेश दिया। ठीक इसी समय जुलूस के बीच से निकलकर मातंगिनी हजारा सबसे आगे आ गई। मातंगिनी ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में लिया, अंग्रेजी सेना ने चेतावनी दी और फिर गोली चला दी। पहली गोली मातंगिनी के पैर में लगी। जब वो फिर भी आगे बढ़ती रहीं एक हौसले के साथ तो उनके हाथ को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने तिरंगा फिर भी नहीं छोड़ा। इस पर तीसरी गोली उनके सीने पर मारी गई और इस तरह एक वीरांगना ने मां भारती के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो नमन है ऐसी वीर सपूत को।
1: टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग नालापट बालमणि अम्मा, द पोएट हु रोट इन मलयालम। सो she was the recipient of many awards and honors, including Padma Bhushan, Saraswati Samman, Sahitya Academy Award, and the works, her works, let me talk about two of her very famous works, Muthassi, Grandmother, and Maruvinte Katha, The Story of the Axe. They are some of her well-known works. I was telling you about Nalapat Balamani Amma.
0: Ji. आज प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी की भी जयंती है। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता भी रहे, जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज से अपना करियर शुरू किया और फिल्मिस्तान फिल्मालय स्टूडियो की स्थापना भी की। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें दिल दे के देखो, लव इन शिमला और जागृति जैसी फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। शशिधर मुखर्जी हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित मुखर्जी परिवार का हिस्सा थे, जिनमें उनके बेटे जॉय मुखर्जी और पोती रानी मुखर्जी शामिल हैं। तो आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया गया ये नगमा।

0: श्रोताओं, आज जयंती है बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद की। महमूद का जन्म 1932 को हुआ। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सराबोर उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। तो आइए सुनते हैं उनका ये संवाद।
1: एक डरावना जंगल है जहाँ मछलियाँ घास चल रही, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती है, बिल्कुल अजीब। अरे एक साया, लंबा साया चला रहा, ऐसा लगता है जैसे जलती हुई चिता पर से एक मुर्दा चला रहा है। मुर्दा जगह बिजली चमकी, बिजली छत पर, छत पे बिजली चमकी और बारिश की ये मोटी मोटी बूंदे पक पक जमीन पे गिरने लगी। और जो ही दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा खुद बखुद।
2: Oh wow, that's amazing display of his talent. Mehmood's early life was all about mimicking Bollywood actors of that era and building an incredibly powerful connection with Indian cinema.
0: और श्रोताओं, ये एक गाना भी जो है आपके सामने जो पेश होने वाला है, ये महमूद पर ही फिल्माया गया है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह

0: सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गाँव में रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: नाम है चुन्ना हल्दा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उल दर है। उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर

0: से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, किशोरियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने UPI भुगतान

0: जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्य ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर टू कंसीडर एग्जेम्प्टिंग क्लास 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम सीबीएसई'स 3-language पॉलिसी दिस ईयर। इंडियन नेवी टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 इन न्यू दिल्ली फ्रॉम टुडे टिल थर्सडे। दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयर्स टफर एक्शन प्लान टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल ड्यूरिंग विंटर सीजन। US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. And Indian men's cricket team advanced to the semi-finals at the Asian Games in Japan. The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the 3-language framework that has been granted to students of Class 7. We have more from a correspondent.
3: A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bharti appearing for the Centre and the CBSE to grant the same relaxation granted to students of Classes 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. On September 17, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of 3 languages, including 2 native Indian languages for Class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE statement, the current batches studying in classes 7, 8 and 9 would not be required to give board examination in third language when they progress to class 10. The Solicitor General has submitted that about 99% of schools have adopted the third language policy and have been provided the necessary facilities, and only about 1.2% of the schools have not. During the hearing, the Centre however maintained that it was not inclined to exempt the current class 6 batch from the policy and said students should pursue the new language framework from the current academic year itself. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
2: Indian Navy will host the second edition of the Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The 3-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation operational and area commanders. It will undertake a comprehensive review of operational preparedness at the military strategic level and engage with senior government functionaries through an institutionalized mechanism. The conference will be pivotal in underscoring Indian Navy's contribution towards safeguarding India's maritime interests, including security of energy amidst the ongoing conflicts in West Asia. On the opening day of the conference, Defence Minister Rajnath Singh will share his vision and guidance on national maritime perspectives and expectations from Indian Navy. Delhi government has prepared a tougher action plan to control air pollution in the national capital during the winter season. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level meeting with Delhi Chief Minister Rekha Gupta to review the air pollution mitigation.

0: गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। हुक्काम मुतासिर अजला की सूरतहाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: उत्तराखंड में मौसमी हालात में बेहतरी के बाद चार धाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कि मुतालिका जिले मजिस्ट्रेटों को जरूरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मौसम की पेशगोई और यात्रियों की हिफाजत के मद्देनजर चार धाम यात्रा 26 सितंबर के दोपहर से 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। इस दौरान चिरबासा के करीब केदारनाथ धाम ट्रेकिंग रूट पर मरम्मत और दीगर तामीरी काम जारी है। चिरबासा के करीब शदीद बारिश के बाद मलबे और चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से गोरी कुंड के ऊपर बने तकरीबन 2.5 किलोमीटर के इस रास्ते को नुकसान पहुंचा था। उड़ीसा में हीराकुंड डैम के बालाई इलाकों में जारी शदीद बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी में इजाफे से महानदी के इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। हीराकुंड डैम के 28 दरवाजे खुले हैं जिनसे तकरीबन 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। कटक के नज़दीक मुंडली में छोड़े जा रहे पानी की मकदार बढ़कर तकरीबन 8 लाख क्यूसिक हो गई है, जिस पर करीबी नज़र रखी जा रही है। फिक्की फ्रेम्स 2026 आज से मुंबई में शुरू होगा। इस साल के फिक्की फ्रेम्स का उन्वान है भारत में मीडिया का दौर, लामहदूद कंटेंट के दौर में अखदार की तश्कील। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स 2026 में इफ्तिताही खिताब करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के एम्बेसडर और अदाकार आयुष्मान खुराना भी तकरीब से खिताब करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के इफ्तिताही इजलास के दौरान फिक्की के साबिक सदर और जियो स्टार के नायब चेयरमैन उदय शंकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट इनाम दिया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान भारत की स्क्रीन मईशत, सिनेमा, डिजिटल क्रिएटर्स, स्पोर्ट्स वीविंग, मसनूई जहानत और कॉपीराइट के अलावा दीगर मामलों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: अमरीका, भारत और दीगर 19 मुल्क ममालिक से गैर मामूली तिब्बी हालात के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ स्पेशलिटी दवाओं और उनसे मुतालिक अज्जा की दरामद पर किसी तरह का महसूल आयद नहीं करेगा। अमरीका के कॉमर्स के महकमे ने विफाकी रजिस्टर में इन ममालिक की फहरिस्त शाई की है, क्योंकि वो कुछ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स दरामदात और उससे मुतालिक अज्जा पर 29 सितंबर से 100% महसूल आयद करने की तैयारी कर रहा है। सिफर महसूल वाली मसनूआत में गैर मामूली बीमारियों के इलाज की सभी दवाएं, बांझपन के इलाज, खुलियात की थेरेपी, जेन थेरेपी, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स और जानवरों की दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं के अज्जा पर भी कोई महसूल आयद नहीं होगा। भारत के अलावा सिफर महसूल के जुमरे में यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, बरतानिया और वियतनाम शामिल हैं। ये इस्तिस्ना ट्रंप के अप्रैल ऐलान पर अमलावरी का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने तजारती तौसी के कानून की दफ़ा 232 के तहत फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स अज्जा की दरामदात को तरतीब देने की बात कही थी। भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम मैदान में उतरे बगैर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईसी नागोया में खराब मौसम की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ इसका क्वार्टर फाइनल मुकाबला मंसूख कर दिया गया। इसके साथ ही जापान के आईसी नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारत का तमगे जीतने का शानदार सिलसिला जारी है। खिलाड़ियों और निशानेबाजों ने मुल्क के तमगों की तादाद में कई तमगों का इजाफा किया है। एथलेटिक्स में भारत ने मर्दों के जेवलिन थ्रो में 2 तमगे जीते। यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर में बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। मर्दों के लॉन्ग जंप में श्री शंकर मुरली ने 8.70 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
0: शुक्रिया कली। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने UPI लेन देन पर चार्जेस से मुतालिक खबर को नुमाया किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR नाफिज करने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रोजनामा प्रताप ने आइंदा मौसम सरमा के पेश नज़र फजाई आलूदगी से निपटने के लिए दिल्ली हुकूमत की तैयारी के हवाले से शह सुर्खी लगाई है। फजाई आलूदगी से निपटने के लिए जंगी सतह पर तैयारी जारी। वर्क फ्रॉम होम, तामीरी व इन्हदामी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी समेत कई अहम फैसले। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर आजम ने मोदी ने लता मंगेशकर को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि उनकी आवाज़ नस्लों तक गूंजती रहेगी। अखबार की एक दिगर सुर्खी है, वजीर खजाना

0: निर्मला सीतारमन कतर के दौरे पर पीर की सुबह दोहा पहुंची।
1: खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो इस साल CBSE की 3 जबानों की पॉलिसी से छठी जमात के तलबा को मुस्तस्ना करार देने पर गौर करे। भारतीय बहरिया आज से आइंदा जुमेरात तक नई दिल्ली में दूसरी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करेगी। दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा के दौरान कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। अमरीका ने भारत और 19 दीगर मुल्कों से दरामद की जाने वाली खसूसी दवाओं पर आयद महसूलात को ख़त्म कर दिया है और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ।

हार जीत है जीवन का हिस्सा, महत्वपूर्ण ये है कि इनसे उठकर हम काम कैसे करते हैं। जोश, खुशी और पॉजिटिविटी को साथ लेकर म्यूजिकल दिल लगी करते हुए बढ़ते रहे ना आगे। 8:46 और ठीक 7 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मंगल की मुक्ता है आपके साथ।

जी हाँ, ये दिल लगी इम्तिहान लेती है और इस इम्तिहान से ऊपर उठना ही हमारा काम है। अगर हम बात करें दिल लगी की, तो फिर आज तो है भी वर्ड हार्ट डे। अपने दिल का रखिए ख्याल और करते रहिए अपने सेहतमंद दिल के साथ म्यूजिकल दिल।

0: जनाब, जीवन में परीक्षाएं तो चलती रहेंगी, कभी हालात की, कभी परिस्थिति की, कभी वक्त की और कभी रिश्तों की। इन परीक्षाओं से ऊपर उठकर डू नॉट मिस अ बीट। जी हाँ, सुननी है अपने दिल की धड़कन। वर्ड हार्ट डे पर अपने शरीर के लिए ही नहीं, अपने मन के लिए भी अपने दिल का रखना है ख्याल। और अगर दिया हुआ है ये किसी और को, तो उसका भी तो होगा आपके पास, उसका भी रखिएगा ख्याल। करते रहिए म्यूजिकल दिल लगी आकाशवाणी की एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार

का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

संगीत का ये जश्न आपकी जिंदगी में भी यूं ही चलता रहे और आप हर पल हर लम्हा इसी तरह एंजॉय करते रहें, इसी कामना के साथ फिलहाल मंगल की मुक्ता लेगी आपसे इजाजत। अभी हिंदी और अंग्रेजी में होंगे समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित 3 भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि की बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुँच बेहतर हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले और उसके दौरान जरूरी उपायों की समीक्षा की गई। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले 8 वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। अमरीका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण कर्नाटका के आंतरिक हिस्सों

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटी सी उंगली जिसने पहली बार स्कूल की किताब को छुआ, एक गाँव का बच्चा जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना ही कभी सबसे बड़ी चुनौती थी, और एक युवा जिसके हाथ में डिग्री तो थी लेकिन दुनिया बदल रही थी और उसके सामने सवाल था कि क्या मेरी शिक्षा मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ कक्षा, किताब और परीक्षा का नाम नहीं है। शिक्षा वो नींव है जिस पर किसी व्यक्ति का भविष्य और किसी राष्ट्र की दिशा तय होती है। गुजरात में शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे प्रयासों से शुरू हुई एक सोच ने स्कूल में प्रवेश से लेकर सीखने की गुणवत्ता तक का सवाल उठाया, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, कौशल विकास, विशेषज्ञता आधारित उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा में सुधार ने शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल और क्षमता से जोड़ने की दिशा तय की। इसी यात्रा में परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा को जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि सीखने की यात्रा का एक पड़ाव मानने की बात की। तो गुजरात से दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में बिताए 25 वर्षों में क्या कुछ बदला इस दिशा में, आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज का हमारा विषय है शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व UGC सदस्य सुषमा यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद और नमस्कार।
1: संजीव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव प्रयोग शुरू किए थे, और इसका असर ये हुआ कि राज्य में ड्रॉपआउट रेट काफी कम हो गए, और यहीं से जब आगे बढ़े तो निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं तो गुजरात के उस मॉडल और आज के राष्ट्रीय विजन के बीच आप किस तरह का समायोजन या संबंध देख पा रहे हैं?
3: जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि विकसित भारत बनने की 2047 में, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है उसके नागरिकों की शिक्षा। जब देश शिक्षा में निपुण होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकता है। तो इस विषय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब 25 साल पहले अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करी थी एज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां स्टेट में देखा, गुजरात तब शिक्षा के स्फेयर में इतना डेवलप्ड नहीं था, तो उन्होंने देखा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है। सो उन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स, एक शाला प्रवेशोत्सव जिसमें की एंट्री एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया था 2003 में। सबसे पहले जो ड्रॉपआउट रेट था 37% था गुजरात में, तो धीरे धीरे करके इससे बढ़ते हुए बहुत कंसिडरेबल ड्रॉपआउट रेट रिड्यूस हुआ। तो एक तो ये था, और दूसरा था गुणोत्सव जिसमें की इवेल्युएशन और अकाउंटेबिलिटी बच्चों की देखी जाती है। तो इन दोनों इनिशिएटिव से उन्होंने आगे प्रयोग शुरू किया और उसको अब स्टेट लेवल, जैसे गुणोत्सव तो असम में भी अडॉप्ट हुआ और कुछ और स्टेट्स भी अब करना चाह रही हैं, और नेक्स्ट इनिशिएटिव 7th एडिशन जो है वो जनवरी 7, 2027 को होगा असम में, और गुजरात में तो चल ही रहा है। तो ऐसे इनिशिएटिव जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे भारत जाना जाता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से, यूथ पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो भारत में है और वर्ल्ड में पॉपुलेशंस एज हो रही हैं, तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके जो नागरिक और यूथ हैं वो निपुण हो, शिक्षा के तरीके से स्किल्ड हो, निपुण हो, और तभी देश भी आगे तरक्की करेगा और तभी दुनिया में लीड कर सकता है भारत।
1: जी हाँ, हम अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बताएं तो गुणोत्सव जो योजना थी वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने से जुड़ी थी। जब हम निपुण भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और जो नंबर ज्ञान है उसे अवश्य हासिल कर ले। विद्या प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य मकसद यही रहा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के नए माहौल में ढलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार किया जा सके। विद्या प्रवेश की चर्चा को प्रोफेसर सुषमा जी अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि विद्या प्रवेश के बारे में हमने बताया कि 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि बच्चा जब स्कूल में जाए उससे पहले उसको एक भावनात्मक और शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाए कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सके। कुछ समय पहले तक इस तरह की सोच रखना भी, सरकारी स्तर पर किसी योजना को बनाया जाए कि बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले तैयार हो, इसके लिए कोई योजना लाई जाए, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि इस योजना को न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से कैसे देखती हैं इस योजना को आप?
2: भारत में विद्या प्रवेश या विद्यालय जाना बच्चों के लिए एक प्रकार से एक पनिशमेंट होती थी, वो क्योंकि सीधे स्कूल में जाना घर का माहौल होता है जहाँ उस प्रकार की नियमबद्धता नहीं होती और बच्चा अपनी मर्जी का ऑलमोस्ट मालिक होता है, स्वामी होता है। और जब वो विद्यालय में जाता था तो बहुत सारे समय के अनुशासन की सीमाएं उस पर लग जाती थी। उस गैप को दूर करने के लिए यह एक प्रकार से मैं बहुत सुंदर प्रयास मानती हूं जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया, और ये NEP 2020 जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसमें कहा गया कि लर्निंग शुड बी ए प्लेजेंट एक्सरसाइज, यानी सीखना आरंभ बच्चे का ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एंजॉय करे, वो उसके लिए एक फन जैसी एक्सरसाइज हो। तो इस विद्या प्रवेश का यही उद्देश्य है। और आप जान सकते हैं कि बड़े शहरों में और शहरी उच्च वर्ग में प्ले स्कूल्स का कंसेप्ट आ चुका था लेकिन वो पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध नहीं था, तो उनको भी खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना, औपचारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले उनको उस माहौल में सहज रूप से ढाल लेना और वहीं से निपुण भारत की भी नींव रखना। निपुण इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और आपको याद होगा आयशर जैसी बहुत सारी संस्थाएं पहले ये कहती रही कि 10वीं तक बच्चा पहुंच जाता है देश के सरकारी विद्यालयों में, लेकिन ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है पूरी बात, और ना ही वो गणना में निपुण होता है। इसलिए वह मिशन रखा गया था और उसी की रणनीति की नींव मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए विद्या प्रवेश का ये एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया गया। और जिसमें ये हो सकता था क्योंकि ये प्रारंभिक है तो हर राज्य अपनी अपनी स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता था ताकि बच्चे को बहुत अजनबी भाव ना लगे वहां पर, जैसा वो घर में अभी तक रहा उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए पढ़ना लिखना और गणना करना आरंभ कर दे। थोड़ा शाला प्रवेशोत्सव पर और गुणोत्सव पर भी बात करना।

0: इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का विशेष ध्यान था। यही गुणोत्सव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि ये माना गया कि जितने सरकारी विद्यालय हैं उनमें गुणवत्ता कम होती जा रही। तो गुजरात में 2009 में जो शुरू हुआ, बेसिकली माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी, इसीलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने जिस भी क्षेत्र पर ध्यान दिया वहां गुणवत्ता और जवाबदेही, उत्तरदायित्व निश्चित करने पर बल दिया और विद्यालयी शिक्षा में इन तीनों के माध्यम से ड्रॉप आउट कम करने की बात और शिक्षा और शिक्षण और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी कुछ और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। गुजरात से शुरुआत हुई डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी विशेष स्पेसिफिक विषय को लेकर शुरू की गई यूनिवर्सिटी को डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इस तरह के विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सवाल आपसे ये है संजीव जी कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां हम देखते हैं कि आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, कॉमर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे अलग 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज शुरू हुए, आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए कितने कारगर हैं और 21वीं सदी की चुनौती के लिए वो कैसे तैयार कर रहे हैं?
2: जी, जैसे आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज में जनरली सब हर फील्ड में एजुकेशन दी जाती है, मास्टर्स आप अचीव करते हो, उसके बाद पीएचडी उसी फील्ड में लेते हो। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग होता था तो इंजीनियरिंग भी एक ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जैसे लॉ फॉर एग्जाम्पल, लॉ का यूनिवर्सिटी का 2 ईयर कोर्स होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 ईयर्स कोर्स स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे को 12वीं के बाद ही एकदम एडमिशन वहां चले जाएं उस यूनिवर्सिटी में और उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन दें। तो लॉ के 5 ईयर कोर्सेज बने, 3 ईयर कोर्सेज भी बने, 5 ईयर कोर्सेज भी हैं कई। ये जरूरी था कि डोमेन स्पेसिफिक, जैसे फिर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर चुका है, लॉ स्कूल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम और एनर्जी की एक यूनिवर्सिटी देहरादून में बनी, वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां एक लॉ स्कूल भी बना प्राइवेट सेक्टर में, वही 5 ईयर स्कूल
1: जी।
2: वहां बच्चे खूब जाने लगे एंड उनकी इनटेक इन द इंडस्ट्री भी बढ़ गई बिकॉज वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे थे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में मैं आपको बताऊं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे इंटरनेशनली फॉरेंसिक साइंस है
1: जी,
2: या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड, तो नासा वगैरह में भी यहां के स्टूडेंट्स कई गए हैं जो यहां से यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, हालांकि एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी की मास्टर्स कराई जाती है। तो सिमिलरली फॉरेंसिक साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम की फील्ड में और कई फील्ड्स में, एनर्जी और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया आगे चल रहा है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है। सिमिलरली डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बन रही हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बनी और जैसे लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और इनकी एडमिशंस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है CUET उसके थ्रू होती है। इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड, जब बच्चा ज्यादा टाइम एक ही फील्ड में लगाता है तो इंडस्ट्री की डिमांड उसको समझ में आती है और इंडस्ट्री को भी समझ में आता है कि ये बच्चा हमारे फील्ड की मास्टरी कर चुका है और इसको इनटेक लेना है। सो एक तो उससे मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, दूसरी इंटरनेशनली भी प्रिपेयर होता है बच्चा, और तीसरा उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती हैं बहुत ज्यादा।
1: सुषमा जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर जो शिक्षण संस्थान और उद्योग के बीच की दूरी की बात होती रही है और हमने देखा कि इस कारण कई बार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो युवक हैं या जो छात्र हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते थे। गति शक्ति विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल आपके अनुसार इस खाई को कैसे पाट रहे हैं, इस अंतर को कैसे खत्म कर रहे हैं?
0: जी, संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये विश्वविद्यालय तो है ही, जैसे अगर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो अपने तरह का एक विश्वविद्यालय ही है और उसने बाकियों से MOUs किए हैं, और फोरेंसिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ इतना लंबे समय अभी तक लगता था, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, अब इस विश्वविद्यालय ने उसको संभालना और अपने कैंपसेस के माध्यम से कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है पहले रक्षा शक्ति माना जाता था, देयर वॉज नो यूनिवर्सिटी in India which would specially tackle this except NDA, तो वहाँ भी अब कुछ विशेषज्ञ

0: कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ आरंभ तो गुजरात से हुआ, लेकिन कौशल विश्वविद्यालय भी देश के बहुत सारे प्रांतों में खोले गए हैं, जो स्पेसिफिकली स्किल इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पहले नहीं थे। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी खोली गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली गई है, विमेन यूनिवर्सिटीज खोली गई है, और इनकी संख्या जो बड़ी है। केवल इतना ही नहीं, उसी बात को जो आपने मुझसे अभी पूछा है
1: जी,
0: उसको ही पाटने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि यूजीसी से संबद्ध रही हूँ। 2014 में यदि इस देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, अब जाकर के लगभग 1400, डबल ऑफ दी नंबर, 1400 से अधिक विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं। इसका मतलब है एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, विशेषज्ञता भी बढ़ रही है, और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं जो पहले कहीं नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, उद्यमिता विश्वविद्यालय, यानी ये जो स्किल बेस्ड एरियाज थे, डोमेन्स थे, वहां पर विशेषज्ञ उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं, जो थी पहले भी, लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष विशेष क्षेत्र पहचाने गए, जहां जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, वो यूनिवर्सिटीज खुली हैं। कॉलेजेस को भी ऑटोनोमस बनाने का प्रयास किया गया है, और जब मैं यूजीसी में थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को हमने इनकरेज किया कि वो ऑटोनोमी के लिए आगे आए, बिकॉज इस देश में कुछ कुछ कॉलेजेस तो इतने बड़े थे, दे कुड बीट एनी यूनिवर्सिटी और दे कुड कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो उनको ऑटोनॉमी देने की बात, ताकि शिक्षा का विस्तार हो। जहां 38,000 के करीब कॉलेजेस थे 2014 में, वो अब 55,000 के लगभग हो गए हैं। उसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं। इनके अपने तरीके भी हैं। एडमिशन क्लैट के माध्यम से लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है, पहले केवल लॉ कॉलेजेस होते थे, अब लगभग हर प्रांत में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स को तैयार कर रही है या एक्सपर्ट्स को तैयार कर रही है। और जो एक हमारे यहाँ गैप, जिसकी आपने बात की कि मैं बीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं पीएचडी भी हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धरण देते हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता विश्वविद्यालयों के माध्यम से। अब जब बच्चा निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई निपुणता, कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई विशेषज्ञता अवश्य होती है, और इस प्रकार ये रोजगार से जोड़ने का माध्यम है। दूसरी बात जो आपने पूछी है, इंडस्ट्री, अब लगभग हर विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी और यूजीसी के माध्यम से भी, कि वे तीसरे वर्ष में, हो सके तो सेकंड से ही शुरू कर लें, इंटर्नशिप करें, इंडस्ट्री से बात करें, आसपास जो भी इंडस्ट्री हो उनको कांटेक्ट भी करें, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है। एक तो बच्चों को वहां इंटर्नशिप के लिए भेजें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को, उन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं, उनको विश्वविद्यालयों के स्टडी बोर्ड्स में या उनके मैनेजमेंट बोर्ड्स में, एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान दें, ताकि रोजगार और शिक्षा के बीच का, कौशल और विद्या के बीच का जो अंतर अभी तक था, वह अंतर समाप्त हो सके। यह प्रयास विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से किया जा रहा है, और इसमें बहुविषयक और लचीली शिक्षा हमने इसमें जोड़ी है उसके साथ ही, और कौशल कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाए, और IITs का नंबर बढ़ाया गया है, IIMs का नंबर बढ़ाया गया है, NITs बहुत सारी खोली गई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बहुत सारे खोले गए, ICERs बनाए गए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रकार से समानांतर बन सके, ताकि बच्चों को सच में ही, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आप सपना देखें, हम आपको उड़ान का अवसर देंगे, तो ये विश्वविद्यालय वस्तुतः उन सपनों को सत्य करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सच में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में आ सकते हैं, और बच्चों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई बात लगभग पिछले 3 वर्षों से भारत की उच्च शिक्षा में आई है,
1: और इन सब का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, वो थियरी के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या कुछ घट रहा है उसको भी करीब से जान सकें, समझ सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करें तो वो उन चीजों के लिए नए नहीं रहें। संजीव जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट्स सुरक्षित रखने वाला एबीसी सिस्टम हो या फिर मातृभाषा में पढ़ाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
2: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है। आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी ही नहीं लेके आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 3 दशक बाद। तो अब ये जरूरी भी थी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया ने हस्ताक्षर किया था 2015 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके मुताबिक लानी थी टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाई 2030। सो उसमें बदलाव तो काफी आया है, लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में देखें, हमारा ज्ञान पहले 3 चीजों पे आधारित था, ज्ञान जो नॉलेज, विजडम प्रज्ञा और ट्रूथ सत्य को अचीव करने के लिए। सो आप देखेंगे कि हमारे एंशियंट भारत में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज थी, जो उन एंशियंट इंडिया में पुरानी शताब्दियों में भी लोग चाइना से और यूरोप से और कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे वहां, और इन हाउस फैसिलिटी थी वहां स्टूडेंट्स के रहने की, 4-4, 5-5 हजार बच्चा वहां पढ़ता था। तो भारत ने कहीं ना कहीं बीच में जब इन्वेड हुआ, पहले मुगल से फिर ब्रिटिश से, समहाउ ये अपनी एज लूज कर दी। उसके बाद भारत ने दोबारा फोकस किया है अब दोबारा अपने आप को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारत के पक्ष में है और यंग कंट्री इंडिया माना जा रहा है, और स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए हर युवा को स्किल से एम्पावर करने से उसको सक्षम बनाएं कि वो वर्ल्ड में टेक ओवर कर सके। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब की है, ये बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रिपेयर किया, इसमें हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स आए, इसमें लोअर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए, जैसे हमने पहले इनिशिएटिव डिस्कस किए कि कैसे बच्चे को बचपन से ही प्ले स्कूल से ही उसको रुझान उसका ताकि स्कूल जाने का हो, ड्रॉप आउट ना हो, ये सब इंश्योर की, और प्लस क्वालिटी हायर एजुकेशन। जैसे हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि पहले बहुत ज्यादा किसी लेवल तक करप्शन भी थी, और आज भी जो बच्चा कभी विचलित हो जाते हैं कभी, लेकिन रिफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी पहले, उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आए, एंट्रेंस से एग्जाम होता है, अभी और रिफॉर्म्स प्रोसेस में है, और रिफॉर्म्स कस्तूरी रंजन कमेटी बैठी है, और इसके ऊपर हाई पावर्ड कमेटी एक और रिफॉर्म्स को आगे लेके जा रही है। सो ये बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें जो टार्डिनेस है, जो करप्शन है, जो चीजें एम्बेड कर जाती हैं हमारे सिस्टम में, उसको रिमूव करने के लिए कंटिन्यूअसली रिफॉर्म्स की प्रोसेस जरूरी है। शिक्षा ही भारत को आगे ले जा सकती है, जब हर इंडियन जब निपुण होगा शिक्षा में, तभी भारत आगे विकसित बन सकता है।
1: सुषमा जी, अभी संजीव जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जो बताया एनएमसी के बारे में, हम उसी पर चर्चा करते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन। एनएमसी के आने के बाद देश में मेडिकल सीटों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। एमबीबीएस और पीजी दोनों की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के इस तरह आसान और सुलभ होने से हमारे देश के युवाओं के लिए और गांव शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, और पिछले 2 दशकों में इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो भावी भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं?
0: अगर विकसित भारत की बात करें और भावी भारत की बात करें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो 2 मजबूत पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, जिसकी बात अभी हमने की, शिक्षा के लिए विद्यालय से पहले ही खेल खेल में तैयार किया जाए, से विशेषज्ञ डोमेन स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, वह एक बात है। लेकिन रेगुलेशन भारत में एक समस्या थी, और ये माना जाता था या ये घटित हो गया था कि जो भी नियंत्रक नियामक आयोग हैं या परिषदें हैं, वह अपने आप में भ्रष्ट निकाय बन गए थे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए एक तरफ अभी हेकी जो जल्दी ही आएगा, यूजीसी का स्थान लेगा और बहुत सारी परिषदों का स्थान लेगा, लेकिन 2020 में ही भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर भारतीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लाया गया, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में इतना ज्यादा रेगुलेशन था, जैसे लॉ एजुकेशन में भी है लगभग, तो यहाँ संरचनात्मक सुधार तो ये हुआ कि 4 स्वायत्त बोर्ड बना दिए अंडर ग्रेजुएट।

0: मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि एथिक्स भी उस रिसर्च के लिए भी आवश्यक है और शिक्षा के लिए भी आवश्यक है. और इसके साथ साथ शिक्षक संकाय से की योग्यता से जुड़े हुए जो नियम थे उनको भी अपडेट किया गया है. और वहीं से जो सुधार आरंभ हुए तो मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की पारदर्शी विधि प्रक्रिया, यानी आप नीट के माध्यम से एकीकृत हो गए, साथ ही साथ पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था हो गई, क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा स्थान है, आपने कहाँ अप्लाई किया है. एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू पुट इट ऑन देयर बोर्ड, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट. तो यह भविष्य के लिए इसलिए बहुत सुंदर है कि भारत का बच्चा कहीं यूक्रेन भागता था, कहीं चीन भागता था, कहीं और किसी विदेश में भागता था, क्योंकि यहाँ मेडिकल सीट्स उसके लिए उपलब्ध नहीं थी. तो मेडिकल सीटों का बढ़ना दो प्रकार से उत्तम है. एक, जो बच्चा यहाँ चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहती है, उसको यही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. और जो भारत के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है या टीचर, मेडिकल टीचर्स उपलब्ध नहीं थे, वह भी अब उपलब्ध होंगे.
1: भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए स्किल इंडिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, PMKVY 4.0 की शुरुआत हुई है इस देश में. और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज के समय की जरूरत के अनुसार AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है. स्किल और रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, और जब से ये योजना शुरू हुई है करोड़ों युवाओं को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है. और सुषमा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कौशल से जुड़े विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं. इसको आप कैसे देखते हैं, युवाओं में उनको स्किल बनाने में, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने में, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं?
2: जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है. और शिक्षा का महत्व ये है कि अगर जब तक उसके हर सिटीजन ट्रूली ग्लोबल सिटीजन ना बने, कि शिक्षा यहाँ ग्रहण करे और हर जगह उसकी वैल्यू हो. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विजन भी यही था कि एक तो अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रदान करनी, उस पे फोकस था. दूसरा, इंडियन इथॉस में रूटेड हो हमारा एजुकेशन. और तीसरा, हर सिटीजन को एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना. तो स्किलिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट था, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने बात करी, भारत का एक एडवांटेज है, बहुत मेजर एडवांटेज है. और जब तक उसके युवा शिक्षित नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे कि वर्ल्ड पावर के साथ जो बाकी देशों के युवा हैं उनके साथ कंपीट करने के लिए, जब ट्रूली ग्लोबल नहीं होंगे तो वो कंपीट नहीं कर सकते. तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक स्किल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल अलग बनाया, जिसमें युवाओं को स्किल करने के लिए, जैसे पहले हमारे हायर लेवल पे IITs होती थी स्किल करने के लिए, IIMs थे, लोअर लेवल पे ITIs वगैरह थी और पॉलिटेक्निक्स थे. तो उसके अलावा अब स्किल यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं. और जैसे एम्स की बात करी कि वो हेल्थ एजुकेशन में, अब एम ये है कि हर स्टेट के पास एक एम जरूर हो, एक एटलीस्ट हो. 12 या 14 निर्माण हो चुके हैं एम्स, एक से शुरू करके, सिमिलरली हर स्टेट के पास होगा. सो स्किल यूनिवर्सिटीज में भी इस स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी, तो स्किल प्रदान करने के लिए युवाओं को इवन पॉलिटेक्निक्स और ITIs जो थे उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है. तो बहुत सारा फोकस जो है वो स्किलिंग पे लग रहा है. और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इवन विद द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सो दैट द यूथ बिकम एम्पावर्ड विद ग्लोबल स्किलिंग स्किल्स.
1: सुषमा जी, एक सवाल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा भी. परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो दो दशक पहले के भारत में जब मैं विद्यार्थी था तो घर का माहौल ऐसा हो जाता था कि पता नहीं घर में क्या हो गया है. टीवी ऑन होना बंद हो जाते थे, अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो बता दिया जाता था कि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की, आप थोड़े समय बाद आइए. घर में शोर शराबा नहीं होता था. लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद बच्चों से बात करते थे, खुद उनके अभिभावकों को बताते थे, और कुल मिलाकर एक माहौल तैयार किया गया कि परीक्षा डर का मामला नहीं है, इसे आप एक त्योहार की तरह देखिए, एक उत्सव की तरह देखिए, अगर उसमें आप नाकाम हो भी जाते हैं तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवसर हैं. इस बदलाव से

0: बच्चों के मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस में बहुत परिवर्तन आया। अभिभावकों को भी बातें समझ में आई, कैसे देखते हैं बच्चों के मनोविज्ञान के नजरिए से, उनके विकास के नजरिए से और सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से कितना बड़ा बदलाव आप मानती हैं परीक्षा पे चर्चा को।
1: जी, सबसे पहले तो इसकी जो खूबसूरती है या सौंदर्य है वो ये है, प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करें। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का अवसर मिल रहा है। तो राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, अभिभावक करते हैं, और इसको एग्जाम वॉरियर्स अभियान भी उन्होंने आरंभ में चलाया। ये मुझे लगता है बहुत ही समीचीन था और सामयिक भी था, क्योंकि एक समय ऐसा आया, बिल्कुल सही है, मैं भी उसी समय की उपज हूँ, जब आपने कहा टेलीविजन भी बंद, घर में मेहमानों का आना भी बंद, कमरा भी बंद, और बच्चे के लिए जैसे सजा हो उसे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेने, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, और एक एग्जाम ना हुआ ऐसा लगता था जैसे जीवन वहीं रुक गया है, और वहीं रुककर उसको सफलता ही हासिल करनी है, उसके बाद उसका दरवाजा खुलेगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से आया है, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक, 9वां संस्करण 2026 में हुआ था उसमें इतने पंजीकरण हुए, और सहभागिता भी बहुत बड़ी है,
2: क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराते हैं, और उद्देश्य भी यह है परीक्षा के तनाव को कम करना। यहाँ मैं विशेष तौर पर एक आंकड़ा लेना चाहती हूँ कि हमारे देश के यदि विद्यालयों के आंकड़े हम लें तो विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक तो एनरोलमेंट 88.5% है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ये घटकर 56.4% हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस करना अवश्य ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा, ताकि जीवन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अंकों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो और तनाव कम हो, तो व्यक्ति अपने आप अवसर देखने लगता है, खोजने नहीं पड़ते पर उसको प्राप्त कर सकेंगे।
0: संजीव जी, आखिर में परीक्षा पे चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा स्ट्रेस को कम करना, और कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम हमें देखने को मिले वो बहुत शानदार रहे। संक्षेप में, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताएंगे आप?
3: जी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इनिशिएटिव शुरू किया, इसका पर्पस मेनली यही था कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री एंड इजी मैनर। सो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस इनिशिएटिव के साथ अभी तक टोटल 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, यू नो, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। 4.2 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं, 25 लाख टीचर्स हैं, 6 लाख पेरेंट्स हैं, और पहला संस्करण इसका 16 फरवरी 2018 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसमें काफी पहलू उठाए। फॉर एग्जाम्पल, 1 2024 में उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को ये भी बताया कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रीलें देखने में, और हैव इनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन फ्रेश होके अपना एग्जाम दे सके। उन्होंने पहले एक बारी पबजी का भी, जो बहुत क्रेज की तरह बच्चों में फैल चुका था, बाद में तो गेम बैन हो गई, लेकिन पबजी के बारे में भी मेंशन किया कि वो बच्चे नहीं उसमें करें। सो ये जो इनिशिएटिव था बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके साथ अपने अनुभव भी उसके साथ जोड़ देते हैं।
0: तो श्रोताओं, शाला प्रवेश उत्सव से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत और गतिशक्ति विश्वविद्यालय जैसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गुजरात के दूर दराज के गांव में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए एक संकल्प से लेकर आज 145 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत 2047 के सपने तक, ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन की यात्रा है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा को केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न मानकर हर बच्चे के आत्मविश्वास, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसकी मातृभाषा और उसकी कुशलता से जोड़ता है, तब जन सेवा की यही भावना वास्तव में एक स्वर्णिम देश सेवा का रूप ले लेती है। चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव जी आपका और सुषमा जी आपका बहुत बहुत आभार।
3: जी, बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल

ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

9:45 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे आप सबका स्वागत है म्यूजिकल दिल्ली में। तो दिल्ली की ठंडक जो इस वक्त आपको और हमको अच्छी लग रही है, इस पे ज्यादा मत जाइएगा, ये तो बस दो दिन का खेल है और उसके बाद फिर से हो सकता है कि वही पुराना वाला मौसम आ जाए, क्योंकि मौसम के लिए कहा जाता है ना कि जब समझ में ना आए तो फिर मौसम पे बात करें, और अगर किसी से बात करनी हो तो मौसम पे बात करें, और जो मौसम है वो कब इधर से उधर पलट जाए उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो स्वागत कीजिए इस प्यारे से मौसम का। कल क्या मौसम होगा पता तो है नहीं ना,

और आए हैं बहुत सारे ऐसे पल जो हमें हमेशा याद रहते हैं, जैसे कि ये तो आपने जरूर सुना होगा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे जनवरी 2015 को शुरू किया गया था और जिसका मुख्य उद्देश्य है वो यही कि लिंगानुपात में सुधार हो, भ्रूण हत्या पर रोक लगे, सुरक्षा और अस्तित्व, बालिकाओं का अस्तित्व और उनकी सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके और इसके साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा मिले। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा की ज्योत हर घर जलाओ। और हमें क्या चाहिए? बेखौफ सड़कें चाहिए, आसान से रिश्ते और थोड़ा सा प्यार। यह है म्यूजिकल जिंदगी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

आशाएं और उम्मीदें, इन्हीं का दामन थाम के बहुत अच्छी शुरुआत हुई है जापान के आईजी नगोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन भारत ने जो शुरुआत की है बहुत ही शानदार है। और इस जो भी चीजें हो रही हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको मालूम ही होगा, एशियन गेम्स में भारत ने अभी तक 45 मेडल जीते हैं। भारत ने 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके जो हमारी पदक तालिका है उसमें 12वें स्थान पर वो बना हुआ है। और अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो नीरू ढांडा, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत की भारतीय महिला ट्रैप शूटिंग टीम ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को एक और मेडल दिला दिया है। तीरंदाजी में भारत की नीरज चौहान और उनके साथ साथ उम्मीदें भी हैं हमारे पास, देखते हैं कि आगे क्या होता है। 9:55 हो चुके हैं, ये है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे म्यूजिकल दिल्ली की।

Exactly. अपने दिल का ख्याल रखिए क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इसी के साथ अब समय होने वाला है समाचारों का। 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स में फिर से होगी आपसे मुलाकात।

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: हाय नमस्कार, मी अभिज्ञा भावे, तुम्ही ऐकत आहात 100.1 मेगाहर्ट्झ FM गोल्ड, माझा आवडता चॅनल। मस्त मस्त गाणी आणि गप्पांची मेजवानी।

की प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया,

0: scale for the world.
1: FM Gold, Khara Sona.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरा होने का स्वागत भी किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय

0: ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिक्की फ्रेम्स 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि कोई कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो किसी विषय, स्थान या मुद्दे के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है और समाज को एक दूसरे को समझने के तरीके को आकार दे सकती है।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, ये पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: फिक्की एम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अब फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन, गेमिंग, खेल, संगीत, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तारित हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव प्रभात ने गलत सूचना, सिंथेटिक कंटेंट और तेजी से उत्पन्न हो रही AI जनित सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करता है और पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jaishankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve interests of any nation. Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there is an understanding on the trade agreement. He pointed out that India is a society of small producers, small agriculture producers, and small factories. He added that apart from the per capita gap between India and the US, the nature of production and the nature of society are very different. He said a trade negotiation required a certain amount of patience and detailing to see it through. He admitted that tariffs did create a bump for the relationship last year. India and Saudi Arabia reviewed cooperation in defense, security, trade, investment, energy, technology, healthcare, and education during a meeting with Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadan on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Finance Minister Nirmala Sitharaman

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। वक्त हुआ है ठीक 1:11:04 और ये समय रहता है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल में आज बात हिंदी सिनेमा इतिहास के ऐसे महान अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन जिनके पर्दे पर आते ही माहौल बदल जाया करता था। हंसाना चाहते हैं तो लोग जी भर कर हंसते हैं और रुलाना चाहते थे तो रोने का मन हो जाता था। कलाकार ऐसे कला के माहिर, ऐसे धनी कि जब चाहा हंसाया, जब चाहा रुलाया। बड़े बड़े कलाकारों के सामने टक्कर की परफॉर्मेंस, नेचुरल अदाकारी, अदायगी, भाव बदलते इन्हें देर नहीं लगती थी। महमूद अली खां का जिक्र हो रहा है जिन्हें महमूद के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में जाना गया। इन्हीं की ढेर सारी बातें आज कलाकार के बेमिसाल के सफर पर होती रहेंगी आपसे साझा। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

हरफन मौला अदाकार, कलाकार, निर्माता, निर्देशक महमूद का जिक्र हो रहा है इस वक्त। जन्म इनका हुआ 19 सितंबर 1932 को मुंबई के वाइकुला इलाके में। महमूद के माता पिता खुद अच्छे डांसर और एक्टर रहे। अपने करियर की शुरुआत में मुंबई में ये अक्सर स्टेज शोज में नजर आया करते थे। इनकी एक बड़ी बहन थी और 6 छोटे भाई बहन। इनकी बड़ी बहन मीनू मुमताज एक अच्छी डांसर और कैरेक्टर एक्ट्रेस रही। शरारतें करना, मौज मस्ती करना, नकल उतारना इन्हें काफी पसंद रहा। बस अपने इसी शरारती अंदाज से इन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर काम करने का मौका मिला और ये फिल्म रही 1943 की फिल्म किस्मत। अशोक कुमार के बचपन का रोल इन्होंने प्ले किया फिल्म में। बस इस तरह से फिल्म्स में एक्टिंग का सिलसिला जो था ना, वो शुरू हो गया।

0: जाने माने एक्टर कॉमेडियन महमूद का जिक्र हो रहा है, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर मैं और आप यहाँ पर तय कर रहे हैं। इसके बाद 1947 में किशोर साहू की फिल्म सिंदूर में इन्होंने एक भूमिका निभाई। शुरू से ही महमूद दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार के फेवरेट हो गए थे। अशोक कुमार साहब ने अपनी फिल्म 1944 की बादवा और 1955 की बंदिश में महमूद को काम करने का मौका दिया। दादा मुनि के कहने पर ही काफी फिल्म्स में महमूद ने अपने किरदार का नाम महेश रखकर काम किया। इसके बाद अनेक फिल्म्स में इन्होंने काम किया, जैसे सीआईडी 1956 की, प्यासा 57 की, इसमें ये गुरुदत्त के बड़े भाई बने थे। और बावजूद इसके इतनी फिल्म्स करने के बाद भी लाइमलाइट में
1: आकाशवाणी समाचार बकुला परमार वांचे छे। सौप्रथम मुख्य समाचार। नाणामंत्री निर्मला सीतारमणे दोहामां साउदी अरेबियाना नाणामंत्री साथे संरक्षण, सुरक्षा, व्यापार सहितना क्षेत्रोमां सहयोगनी समीक्षा करी। केन्द्रीय संस्कृति अने पर्यटन मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावते फिक्की फार्मर्सना उद्घाटन सत्रने संबोधता कह्युं के विश्वने लोको केवी रीते जुए छे ते समजावामां मीडियानी महत्वपूर्ण भूमिका। विश्व हृदय दिवस निमित्ते केन्द्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डाए लोकोने स्वस्थ जीवनशैली अपनावा अपील करी। युनेस्कोनी कामचलाउ यादीमां भारतना 5 नवा स्थळोने शामिल कराया। ईंधणना भावमां वधाराना पगले भारतीय शेर मार्केटमां कड़ाको। अने एशियन गेम्समां नीरू ढांढाए महिला ट्रेप व्यक्तिगत स्पर्धामां सुवर्णचंद्रक जीतीने भारतीय निशानेबाजीमां इतिहास रच्यो। भारत અને સાઉદી અરેબિયાએ સંરક્ષણ, સુરક્ષા, વેપાર, રોકાણ, ઉર્જા, ટેકનોલોજી, આરોગ્ય સંભાળ અને શિક્ષણમાં સહયોગની સમીક્ષા કરી। દોહામાં એઆઈઆઈબીની વાર્ષિક બેઠક દરમિયાન સાઉદી નાણામંત્રી મોહમ્મદ અલજાદાન સાથેની મુલાકાત દરમિયાન નાણામંત્રી નિર્મળા સીતારમણે સાઉદી અરેબિયાને ભારતનો વિશ્વસનીય અને મૂલ્યવાન વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર દેશ ગણાવ્યો। તેમણે ભારત સાઉદી અરેબિયા દ્વિપક્ષીય રોકાણ સંધિ પર વાટાઘાટોના સફળ નિષ્કર્ષનું સ્વાગત કર્યું

महमूद ने अपने एक दोस्त से अपनी जीवनी लिखवाई थी जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कभी टाइप्ड नहीं हुआ, मेरी अपनी निश्चित स्टाइल भी नहीं थी, मुझ में ऑब्जर्वेशन करने की अद्भुत ताकत रही और मैं अच्छा नकलची था। इसने मुझे एक अच्छा कॉमेडियन बना दिया। फिल्म सबसे बड़ा रुपया में मैंने फिल्मिस्तान के सेठ तोलाराम जालान की कॉपी की थी। तभी मतलब ये फिल्म में उनका जो करेक्टर था ना, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अजीब सा था और बहुत दिल को छूने वाला था। सचमुच महमूद जैसे कलाकार विरले ही होते हैं जिनके व्यक्तित्व में अनेक विधाएं छुपी होती हैं। इनकी फिल्में, इनके गीत, इनकी एक्टिंग हम हमेशा ऐसे ही देखते रहेंगे, अप्रिशिएट करते रहेंगे और महमूद साहब को हम ऐसे ही जब जब हमें मौका मिलेगा याद करते रहेंगे। और चलते चलते कुमारा बाप फिल्म से ये बहुत ही एक, जैसे बोलते हैं ना, बहुत मजेदार सा गीत ये आप तक पहुंच रहा है। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया।

0: सामने क्या देख रही हूँ, उन्हें पीछे से पॉकेट मार रहे हैं।
1: इसी के साथ अंजलि आपसे इजाजत ले रही है, लेकिन 2:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ ही देर में सुनिएगा उर्दू में खबरें, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद से मुतालिक तातुल को हल करने से भारत चीन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिली है। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की सम्त काम कर रहा है। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन का जायजा लिया। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने तारीख रकम की है। उन्होंने खवातीन के इन्फिरादी ट्रैप मुकाबले में पहला इन्फिरादी एशियन गेम्स सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ पिछले साल के मुकाबले ताल्लुकात आज बेहतर हुए हैं। एक तकरीब से खिताब करते हुए, जिसका अहतमाम न्यूयॉर्क एशिया सोसाइटी ने किया था, डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जब सरहद से मुतालिक तातुल को हल कर लिया गया तो ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि भारत चीन को एक लंबी मुद्दत से बता रहा है कि दो तरफा ताल्लुकात में किसी भी तरह की कमी से मुल्क को कोई मदद नहीं मिलती और देरीना तातुल से किसी भी मुल्क के मफादात पूरे नहीं होते। भारत अमरीका ताल्लुकात और तिजारती समझौते पर मुज़ाकरात के बारे में वजीर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक एक ऐसी सूरत हाल पर पहुंच गए हैं जहां तिजारती मुआहदे पर मुफाहमत कायम हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने यह कहते हुए दहशतगर्दी के मामले को उजागर किया कि ये भारत के लिए एक अहम मामला है। उन्होंने रायजनी की कि अमरीका की तरफ से इस सिलसिले में कोई वाफर मुफाहमत या हमदर्दी का इजहार नहीं किया गया। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की सम्त काम कर रहा है। आज नई दिल्ली में रूट्स एशिया 2027 से मुतालिक एक तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते

0: ते हुए चिनाब नायडू ने कहा कि भारत का मकसद मुसाफिरों की तादाद को जो फिलहाल 24 करोड़ है साल 2047 तक 6 गुना करके 130 करोड़ करना है। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि मुल्क में जिन हवाई अड्डों पर परवाजें चलाई जा रही हैं उनकी तादाद साल 2014 में 74 थी और अब ये तादाद 166 से ज्यादा हो गई है। भारत और सऊदी अरब ने दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, हिफ्ज़ाने सेहत और तालीम के मैदानों में तआवुन का जायजा लिया है। सऊदी अरब के वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान के साथ एक मीटिंग के दौरान जो दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग मुनाकिद की गई, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सऊदी अरब को भारत का एक भरोसेमंद और काबिल कद्र अहम शराकत दार करार दिया। दोनों वज़राए खजाना ने भारत सऊदी अरब दो तरफा सरमायाकारी समझौते के बारे में मुज़ाकरात की कामयाब तकमील का खैर मकदम किया। इस समझौते का मकसद सरमायाकारी के लिए एक मजबूतर और मजीद काबिल एतबार फ्रेमवर्क फराहम करना था। मोहतरमा सीतारमन ने स्विट्जरलैंड के AIIB गवर्नर सफीर पियत्रो लाजेरी से भी मुलाकात की और NIIF, नीज, गिफ्ट IFSC समेत भारत में सरमायाकारी के मौकों पर बातचीत की। उन्होंने नेपाल के वजीर खजाना स्वर्णिम वागले से सैलाब की सूरत हाल से बहाली और दो तरफा प्रोजेक्टों पर बातचीत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने आज राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। बीजेपी के रहनुमाओं और मरकजी वुजरा हरदीप सिंह पुरी, BL वर्मा, समाजवादी पार्टी रहनुमा राम गोपाल यादव, BSP के रामजी और 6 दीगर अरकान की मुद्दत कार 15 नवंबर को मुकम्मल हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए जिमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ये सीट TMC की रुकने पार्लियामेंट रुक्मिनी मलिक के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। नामजदगी का अमल आज से शुरू हो गया है और 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने नई दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग हालिया तंजीमी तकर्रियों के बाद पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में सभी रियासतों के इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस ने शिरकत की और इसमें पार्टी की तंजीमी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज बारापुला फेज 3 कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। इस कॉरिडोर से मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के दरमियान बिना किसी रेड लाइट के कनेक्टिविटी फराहम होगी, जिससे मशरकी और जनूबी दिल्ली के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर मौसूफ ने 1,900 करोड़ रुपए से जायद मालियत वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों का भी आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता, अवामी कामकाज से मुतालिक महकमे के वजीर प्रवेश साहिब सिंह, शहरी तरक्की के वजीर आशीष सूद और दीगर वुजरा ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये मुसलसल आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि किस तरह माइकोव प्लेटफॉर्म के जरिए ये विजन हकीकत में तब्दील हुआ।
1: वक्त से मुतालिक 2025 का तरमीमी बिल एक अहम कानूनी कदम है, जिसके जरिए हुकूमत ने सदियों पुराने तसव्वुरात को खत्म करने की कोशिश की। इस कानून के जरिए न सिर्फ वक्फ इमलाक का बेहतर बंदोबस्त किया जा सकेगा, बल्कि इमलाक में खवातीन की विरासत भी यकीनी हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ से मुतालिक बिल की मंजूरी और मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूरी एक यकसर तब्दीली वाला लम्हा था। दाऊदी बोरा समाज के साथ बातचीत में उन्होंने जिक्र किया कि इस कानून पर अमल मुस्लिम खवातीन और मुसलमानों के दीगर अकलियती तबकों के साथ जारी नाइंसाफी का जायजा लेने के बाद किया गया।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो, तो ये रातों रात नहीं आया है। लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की है सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है।
1: उस्मान गनी ने जो कलकत्ता हाई कोर्ट में

0: Basu than other ministers were present. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has stressed the need to upgrade the skills of government employees to meet the changing needs of citizens and keep pace with new technology. He was the chief guest at the inaugural session of the Southern Regional Workshop of Sadhana Shrinkhala 2026 under Mission Karmayogi, organized by Capacity Building Commission in Vijayawada today. Speaking on the occasion, Mr. Naidu said regular training from the state level to the field level is essential for better public services. BJP National President Nitin Naveen chaired a meeting of state in-charges and co-in-charges at the party headquarters at New Delhi. The meeting is the first gathering of the party's state in-charges and co-in-charges following the recent organizational appointments. The meeting was attended by all state in-charges and co-in-charges and is expected to focus on the party's organizational priorities. This is Akashwani giving you the news.
1: Stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
0: Welcome back to the Midday News. India and Saudi Arabia reviewed cooperation in defense, security, trade, investment, energy, technology, healthcare, and education. During a meeting with Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadhan on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha, Finance Minister Nirmala Sitharaman described Saudi Arabia as a trusted and valued strategic partner of India. They welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-Saudi Arabia Bilateral Investment Treaty aimed at providing a stronger and more predictable framework for investments. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey guided by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and marked by a continued commitment to public service. Guided by the vision of Seva and Sushasan, the government has been working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. In this special series, we bring you an example of how this vision has been translated into action through the Waqf Amendment Act 2025.
2: The Waqf Amendment Act 2025 is a milestone legislative step by which the government tried to break the centuries-old concepts. Through this act, not only Waqf properties would be better managed, but also women's right to inherited property get ensured. Prime Minister Narendra Modi said that the passage of the Waqf Amendment Bill and Musliman Waqf Repeal Bill by both houses of parliament marks watershed moment. In an interaction with the Daudi Bora community, he mentioned that this act has been enacted after taking stock of injustices to the Muslim women and other minority sections of the Muslim community.
3: पीड़ो जो है महिला है उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है. हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले. कानून तो बाद में बना. पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया 19 में जीत करके आया तब मेरे पास आया 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो. वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया. उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी. तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो. तो ये रातों रात नहीं आया है जी. लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सर. तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है. इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया.
2: Osman Ghoni, a lawyer of the Calcutta High Court, said through the Waqf Amendment Act, the Muslim women get their property rights.
4: Generally, women are excluded from the Waqf Board and Waqf Council, but in this amendment, there is a compulsion that there must be 2 members in the Waqf Board who will be women, and there shall be must 2 members in Waqf Council, and this shall be women. So, women's representation in Waqf Board and Women Council in central level is compulsory now. Not only that, there is a concept of Waqf Aulad, where a man, a Waqif, make in this way that after me, my property will be devolved upon my legal heir, and after that, their sons and daughters will enjoy the property, but after that, the property will go to Waqf.
2: Kalyan Laha, Akashwani News, Kolkata.
0: The Sonai Rupai Wildlife Sanctuary in Assam's Sonitpur district has once again become a topic of national discussion. Prime Minister Narendra Modi mentioned the Sonai Rupai forest and the return of elephants during the 138th episode of Mann Ki Baat. We have a report.
5: The Sonai Rupai Wildlife Sanctuary, located in the foothills of the Himalayas, covers an area of 220 square kilometers. It was officially notified as Wildlife Sanctuary on September 4, 1998. According to Assam Forest Department 2024 Elephant Census, 140 elephants were recorded within its boundaries. The sanctuary was once home to hundreds of elephants, but they abandoned the area due to increasing human activities and land encroachments. However, the eviction of these encroachers and a strong emphasis on restoring greenery through afforestation have helped restore the ecological balance of the forest. As a result, herds of elephants are now being seen in those areas where they had not been spotted for many years. With Rajat Bharadwaj from Sonitpur, Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
0: At the Asian Games 2026, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win a gold medal in the women's trap individual event. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Hooda and Ankush Panghal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish. In the men's javelin throw, Yashveer Singh won the silver medal, while Rohit Yadav claimed bronze. India has won a total of 48 medals at the Asian Games 2026. The current tally includes 5 gold, 21 silver and 22 bronze medals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says border standoff resolution has helped improve India-China ties. India emerging as a major aviation hub and on the way to become the world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. India and Saudi Arabia review cooperation in defense, security, trade, investment, energy and technology on sidelines of AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. And in Asian Games 2026, Neeru Dhanda scripts history with India's first individual Asian Games gold at Women's Individual Trap event. With that, we end the midday news.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
7: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉ. जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन

0: की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सरायकाले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और

0: प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सर। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत और मुसीबत, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है, महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
5: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित

0: करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी न्यूज गुवाहाटी।
1: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जूछे नडिया दी भूसू साव खाली खम तू वड़ो दरानो लीलो चेवड़ो चेवड़ा।

0: अरे अरे अरे अरे अरे अरे मारी पोर बंदर नी खाजली।
1: अबे जा जा जा।
0: ओए ओए ओए ओए मारा भूसना पकवा।
2: मित्रों वर्ल्ड हार्ट डे एटले के हेल्दी डाइट अने हेल्दी लाइफस्टाइल अने नो फूड वेस्टेज डे एटले के अनाज नो बगाड ना करो, पानी नो बगाड ना करो।

यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 2024 द्वारा आंकड़ाओ जे बहार पड़ा जेमा 78.2 मिलियन टन अनाजनो बगाड मात्र घरमांथी थाय छे अने घरमांथी अनाज बगड़े छे फेंके छे 55 किलो जेटलू दर व्यक्ति दीठ अनाज फेंकवामां आवे छे। मित्रों आ बधा आंकड़ाओ जोईने एवुं लागे छे कि घरमां खरेखर आपणे अनाजनो आटलो बधो बगाड करीए छे। मित्रों एक आंकड़ो एवो पण छे कि भारतमां लगभग 19 करोड़ जेटला लोको तो कुपोषण थी मृत्यु पामे छे। हवे आपणे कहीशुं के ना ना आवुं कंई होय, अमारा घरमां तो अनाजनो बगाड थाय ज नहीं, अमे तो प्लेटमां एटलू ज लईए जेटलानी जरूर होय, अने अमे तो घरमां मापसर बनावीए। अमारा घरमां अनाजनो बगाडे थतो नथी, अनाज फेंकवामां आवतुं नथी, અને આ બધા જે આંકડાઓમાં છે એમાં અમારા ઘરનો તો નંબર નથી। તો ઓ રિયલી, ચાલો ને માંડીએ તમારા ઘરની વાતો। તમારા ફ્રીજમાં એક ડોક્યું આજે હું કરું આ ગીત બાદ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की है। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक के अवसर पर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने नेपाल की वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में जारी है। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी दे रहे हैं। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करने और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक की। हाल ही में हुई संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद इन पार्टी पदाधिकारियों की पहली बैठक थी। बैठक में पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर के विकास और उसे मजबूत बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर एक केंद्रीय और नियमित रूप से अद्यतन किए जाने वाला डेटाबेस है। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक जीता। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रवीण हुडा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 5 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य सहित 48 पदक के साथ 11वें स्थान पर है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 243 अंक गिरकर 72,529 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 64 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर बंद हुआ। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multi-dimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026 in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Toor, Urad and Masoor at minimum support price, with arrangements to ensure payments are made within 48 hours. The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade agreements and help farmers secure better returns for their produce and enable India to emerge as a major food basket for the world. The second meeting of the Joint Parliamentary Committee, JPC, examining the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 is currently underway at Parliament Annexe in New Delhi. The officials from the Ministries of Home Affairs and Law and Justice are expected to brief members on various provisions of the proposed legislation. The panel will also hear the views of domain experts and stakeholders, including State Bank of India Chairman Challa Srinivasulu Shetty and Additional Solicitor General of India for the Delhi High Court, Chetan Sharma. The committee has been tasked with examining the provisions of the bill and submitting its report to Parliament by the last day of the first week of the winter session 2026. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jayashankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said that India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve interests of any nation.
3: We had long been telling the Chinese, I've been saying it personally at my level, that look, a standoff between us, a dip in our relationship, actually doesn't help either of us. In fact, it is third parties who will take advantage of that. So we also maintain consistently a very elementary principle of statecraft, which is don't get locked into a problem which benefits others. And it took a little while, I think, the Chinese side to agree with that, for whatever reason. But I don't think that long standoff served our interests. It certainly didn't serve theirs. And to the extent there is an improvement in our relations, I think it certainly helps our position.
2: Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there's an understanding on the trade agreement. The Election Commission today issued notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and 1 seat in Uttarakhand. BJP leaders and union ministers Hardeep Singh Puri, B.L. Verma, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, Ramji of BSP and 6 others are completing their terms on 25th of November. The Commission has also issued notification for bipoll in 1 seat of Rajya Sabha in West Bengal. The seat was vacant due to the resignation of TMC MP Rukmani Malik. Nomination has started from today and polling will be held on the 16th of October. Benchmark domestic equity indices declined for the second consecutive session today. The Sensex lost 243 points or 0.33% to close at 72,000.

जी हाँ, फिल्म आहुति का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज। अगला गीत आदमी और इंसान से आशा भोसले जी की आवाज में।

0: director in CWRC Bengaluru, as indicated in the advertisement. Eligible candidates should apply through proper channel in the prescribed performer with an advance copy by email wherever required. Applications must reach the concerned authority within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed eligibility conditions, qualifications, experience and the application format, kindly visit Ministry of Jal Shakti or Central Water Commission website. That is at www.cwc.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार का उपक्रम मिनी रत्न बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रबंधक प्रशासन, क्षेत्रीय मानव संसाधन पश्चिमी क्षेत्र, सहायक प्रबंधक विनिर्माण इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, सहायक प्रबंधक बिक्री लॉजिस्टिक सर्विसेज, सहायक प्रबंधक केंद्रीय मूल्य निर्धारण, सहायक प्रबंधक कराधान कॉरपोरेट लेखा और वित्त, सहायक प्रबंधक प्रचालन, सहायक प्रबंधन बिक्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिट हेड उप प्रबंधक चर्म रसायन केमिकल्स, सहायक प्रबंधक HSE क्षेत्रीय मानव संसाधन पश्चिमी क्षेत्र, सहायक प्रबंधक HSE सहायक सेवाएं, सहायक प्रबंधक प्रचालन, सहायक प्रबंधक एयर CHA प्रचालन, अधिकारी बिक्री और विपणन, अधिकारी एयर CHA प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी घरेलू प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी एयर एक्सपोर्ट प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी बिक्री और विपणन, कनिष्ठ अधिकारी एयर इंपोर्ट प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी लेखा और वित्त, सहायक प्रबंधक लेखा और वित्त, अधिकारी निर्यात इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, अधिकारी प्रेषण इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, कनिष्ठ अधिकारी रखरखाव, कनिष्ठ अधिकारी वाणिज्यिक कोल्ड चेन, कनिष्ठ अधिकारी गोदाम प्रचालन कोल्ड चेन, कनिष्ठ अधिकारी सचिव सचिव विभाग, कनिष्ठ अधिकारी न्यास निधि कॉरपोरेट लेखा और वित्त। इन रिक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी, जिनमें पात्रता मानदंड आयु में छूट तथा आवेदन प्रक्रिया शामिल है, जानने के लिए देखें ये लिंक www.bamarlorry.com/careers/current-openings। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक समूह कंपनी है जो हाइड्रोकार्बन संसाधन के क्षेत्र में लाभ कमाने वाली प्रमुख कंपनी है। ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और इन पदों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है। कनिष्ठ इंजीनियरी सहायक ग्रेड 4 उत्पादन, रिक्तियां हैं 40। कनिष्ठ इंजीनियरी सहायक ग्रेड 4 मैकेनिकल, रिक्तियां हैं 10। कनिष्ठ इंजीनियरी सहायक ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल, रिक्तियां हैं 5। और कनिष्ठ इंजीनियरी सहायक ग्रेड 4 उपकरण 5 रिक्तियां। कुल मिलाकर 60 रिक्तियां उपलब्ध हैं। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, सामान्य निबंधन व शर्तें और अन्य अनुदेशों के लिए देखिए CPCL की वेबसाइट www.cpcl.co.in। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फैकल्टी डिजाइनर पदों की संख्या 2, एसोसिएट सीनियर फैकल्टी डिजाइनर सहायक प्रोफेसर पदों की संख्या 5। विस्तृत विज्ञापन और ऑफलाइन आवेदन, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि के बारे में जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश की वेबसाइट nidmp.ac.in/careers। आवेदन

0: करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, मुकेश हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू। आज भी दस दूर लाएंगे, ताजा तरीन खबरें तो होंगी, बट ऑफ कोर्स सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील गो टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हु आर देयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दे हैव टू शेयर विद अस। ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। और मुकेश, आज हमारा डेटलाइन इंटरव्यू बड़ा खास टॉपिक लिए है, स्पेशली आजकल की जो दौड़ भाग की जिंदगी है, when we are ignoring our health, so probably people should listen to our segment. And the last segment, of course, in which we remember probably one of the most popular comedians of Hindi cinema. ये सब कुछ तो होगा ही, but first let's start with the headlines, Mukesh.
1: जी बिल्कुल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार हुआ।
2: India emerging as a major aviation hub and on the way to becoming world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ramamohan Naidu.
1: भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की।
2: Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats.
1: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापानी एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया।
2: So Mukesh, we are beginning with our segment Dateline Inter, and as we had told our listeners that our topic today is something that probably will interest everyone because we're going to talk about World Heart Day. Yes, World Heart Day was established in the year 2000 by the World Heart Federation in collaboration with the World Health Organization to create global awareness about cardiovascular diseases and the steps that are needed to prevent them. The day is observed every year on 29th of September, bringing together individuals, healthcare organizations, and communities from all over the world to focus on heart health and encourage preventive action. The initiative was created to address the growing burden of heart diseases and highlight the importance of understanding risk factors, recognizing warning signs, and adopting healthier habits. Over the years, World Heart Day has become a global platform for spreading awareness about cardiovascular health and encouraging efforts towards prevention and early care.
1: जी हाँ सारा, दुनिया भर में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण दिल और नसों से जुड़े रोग हैं। 2000 के दशक के शुरू में दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष लगभग 1,70,00,000 लोगों की मौत इन बीमारियों से होती थी। इनमें से ज्यादातर मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से होती थी। हालांकि दिल और नसों की बीमारियों को अक्सर विकसित देशों में रहने वाले लोगों की समस्या माना जाता रहा है, जहां बैठे बैठे काम करने वाली जीवन शैली आम है, लेकिन इन बीमारियों से होने वाली 80% से ज्यादा मौत कम और मध्यम आय वाले विकासशील देशों में होती है। दिल और नसों की बीमारियों का मुख्य कारण खराब खानपान, कसरत न करना और धूम्रपान जैसी चीजें हैं। इन कारणों को रोका जा सकता है, इसलिए विकासशील देशों में भी जहां अक्सर अच्छे स्वास्थ्य सेवा की कमी होती है, इन बीमारियों में से ज्यादातर को रोका जा सकता है। दिल और नसों की बीमारियों का देशों की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उनके इलाज में बहुत ज्यादा खर्च आता है और बीमारी या काम पर न जाने की वजह से उत्पादकता का भी नुकसान होता है।
2: That's so very right, Mukesh. And World Heart Day is significant because it shifts the focus from treating heart disease to preventing it. And it reminds people that heart health is influenced by everyday choices and that recognizing risk factors early can make a meaningful difference. Aur hamare kya culture mein to kehte hai na ki parhez hi aadhi dawa hai. To aap ye nobat hi na aane dijiye that you have to pop medicines and pills because a lot of you can say issues can be resolved if we resolve what two wiser choices make lifestyle you know better.
1: बिल्कुल.
2: जिसमें आप regular exercise किए, हम ये नहीं कह रहे कि आप gym join कर लिए रोज, if you can,
1: well and good. घर पे बैठ के आप योग प्राणायाम करिए, उससे दिल की बीमारी का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है.
2: And do walk for at least half an hour or 40 minutes every day. These are simple things, but they have a very very you can say long lasting effect on our health. And beyond raising individual awareness, the campaign also encourages healthcare organizations, educational institutions, workplaces and communities to take part in activities that promote heart health and preventive care. This collective effort helps more people understand the importance of regular health checkups, healthier lifestyle choices and seeking medical advice before heart problems become serious. The World Heart Federation has continued its Don't Miss a Beat campaign for World Heart Day 2026, reinforcing the message that heart disease can often go unnoticed until it causes serious complications. Campaign encourages people to recognize the signs and symptoms of cardiovascular disease, understand the risk factors that affect heart health, and seek critical care when needed. So the 2026 campaign is built around three key messages. First, of course, see the signs. Second is protect your heart. And of course, demand action.
1: बिल्कुल. हृदय रोग अक्सर वृद्ध और वयस्कों से जुड़ी बीमारी है, लेकिन वर्तमान में ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है. उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, धूम्रपान, दीर्घकालिक तनाव, शारीरिक निष्क्रियता, खराब नींद और हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास जैसे कारक समय के साथ जोखिम को बढ़ा सकते हैं. इनमें से कुछ जोखिम धीरे धीरे विकसित होते हैं और तब तक ध्यान देने योग्य लक्षण पैदा नहीं करते जब तक स्थिति पहले से ही विकसित न हो जाए. अच्छी खबर यह है कि इनमें से कई जोखिम कारकों को नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों के माध्यम से पहचाना और प्रबंधित किया जा सकता है. हृदय स्वास्थ्य पर ध्यान देना न केवल मौजूदा हृदय रोग वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जो अपने दीर्घकालिक जोखिम को कम करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं.
2: And Mukesh, जैसे कि हमने बात की that one should be mindful of the early signs that probably our body tells us and we ignore them for you know for less serious conditions. For example, अब आपको हम अपनी बहुत ही personal जो तजुर्बा रहा हमारा about my father.
1: जी.
2: Before he was even you know having that blockage, जो वो हमें कई दिन पहले से कहने लगे कि आजकल मैं जब walk कर रहा हूँ, because he used to walk a lot.
1: जी.
2: और कहते नहीं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो वॉकिंग भी एक हद तक कीजिए, इतनी एक्सेस ना कीजिए कि दिल पे और जोर पड़े, यू नो. सो ही वाज सेइंग दैट यू नो दीस डेज व्हेन आई एम वॉकिंग का आई गैस्प फॉर ब्रेथ, तो मैं बीच बीच में रुकता हूँ, सांस लेता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे कमजोरी है कि क्या है. एंड विद इन टू वीक्स यू नो ही हैड दैट स्ट्रोक. सो द बॉडी वॉज ऑलरेडी टेलिंग कि आप जो है आप ज्यादा मत चलिए, आपके दिल पे जोर पड़ रहा है, यू नो द ब्लॉकेज इज हैपनिंग. सो देर आर सम अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स दैट वी शुड नेवर इग्नोर. एंड इन मेनी केसेज दीज सटल वार्निंग साइंस दे आर ईजी टू ओवरलुक और यू नो वी मिस्टेक देम फॉर एज आई सेड फॉर वेरी लेस सीरियस कंडीशंस. बट रिकग्नाइजिंग दीज सिम्टम्स early and seeking prompt medical attention can lead to earlier diagnosis and treatment. And some of the warning signs to watch out for, of course, chest pain or discomfort, which is a feeling of pressure on your heart, some tightness and a pain that spreads, you know, a pain or discomfort that radiates to the arms and your shoulders, even to the neck and jaw, or even to the back. That can be early sign of a heart stroke. Unusual fatigue, jaise maine aap sabhi zikr bhi kiya about my father, wo ek aapko alag si kamzor लगती है, यू नो इट्स एन अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस, स्पेशली व्हेन इट इंटरफेयर्स विद डेली एक्टिविटीज, इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड. एंड योर हार्ट बीट वुड बी इरेगुलर, देयर वुड बी स्वेलिंग इन द लेग्स और योर फीट, यू विल हैव कोल्ड स्वेट्स और मे बी एक्सपीरियंस नॉजिया. ऑल दीज आर सम अर्ली साइंस. एंड सो देयरफॉर दिस वर्ल्ड हार्ट डे, लेट्स मेक अ कमिटमेंट to your health by scheduling a heart checkup at least and getting the guidance that you need. Early detection of heart problems can make a big difference in how they are managed.
1: और श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का उनके पास क्या विशेष है. आगामी दीपावली के अवसर पर अयोध्या धाम में दीपोत्सव के दौरान लगभग 30 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राम की पैड़ी, लक्ष्मण किला घाट, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल घाट सहित कुल 56 घाटों पर दीप प्रज्वलित करने की योजना तैयार की गई है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीपोत्सव 2026 का आयोजन भव्य और अलौकिक ढंग से किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
3: श्री राम नगरी अयोध्या में दीपोत्सव 2026 इस बार और भव्य होने जा रहा है। दीपोत्सव 2026 में श्री राम नगरी 30 लाख दियों की रोशनी से जगमगाएगी। 7 नवंबर को दीपोत्सव के दिन 2100 ड्रोन आसमान में भव्य आकृतियां बनाएंगे। यही नजारा 9 नवंबर को भी देखने को मिलेगा। इसके साथ 2100 बटकों की सामूहिक सरयू आरती, 240 से ज्यादा मंदिर मठों में दीप प्रज्वलन, मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन और लेजर शो जैसे आयोजन दीपोत्सव की भव्यता बढ़ाएंगे। पर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात का कहना है कि अयोध्या दीपोत्सव ने बीते वर्षों में वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। दीपोत्सव 2026 को और भव्य एवं यादगार बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: And now from Ayodhya, we go to Gujarat, where agricultural science and traditional wisdom have joined hands to create a golden revolution. Yes, a pioneering biotechnology-backed research program has successfully demonstrated that natural farming can double turmeric production, opening new doors for sustainable agriculture and boosting farm incomes across the state. Let's hear more from our correspondent.
4: Turmeric, celebrated as golden spice, is vital for India's health and pharmaceutical sectors. However, intensive chemical-based farming has taken a heavy toll on the soil health. To reverse this, a landmark study by Gujarat Biotechnology Research Center and Sardar Krishinagar Dantewada Agricultural University evaluated traditional cow-derived bioformulations against conventional methods across 18 crops. The results published in BMC Plant Biology revealed that natural farming produced over 40 tons of fresh turmeric per hectare, nearly double the 19.3 tons yielded by conventional chemical methods. Economically, it generated net returns of over 10.5 lakhs per hectare compared to 3.61 lakhs traditionally. Backed by the vision of Prime Minister Narendra Modi and Gujarat Governor Acharya Devrat, the farmers in Banaskantha have already begun adopting these low-input practices. Highlighting the extraordinary impact of this research, Gujarat's Minister of Science and Technology, Arjun Modhvadia, shared, "By blending ancient indigenous practices with modern scientific validation, Gujarat is proving that sustainability and high productivity can go hand in hand, paving a golden path for farmers nationwide." For Parikrama, this is Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
1: और गुजरात से अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में प्रदेश के 4 और ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
5: मध्य प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरें अब यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गई हैं। इनमें धार की बाघ गुफाओं के भित्ति चित्र, सीहोर का गिन्नौरगढ़ किला, मुरैना के बटेश्वर पदावली ककरामठ मंदिर समूह और विदिशा की उदयगिरी गुफाएं शामिल हैं। बाघ गुफाएं 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की बौद्ध गुफाएं हैं, जिनके भित्ति चित्र अपनी कला के लिए खास माने जाते हैं। वहीं सीहोर के गिन्नौरगढ़ किले को गोंड शासन, किलेबंदी और पारंपरिक जल प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। मुरैना के बटेश्वर पदावली और ककरामठ मंदिर समूह 8वीं से 11वीं शताब्दी की मंदिर वास्तुकला की झलक दिखाते हैं। इन 4 स्थलों के शामिल होने के बाद भारत की 78 टेंटेटिव धरोहरों में 19 मध्य प्रदेश की हैं। पर्यटन बोर्ड ने इन धरोहरों को यूनेस्को के विचार के लिए प्रस्तावित किया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना विश्व धरोहर सूची में जगह पाने की प्रक्रिया का एक शुरुआती और जरूरी चरण है। मध्य प्रदेश में पहले से ग्वालियर किला, भोजपुर मंदिर, मांडू और ओरछा सहित कई प्रमुख स्थल इस सूची में शामिल हैं। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: And now we head to Odisha. Well, in a major boost to Odisha's maritime strength, Paradip Port has been designated as a mega port under the Indian Ports Act 2025. With this new status, Paradip Port becomes the only mega port on India's eastern coast. Let's hear more from our correspondent.
6: Paradip Port has entered a new chapter in its maritime journey. The port has been designated as a mega port under the Indian Ports Act 2025, a recognition of its growing strength.

0: in India's maritime economy. In a recent notification, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways has declared 4 ports as mega ports. This new status elevates Paradip Port alongside Dindayal Port, Jawaharlal Nehru Port and Mundra Port. With this distinction, Paradip Port becomes the only mega port on India's eastern coast, reaffirming its strategic importance as a major gateway for trade, industry and connectivity. This recognition reflects the port's growing capacity, robust infrastructure and operational strength. Paradip Port handles large volumes of coal, iron ore, fertilizers, crude oil and other bulk cargo, serving as a critical logistic hub for eastern and central India. Chief Minister Mohan Charan Majhi has said that Paradip Port will further strengthen Odisha's role as a gateway to global trade and a driver of industrial growth. He also said that this is another important step towards building a Samruddha Odisha and contributing to a Vikasit Bharat. For Odisha, this milestone is expected to create new opportunities, strengthen logistics and another reason for investors to look east. For Parikrama with Nirmalya Behera, this is Smriti Rekha Tarnia for Akashvani Katak.
1: और उड़ीसा से सटे झारखंड की ओर चलते हैं। झारखंड की लोक संस्कृति और जनजातीय जीवन से गहराई से जुड़े पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को अब आधिकारिक पहचान मिल गई है, तो सुनते हैं ये ब्यौरा।
2: झारखंड के पारंपरिक लोक वाद्य मांदर को जीआई टैग मिलने से इसकी विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को कानूनी मान्यता मिली है। चेन्नई स्थित भारत सरकार की भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने मांदर ऑफ झारखंड को जीआई टैग प्रदान किया है। मांदर का जीआई आवेदन 24 सितंबर 2021 को दाखिल किया गया था, जिसमें इसकी पारंपरिक बनावट, स्थानीय लाल मिट्टी, निर्माण तकनीक और विशिष्ट ध्वनि को प्रमुख आधार बनाया गया। इसके लिए 1915 में शरद चंद्र राय की कृति, 1931 में तारक चंद्र दास के शोध और 1940 में डब्ल्यू जी आर्चर की पुस्तक द ब्लू ग्रोव समेत 1920 की पटना संग्रहालय की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए। जीआई विशेषज्ञ और NUSRL के विजिटिंग फैकल्टी डॉक्टर सत्यदीप सिंह ने आवेदन दाखिल करने से लेकर जीआई रजिस्ट्री के समक्ष मामला प्रस्तुत करने और जनवरी 2025 में हुई अंतिम सुनवाई तक पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मांदर को जीआई पहचान मिलने से पारंपरिक कार्य के उत्पादों को झारखंड की विशिष्ट पहचान मिलेगी और आधिकारिक जीआई दर्जे के साथ देश विदेश के बाजारों तक इसकी पहुंच बढ़ने का आधार तैयार होगा। मांदर सम्राट मनपूरन नायक ने इसे झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि मांदर को जीआई टैग मिलना पुरखों और माटी का सम्मान है। परिक्रमा के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय निशानेबाज महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, अशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक जीता था। उधर मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम के से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। प्रवीण हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलो और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 5 स्वर्ण, 21 रजत, 22 कांस्य सहित 48 पदक के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है।
3: And now we talk about some news from the world of business. Well, benchmark domestic equity indices declined for the second consecutive session today. Sensex lost 243 points or 0.33% to close at 72,529. Nifty fell 64 points or 0.28% to settle at 22,716. For more updates about market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 in the evening.
1: और कार्यक्रम में अब हम याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: आज ही के दिन 1942 में मातुंगिनी हाजरा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने 29 सितंबर 1942 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तोमलुक थाने के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी कहा जाता था, बंगला में जिसका अर्थ बूढ़ी महिला गांधी है।
5: मातुंगिनी हाजरा का जन्म 1869 में तोमलुक के पास होगला के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी शादी

0: बहुत कम आयु में ही हो गई थी और केवल 18 साल की उम्र में ही वे विधवा भी हो गईं।
1: मौतंगिनी हाजरा गांधीवादी दर्शन से प्रभावित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 6 महीने तक बहरामपुर जेल में रहीं।
0: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 73 वर्ष की उम्र में मातोंगनी हाजरा ने तोमलुक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के उद्देश्य से 6000 समर्थकों के जुलूस का नेतृत्व किया। ये ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने और एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम था।
1: जब जुलूस शहर के बाहरी इलाकों में पहुंचा, तो पुलिस ने उन्हें रुकने का आदेश दिया और मौतंगनी जैसे ही आगे बढ़ी उन्हें गोली मार दी गई। 73 वर्षीय मौतंगनी हाजरा पर 3 गोलियां चलाई गईं। हर गोली के साथ वंदे मातरम के नारे की उनकी आवाज तेज होती गई और हाथ में पकड़ा तिरंगा भी ऊंचा होता गया। तिरंगे को ऊंचा लहराते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए।
0: समानांतर तोमलुक सरकार ने देश के लिए मौतंगनी हाजरा की शहादत की प्रशंसा करके खुले तौर पर विद्रोह को उकसाया और गांधी जी के अनुरोध पर 1944 में खत्म होने तक विद्रोह को 2 और वर्षों तक जारी रखा।
1: 1977 में स्वतंत्रता के बाद मौतंगनी हाजरा की प्रतिमा कोलकाता में लगाई गई थी। स्वतंत्र भारत में कोलकाता में स्थापित किसी महिला की ये पहली प्रतिमा थी। उनकी प्रतिमा अब भी तोमलुक में उसी स्थान पर स्थापित है जहां उनकी हत्या की गई थी।
0: इसी दिन एक घटना और हुई जिसने भारतीय प्रवासियों की परिस्थितियों को आकार दिया। जापानी जहाज कामागाटामारू 165 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा से कलकत्ता पहुंचा। इनमें से ज्यादातर पंजाब प्रांत के थे। कनाडा ने जहाज को बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति नहीं दी थी।
1: 27 सितंबर को कलकत्ता पहुंचने पर ब्रिटिश बंदूकधारियों ने बंदरगाह में जहाज को प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के साथ कानून तोड़ने वालों और राजनीतिक आंदोलनकारियों की तरह व्यवहार किया गया था। नेताओं को पकड़ने के लिए पुलिस के जहाज में प्रवेश करते ही विरोध शुरू हो गया। 19 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाकी को कैद कर लिया गया।
0: भारतीय समूहों ने कामागाटामारू की घटना को कनाडा के आव्रजन कानूनों में विसंगतियों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारतीय क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी ने समर्थन जुटाने के लिए उत्तेजना और जुनून पैदा किया था।
1: 1914 में कैलिफोर्निया में और भारतीय प्रवासियों के कई बैठकों में बरकतुल्ला, तारकनाथ दास और सोहन सिंह सहित गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों ने इस घटना का इस्तेमाल गदर आंदोलन के लिए लोगों को जुटाने के वास्ते किया।
2: और अब हम याद कर रहे हैं मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवित्री नालापत बालमणि अम्मा को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे महादेवी वर्मा की समकालीन थीं, जो हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थीं। नालापत बालमणि अम्मा की गणना 20वीं शताब्दी की चर्चित और प्रतिष्ठित मलयालम कवित्रियों में से की जाती है। उनकी चर्चाएं, उनकी रचनाएं एक ऐसे अनुभूत मंडल का साक्षात्कार कराती हैं जो मलयालम के अदृष्ट पूर्व हैं। आधुनिक मलयालम की सबसे सशक्त कवित्रियों में से होने के कारण नालापत बालमणि अम्मा को मलयालम साहित्य की दादी कहा जाता है। उन्होंने 500 से अधिक कविताएं लिखी हैं।
3: That's right, and of course the mother of writer Kamala Saraiya, who's also known as Kamala Das. And Kamala Das, in fact, Mukesh translated one of her mother's poems that was called The Pen, which describes the loneliness of a mother. And well, if we talk about the accolades that she has been conferred upon, well, she was a recipient of many awards and honors, including the Padma Bhushan, the Saraswati Samman, the Sahitya Akademi Award and Edu Thachan Award.
2: और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के अभिनेता टॉम अल्टर को। उन्हें करीब 300 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। 2008 में भारत सरकार ने टॉम अल्टर को पद्मश्री से सम्मानित किया था। इंडियन अमेरिकन एक्टर टॉम ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने लुक की वजह से उन्हें अधिकतर अंग्रेज अफसरों या विदेशी चरित्र का रोल दिया गया। कई लोगों के लिए वो खलनायक के तौर पर सिर्फ अंग्रेज अफसर ही साबित हुए। हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, असमी, मलयालम जैसी फिल्मों में भी टॉम अल्टर को अंग्रेज कैरेक्टर के लिए ही काम दिया गया।
3: That's right, and that's why मेरा एक शिकवा भी रहा है हमेशा कि सिनेमा ने उनको सिर्फ एक कह सकते हैं जो एक जनरलाइज्ड इमेज होती है उसमें ही उनको टाइपकास्ट किया। बट द रियल मेटल, इफ यू हैव टू सी टॉम ऑल्टर्स रियल टैलेंट, देन वन हैज टू सी द थिएटर दैट ही हैज डन।

0: आई थिंक पीपल हु हैव सीन हिम परफॉर्म मिर्ज़ा गालिब और एज मौलाना आज़ाद वो भूल ही जाएंगे कि एक्चुअली कोई दूसरी रेस का इंसान जो है परफॉर्म कर रहा है. सच फ्लॉलेस उर्दू ही यूज्ड टू रिसाइट एंड दैट्स व्हाई वी हैव चोजन दिस पर्टिकुलर स्निपेट इन व्हिच ही इज रिसाइटिंग सम उर्दू शेर्स.
1: परदान नशीं वो वक्त ना ला सजदों को शिकायत हो जाए, मैं तेरे तगाफुल पे जान दूं और तेरी इनायत हो जाए. बिकता है तू मस्जिद मंदिर में ये देख मुझे डर लगता है. बिकता है तू मस्जिद मंदिर में ये देख मुझे डर लगता है. माशूक है तू जिनके दिल का उन्हें बगावत न हो जाए. बिकता है तू मस्जिद मंदिर में ये देख मुझे डर लगता है. माशूक है तू जिनके दिल का उन्हें न बगावत हो जाए. मुल्ला भी तेरे ब्राह्मण भी तेरे ये शेख व पादरी भी तेरे. डरता हूँ खुदाई भी ना कहीं एक बज्म सियासत हो जाए.
2: और टॉम अल्टर ने 1976 में रामानंद सागर की फिल्म चरस से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इस फिल्म में टॉम के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया. जिसके बाद वो इस अभिनेता के पीछे उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी, गांधी, कर्मा, राम तेरी, गंगा मैली, लोकनायक जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया. फिल्म क्रांति में उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर का रोल भी निभाया था.
0: That's right, and we are also remembering a very fine actor and comedian of yesteryears. Yes, we're talking about Mahmood, whose birth anniversary is today. And apart from being an actor, he's also sung songs, directed films, and of course, he's best known for playing comic roles. Of course, कोई भी पड़ोसन को नहीं भूल सकता और कोई कुंवारा बाप को नहीं भूल सकता. I think there are some roles that are probably etched in our memory even today.
2: जी हाँ, और उनका महमूद का पूरा नाम महमूद अली था. 3 दशक तक लंबे चले उनके करियर में उन्होंने 300 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया. अपने बहुरंगी किरदारों से दर्शकों को हंसाने और गंभीर भूमिका कर रुलाने वाले महमूद अभिनय के प्रति समर्पित थे. तो क्यों ना सबसे पहले उनकी फिल्म के डायलॉग सुने जाए.
3: हमको एक जॉब चाहिए मिला था, मेरे को बोला मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, जरा हाथ देना देवे.
4: लेकिन हमको बोला था हमारा दिन बहुत खराब जाएगा.
3: क्या गड़बड़ है, क्यों खराब?
4: पीछे देखो,
3: पीछे खाली पानी का फाउंटेन ना जी.
4: गुंडा
3: भैयो, गुंडा गुंडा किधर जी?
4: इधर
3: पीछे. अयो उन गुंडा ने ना जी, उन बोला जी, बोला आप भूल गया, आपका खिड़की का सामने वाला खिड़की में वो रहता ना जी, बहुत अच्छा गा लगा था, हमको हरा दिया वो दिन.
5: एक डरावना जंगल है जहाँ मछलियाँ घास चल रही है, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती है, बिल्कुल अजीब. अरे एक साया, लंबा साया चला रहा, ऐसा लगता है जैसे जलती हुई चिता पर से एक मुर्दा चला रहा. मुर्दा जला है, चमकी बिजली छप्पर छत पे, बिजली चमकी और बारिश की ये मोटी मोटी बूंदे पक पक जमीन पे गिरने लगी. अब जो ही दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद.
0: And well, those very funny dialogues, the first one of course from the film Padosan, और एक गाना भी है, क्यों ना वो सुन लिया जाए.
2: बिल्कुल.
6: दुनिया अरे किधर है रे?

और महमूद को पहला ब्रेक 1958 की फिल्म परवरिश में मिला था और इसमें उन्होंने राज कपूर के साथ भूमिका निभाई थी। और 1961 की ससुराल उनकी करियर की प्रमुख फिल्म रही थी, जिसके जरिए बतौर हास्य कलाकार स्थापित होने में उन्हें मदद मिली थी। उनकी एक फिल्म का एक और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: करना।
1: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
2: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉ जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की है। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से अलग सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में चल रही है। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी देंगे। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। जिनेवा प्रेस क्लब में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कश्मीरी नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र के दौरान यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोकतांत्रिक स्वशासन, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय स्वामित्व, आवागमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के शासन को सुनिश्चित करने की मांग की गई। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 5:11 मिनट और ठीक एक सेकंड काते गुनगुनाते लेकर देविका हाजिर है। शाम ढलती रही, हम इंतजार करते रहे, नजरें दरवाजे पे थी और दिल तुम्हें याद करते रहे। ना कोई खबर आई, ना कोई दस्तक हुई, बस तुम्हारी एक झलक के लिए हम रात करते रहे। मोहब्बत में इंतजार सिर्फ किसी के आने का नाम नहीं होता, कभी उस एक मैसेज का इंतजार होता है, कभी किसी की आवाज सुनने की चाहत, और कभी बस उस एक नजर का इंतजार जिसमें पूरी दुनिया दिखाई देती है। क्योंकि कुछ लोग जब सामने होते हैं तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं, और जब दूर होते हैं तो नजरें हर चेहरे में उन्हें तलाशती हैं। तो जी हाँ, आज की शाम उन सभी लोगों के नाम जो किसी का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी नजरें आज भी किसी खास चेहरे को ढूंढती हैं और जिनके दिल में अब भी एक उम्मीद

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड

जहाँ फिल्म एतबार का गीत आपने सुना, हसन कमाल ले साहब की बोल बपी लहरी का संगीत और आवाज आशा जी और भूपेंद्र सिंह की। गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, चलिए आपको सुनाते हैं। एक बार एक राजा और रानी थे, और राजा और रानी ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और हुआ क्या कि राजा ने रानी से पूछा कि अगर मेरे पास कभी ये महल, ये राज्य और सारी दौलत ना रहे तो क्या तब भी तुम मेरा साथ दोगी? रानी ने कहा, महाराज मैंने आपसे प्यार आपके महल या ताज से नहीं बल्कि आपके दिल से किया है, अगर सब कुछ छिन भी जाए तो भी मेरा प्यार कम नहीं होगा। कुछ समय बाद राज्य में एक बड़ा संकट आया, राजा को अपना महल छोड़कर जंगल में जाना पड़ा और चारों तरफ परेशानियां थी। एक दिन राजा उदास होकर बैठ गए। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें रानी बना के रखा लेकिन आज तुम्हें इतनी तकलीफें सहनी पड़ रही हैं, क्या तुम मुझसे कोई शिकायत नहीं करोगी? रानी ने कहा, शिकायत तो बस एक है। राजा ने कहा, कैसी शिकायत? रानी ने कहा कि आप बार बार अपनी परेशानियों की बात करते हैं लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब तक आप मेरे साथ हैं मेरे पास सब कुछ है। राजा ने रानी का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि आज समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। और रानी ने कहा कि मुझे तो ये पहले से पता था, असली दौलत वो इंसान है जो हर परिस्थिति में आपका हाथ थामे रखे। सचमुच सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ निभाए, बल्कि सच्चा प्यार वो जो मुश्किल समय में भी साथ खड़ा रहे।

0: जी हाँ, फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गीत आपने सुना, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल, अन्नू मलिक का संगीत और आवाज अलका याग्निक और उदित नारायण की। गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
7: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
6: फॉर्म 7, गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
7: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
6: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

0: जी हाँ, फिल्म और प्यार हो गया का गीत आपने सुना, जावेद अख्तर साहब के बोल, उदित नारायण की आवाज और नुसरत फतेह अली खान साहब का संगीत। गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आपसे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

5:37 और ठीक 50 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। जी हाँ, गाते गुनगुनाते और देविका है आपके साथ। श्रोताओं, आपने कभी गौर किया है, सुबह हम घड़ी देखते हैं कि कितना वक्त हुआ, दोपहर में सोचते हैं कि कितना काम बाकी है और शाम होते होते अचानक दिल पूछता है आज अपने लिए कितना वक्त बचा। शायद यही शाम की खूबसूरती है जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं, कभी रुकना भी जरूरी है। किसी पुराने गाने को सुनना भी जरूरी है और किसी अपने को बिना किसी वजह फोन करना भी जरूरी है और कभी कभी बस खिड़की के बाहर देखते हुए चुप रहना भी जरूरी है। वक्त अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है, लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, कुछ रिश्ते दूर हो जाते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ शामें हमेशा वैसी ही रहती हैं, है ना।

फिल्म दुनिया का गीत जावेद अख्तर साहब के बोल, आदी बमन का संगीत और आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, चलिए आपको सुनाती हूँ। कभी कभी मोहब्बत का कोई नाम नहीं होता, बस एक एहसास होता है जो चुपचाप दिल में जगह बना लेता है। हर शाम की तरह आज भी वही रास्ता था, वही बारिश, वही ठंडी हवा और हाथ में एक कप चाय। तभी किसी ने धीरे से पूछा, आज भी अकेले? दूसरी आवाज आई, अकेला कहाँ हूँ, आप जो हैं? कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर एक आवाज ने पूछा, अगर मैं कल यहाँ ना आऊं तो? दूसरी आवाज ने कहा, तो शायद चाय का स्वाद थोड़ा कम लगेगा। सिर्फ चाय का, दूसरी आवाज नहीं, शाम का भी। बस इतनी सी बात थी, ना कोई वादा ना कोई इजहार, फिर भी दोनों समझ गए थे कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशियों से बनते हैं।

आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में

0: इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।

0: स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

5:54 और 36 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं। हम गाते गुनगुनाते और देविका है आपके साथ। चाहत, कभी किसी इंसान को पाने की, कभी किसी सपने को पूरा करने की, कभी किसी पुराने रिश्ते को वापस पाने की, और कभी कभी बस थोड़ा सा सुकून पाने की। कहते हैं ना श्रोताओं की जिंदगी जितनी सरल दिखाई देती है उतनी होती नहीं। इसमें कुछ रास्ते हमारी पसंद के होते हैं और कुछ रास्ते हमें पसंद करना सीखना पड़ता है। हमारी चाहतें हमें आगे बढ़ाती हैं, हम सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि एक दिन सब वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी चाहत के हिसाब से नहीं चलती। कभी जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो हमारे साथ नहीं होता। कभी

जिस मुकाम के लिए सालों मेहनत करते हैं वहां पहुंचने में वक्त लग जाता है, और कभी कभी जिंदगी हमें वो दे देती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। शायद यही जिंदगी की खूबसूरती है। हर चाहत का पूरा होना जरूरी नहीं, कुछ अधूरी चाहतें हमें मजबूत बनाती हैं, कुछ हमें इंतजार करना सिखाती हैं और कुछ हमें ये समझाती हैं कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भी एक बड़ी चाहत होनी चाहिए।

0: मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉ. जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की डेल्टाएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में आज हुई। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी दी। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की बात कही। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाए। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से शिष्टाचार भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष बल दिया गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। जापान एशियाई खेलों में महिला 4x400 रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 4x400 पुरुष रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Defense Minister Rajnath Singh has

0: आज के कार्यक्रम का विषय है ग्रीन हाईवे, सतत सड़क ढांचे की ओर भारत की यात्रा। सड़कें हमारे शहरों, गांवों और कस्बों को जोड़ती हैं, लोगों को बाजारों तक पहुंचाती हैं और देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन जब सड़कें लगातार बढ़ रही हों, तो एक सवाल भी जरूरी हो जाता है, क्या विकास के इन रास्तों के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा सकता है? यानी क्या हाईवे सिर्फ संपर्क के रास्ते हों या फिर ये हरियाली, जैव विविधता और सतत विकास के रास्ते भी बन सकते हैं? भारत में अब इसी दिशा में काम किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 3,61,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। ये पौधारोपण करीब 1,32,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के दायरे में हुआ है। लेकिन ग्रीन हाईवे की कहानी सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है। इसमें उपग्रह निगरानी, मियावाकी पौधारोपण, पुनर्चक्रित निर्माण सामग्री, कृषि अवशेष से बायो बिटुमेन और परागणकर्ता गलियारों जैसे कई नए प्रयोग शामिल हैं। तो आखिर भारत के हाईवे नेटवर्क को हरित और सतत बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरह तकनीक और समुदाय की भागीदारी इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेगा आज का हमारा विशेष विश्लेषण। तो आइए सुनते हैं इस विषय पर हमारी विशेष रिपोर्ट।
1: सड़कें बढ़ी तो हरियाली की जरूरत भी बढ़ी। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2014 में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई करीब 91,287 किलोमीटर थी। मार्च 2026 तक ये बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर हो गई। यानी इस अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में करीब 61% की बढ़ोतरी हुई। इस विस्तार ने देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया, लोगों और सामान की आवाजाही आसान हुई और बाजारों तक पहुंच बेहतर हुई है। लेकिन हाईवे विकास के साथ पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना भी जरूरी है। इसी सोच के तहत वर्ष 2015 में ग्रीन हाईवे नीति लाई गई। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पौधरोपण को एक व्यवस्थित ढांचा देना था। पेड़ और झाड़ियां वायु प्रदूषण और धूल को कम करने में मदद कर सकती हैं। हाईवे के किनारे हरियाली मिट्टी के कटाव को रोकने और तेज हवा तथा धूप के प्रभाव को कम करने में भी मदद करती है। इसके साथ ही पौधारोपण गतिविधियां स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करती हैं। इस काम में स्वयं सहायता समूह, निजी एजेंसियां, राज्य वन विभाग, वन निगम और ठेकेदार जैसे कई हितधारक शामिल हैं। पौधरोपण की निगरानी के लिए NHAI और दूसरी एजेंसियों के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पौधरोपण प्रकोष्ठ भी काम करता है। लेकिन अब ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कितने पौधे लगाए गए, यह भी देखा जा रहा है कि कितने पौधे जीवित हैं, उनकी बढ़त कैसी है और हाईवे गलियारे में हरियाली किस तरह फैली हुई है। जुलाई 2026 तक पिछले 5 वर्षों में करीब 3,61,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं और अब पौधरोपण की निगरानी के लिए ड्रोन और उपग्रह तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ कुछ जगहों पर मियावाकी पौधरोपण को भी अपनाया गया है। मियावाकी तकनीक में कम जगह में पेड़ और झाड़ियों को अपेक्षाकृत पास पास लगाया जाता है ताकि कम समय में घना हरित क्षेत्र तैयार किया जा सके। इस तरीके में पौधों की बढ़त सामान्य तरीके की तुलना में कई गुना तेज हो सकती है।
0: पेड़ लगाना एक शुरुआत है, लेकिन किसी भी पौधारोपण कार्यक्रम की असली सफलता इस बात से तय होती है कि लगाए गए पौधे कितने समय तक जीवित रहते हैं। इसलिए अब हाईवे परियोजनाओं में पौधारोपण की गुणवत्ता और पौधों के जीवित रहने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है।
2: राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण को अब हाईवे परियोजना के पूरा होने की प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। सितंबर 2026 के NHAI दिशा निर्देशों के अनुसार पौधारोपण के लिए निर्धारित उपलब्ध राइट ऑफ वे यानी सड़क के लिए उपलब्ध भूमि के कम से कम 80% हिस्से को कवर करना जरूरी होगा। तभी पौधारोपण कार्यों को अस्थायी पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए नियमों के अनुरूप माना जाएगा। लेकिन केवल पौधारोपण का क्षेत्र पर्याप्त नहीं है। निरीक्षण के समय लगाए गए पौधों की कम से कम 90% जीवित रहने की दर भी जरूरी है। यही जीवित रहने का मानक संचालन और रखरखाव यानी O&M अवधि में भी लागू रहेगा। अगर कोई पौधा जीवित नहीं रहता तो उसे समय पर बदलने का प्रावधान है। इसी सोच को प्रोत्साहित करने के लिए NHAI ने वर्ष 2025 में ग्रीन हाईवे उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किए। 2026 के पुरस्कारों में पौधों के जीवित रहने की दर, प्रजातियों की विविधता, स्थानीय प्रजातियों के इस्तेमाल और स्थान के अनुसार योजना बनाने जैसे

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार।

0: सड़कों को महत्व दिया गया। आंध्र प्रदेश में NH 16 के चिलकलू रिपेट बाईपास की 6 लेन वाली परियोजना को एवेन्यू प्लांटेशन श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। NH 163 के हैदराबाद यादगिरी हिस्से को मीडियन प्लांटेशन श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। वहीं नागपुर के NH 44 पे जमथा क्लोवर लीफ ऑक्सीजन बर्ड पार्क को प्लांटेशन इनलैंड पार्सल श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया। हरित क्षेत्र को मापने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल है नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स यानी कि NHGCI। इसकी पहली वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में तैयार की गई है। इसमें मॉनसून से पहले और बाद के आंकड़ों को भी शामिल किया गया है। उपग्रह आधारित तकनीक की मदद से अब यह समझना आसान होगा कि हाईवे गलियारों में हरित क्षेत्र कहाँ कितना है और कहाँ बेहतर पौधारोपण प्रबंधन की जरूरत है। यानी तकनीक अब सिर्फ हाईवे बनाने में ही नहीं बल्कि हाईवे के आसपास की हरियाली को निगरानी में रखने में भी भूमिका निभा रही है।
1: ग्रीन हाईवे की कहानी सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है, सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी पर्यावरण पर असर डालती है। ऐसे में सवाल है, क्या सड़क निर्माण में भी कचरे और कृषि अवशेष का इस्तेमाल किया जा सकता है? भारत में इसका एक उदाहरण बायो बिटुमेन तकनीक के रूप में सामने आया है। तो आइए सुनते हैं इस विषय पर हमारी विशेष रिपोर्ट।
2: सड़क निर्माण में बिटुमेन का इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा है। भारत अपनी बिटुमेन की जरूरत का करीब 50% हिस्सा आयात करता है। ऐसे में वैकल्पिक और घरेलू स्रोतों की तलाश महत्वपूर्ण हो जाती है। जनवरी 2026 में एक ऐसी तकनीक का हस्तांतरण किया गया जिसमें कृषि अवशेष से बायो बिटुमेन तैयार किया जा सकता है। बायो बिटुमेन वाया पाइरोलाइसिस फ्रॉम फार्म रेसिड्यू टू रोड्स नाम की इस तकनीक को CSIR और CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली और CSIR साथ में IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने मिलकर विकसित किया है। इस प्रक्रिया में कटाई के बाद बचे चावल के भूसे को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पाइरोलिसिस के जरिए चावल के भूसे से बायो ऑयल तैयार किया जाता है और फिर इस बायो ऑयल को पारंपरिक बिटुमेन के साथ मिलाकर बायो बिटुमेन मिश्रण तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया से सिर्फ सड़क के लिए बाइंडर ही नहीं बल्कि कई दूसरे उपयोगी उत्पाद भी मिल सकते हैं। इसमें गैसीय ईंधन, जैव कीटनाशक अंश और उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन जैसे उत्पाद शामिल हैं। उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन का इस्तेमाल बैटरियों, जल शुद्धिकरण और उन्नत सामग्री जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इस तकनीक का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया है। मेघालय में जोरबाट शिलोंग एक्सप्रेसवे NH 40 पर बायो बिटुमेन का इस्तेमाल करते हुए 100 मीटर का परीक्षण मार्ग तैयार किया गया है। यह परीक्षण इस तकनीक की व्यवहारिकता को प्रदर्शित करता है। इस पहल का एक दूसरा फायदा कृषि अवशेष प्रबंधन से जुड़ा है। कृषि अवशेष को उपयोगी संसाधन में बदलने से कचरा प्रबंधन की चुनौती को दूर करने की दिशा में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा रिक्लेम्ड एस्फॉल्ट पेवमेंट यानी RAP कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन यानी CA यानी CND वेस्ट पुनर्चक्रित एग्रीगेट्स प्लास्टिक कचरे स्लैग और क्रम्ब रबर जैसे पदार्थों का भी तकनीकी मानकों के अनुसार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करना और उपलब्ध कचरे तथा औद्योगिक उप उत्पादों को बेहतर उपयोग करना है।
1: लेकिन किसी हाईवे को ग्रीन बनाने में तकनीक और नीति के साथ लोगों की भागीदारी भी जरूरी है और कई जगह हाईवे गलियारों को जैव विविधता और स्थानीय पारिस्थितिकी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर ग्रीन हाईवे का उद्देश्य क्या है? सिर्फ सड़कें बनाना नहीं बल्कि ऐसी सड़कें तैयार करना जो संपर्क के साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखें। जहां पेड़ लगाए जाएं वहां उनकी जीवित रहने की क्षमता और बढ़त पर नजर रखी जाए। जहां निर्माण सामग्री की जरूरत हो वहां पुनर्चक्रित और वैकल्पिक सामग्रियों के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश की जाएं। ग्रीन हाईवे की ये यात्रा पौधारोपण से शुरू होकर तकनीक, वैज्ञानिक निगरानी, सतत सामग्रियों और समुदाय की भागीदारी तक पहुंचती है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने और तकनीकी सहयोग दिया है दानिश जैदी ने। नमस्कार।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सीमारोध समाधानेन भारत चीन संबंधाः सुदृढाः संजाताः इति विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः। रक्षा मंत्रिणा राजनाथ सिंहेन न्यरूपि यत् हिंद महासागर क्षेत्रे भारतं प्राथमिक सुरक्षा सहभागी अथ च विश्वसनीयतायाः प्रतीकत्वेन दृढ़तया प्रतिष्ठितं वर्तते। दोहा नगरे AIIB वार्षिक सम्मेलनावधौ भारत सऊदी अरब देशाभ्यां रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षा विहिता। निर्वाचनायोगेन उत्तर प्रदेश उत्तराखण्डयोः 11 राज्यसभासनानां द्विवार्षिक निर्वाचनाय प्रकाशिता अधिसूचना। अपि च एशियन क्रीडा प्रतिस्पर्धासु नीरू ढांडा इत्यनया महिलानां व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धायां भारताय स्वायत्तीकृतं प्रथमं सुवर्ण पदकम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण न्यरूपि यत् चीन देशेन सह भारतस्य संबंधाः गत वर्षापेक्षया अद्यत्वे उत्तमाः वर्तन्ते। न्यूयॉर्क नगरे एशिया सोसाइटी इति संस्थया आयोजिते सम्मेलने भाषमाणः डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् सीमारोधस्य समाधानानन्तरम् एव संबंधानां पुनः परिष्कारः प्रारब्धः। सः स्पष्टीकृतवान् यत् भारतेन दीर्घकालादेव चीनपक्षाय प्रतिपाद्यते यत् द्विपक्षीय सम्बन्धेषु शैथिल्यं कस्यापि देशस्य हिताय न भवति। सहैव दीर्घकालीनः सीमारोधः अपि कस्यापि राष्ट्रस्य हितं न साधयति। भारत अमेरिका संबंधानां अथ च व्यापार संधिवार्तानां प्रसंगे विदेश मंत्री न्यरूपयत् यत् उभौ देशौ इदानीम् एवं भूतां स्थितिं प्राप्तवन्तौ यत् व्यापार संधौ परस्परं सहमतिः जाता। अनेनैव सः विदेश मंत्रिणा प्रतिपादितं यत् रूस यूक्रेन संघर्षस्य अथ च ईरान उपसागर संघर्षस्य वैश्विक दक्षिणस्य अर्थव्यवस्थासु विनाशकारी प्रभावः जातः। सः ऊर्जा सुरक्षा स्थितौ चिन्तां प्राकटयत्। डॉक्टर जयशंकरः सचेतितवान् यत् आगामिषु मासेषु महतः खाद्य संकटस्य अथ उर्वरकाणां तीव्र न्यूनतायाः गभीरा संभावना विद्यते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन सबलं प्रतिपादितं यत् परिवर्तमान प्रौद्योगिक्याः अनिश्चिततायाः अथ भौगोलिक निकटतायाः उत्पन्नानां नूतनाह्वानानां मध्ये भारतेन स्वसज्जतायां भूसामरिक चिन्तनम् आपत्कालीन योजना च अभिन्नभागत्वेन अंगीकरणीये। अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलनं संबोधयन् श्री सिंहः अवोचत् यत् देशस्य लक्ष्यं सुस्पष्टम् अस्ति यत् संकटस्य आगमनात् पूर्वमेव अस्माकं सज्जता भवेत्। रक्षामन्त्रिणा कथितं यत् प्रचलत् ऊर्जा सुरक्षा अभियानं देशस्य ऊर्जा आपूर्ति मार्गाणां राष्ट्रहितानां च संरक्षणं भारतीय नौसेनायाः व्यावसायिकतां सहैव संचालन सज्जतां पुनः एकवारं प्रामाणयत्। सः न्यरूपयत् यत् हिंद महासागर क्षेत्रे भारतं प्रथम सहायकः प्राथमिक सुरक्षा सहभागी सहैव विश्वास विश्वसनीयतयोः प्रतीक रूपेण दृढ़तया तिष्ठति, येन राष्ट्रस्य महासागर इति परिकल्पना सुदृढ़ा जायते। श्री सिंहेन प्रोक्तं यत् दक्षिण चीन सागरे भूमध्य सागरे तथा अटलांटिक महासागरे भारतीय युद्धपोतानां सशक्त उपस्थितिः राष्ट्रस्य नीलजल सैन्य सामर्थ्यं प्रदर्शयति। 47-2000 पर्यन्तं विकसित भारत संकल्पस्य सिद्धौ भारतीय नौसेना एका सामरिक आलम्बशिला रूपेण कार्यं करोति इति प्रतिपाद्य सः नौसेनायाः उच्चस्तरीय युद्ध सज्जतां प्राशंसयत्। सः प्रोक्तवान् यत् भारतस्य सामुद्रिक शक्तेः उद्देश्यं केवलं समुद्रे राष्ट्रध्वज प्रदर्शनं नास्ति, अपि तु यत्र कुत्रापि त्रिवर्णध्वजः दृश्यते तत्र सुरक्षायाः विश्वासस्य अथ च दृढ आश्वासस्य सञ्चारः भवेदित्यस्ति। भारत सऊदी अरेबिया देशयोः रक्षा सुरक्षा व्यापारः

0: पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश।
1: Benchmark domestic indices decline. Sensex falls nearly 250 points. Nifty settles at 22,716. India is working to become world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. And global crude oil prices decline over 1%.
0: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,716 के स्तर पर दर्ज। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रामोहन नायडू ने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का प्रयास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक की गिरावट।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goy.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: सबसे

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% के नुकसान से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की गिरावट रही। वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से कारोबार की शुरुआत में से ही आज दबाव रहा। दोपहर बाद बाजार में कुछ सुधार के बावजूद सूचकांक लगभग 6 महीनों के निचले स्तर पर दर्ज हुए।
0: Benchmark domestic equity indices declined for the second consecutive session today. The Sensex lost 243 points or 0.33% to close at 72,529. The Nifty fell 64 points or 0.28% to settle at 22,716. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index shed 1%, while the small cap 100 index dropped 0.8%. Markets opened lower this morning, tracking weak global cues. In the first hour of trade, benchmark indices touched the day's low before staging a reversal. Despite a moderation in losses during the afternoon session, the benchmark indices closed near their six-month lows, as persistent global and domestic headwinds, along with pressure related to the monthly Nifty futures and options FNO expiry, continued to weigh on market sentiment.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 18 कंपनियों में आज गिरावट रही। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.7%, एचसीएल टेक 2.3% और टीसीएल 1.7% के नुकसान से बंद हुए। हालांकि अडानी पोर्ट 4.4%, सन फार्मा 1.1% के साथ साथ टाटा स्टील और कोटक बैंक 1% की बढ़त बनाने में कामयाब भी रहे।
0: In the sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors edged lower. Among the top laggards, consumer durables skidded 2%, focused IT lost 1.8%, and insurance dropped 1.6%. In contrast, services gained 1.5%, telecommunications rose 1.3%, and metal added 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,462 companies declined, 1,925 advanced and 209 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार दर्ज हुआ। डॉक्टर शर्मा, किस तरह से देखते हैं बाजार की दिशा को? बाजार में कहां कुछ घबराहट सी थी जो बाजार वैश्विक परिदृश्य में कहीं तो बिकवाली के दबाव में रहा, आज लगभग एक बार उसने आज दिन के अपने निचले स्तर को भी छुआ। हालांकि बाद में थोड़ा सा सुधार तो हुआ, लेकिन ओवरऑल आज टोटल माने तो बाजार में गिरावट ही हावी रही।
2: जी बिल्कुल, बाजार काफ़ी वीक था आज, और कारण यही है कि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है वो अभी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो उसका जो उम्मीदें थी

0: शायद कुछ ट्रंप में और ईरान में बात होगी, शायद ट्रंप साहब कोई डिसीजन लेंगे, पीस वार्ता शुरू होगी या फिर हॉर्मुज को खोलने की बात होगी, लेकिन अच्छा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। और दूसरे नंबर पे जो एक यूएस ट्रेजरी बिल जो है, जो उसका जो बॉन्ड यील्ड है वो राइज कर रहे हैं, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए या फिर कैपिटल फ्लोज के लिए अच्छे नहीं हैं। और तीसरे नंबर पे जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ दिनों में वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्रूड ऑयल तो बहुत ही अभी चिंता का कारण तो है ही है। और पहले क्या होता था कि वॉलेटिलिटी आती थी, एक बार प्राइसेस ऊपर जाके फिर वापस करेक्शन लेके, कुछ ऐसी न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती थी कि करेक्शन हो गई है, कि अभी कुछ शांति वार्ता की बात होने लगी है, तो प्राइसेस एकदम से करेक्ट होते थे। लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है, अभी प्राइसेस ऊपर जाके 105, 106, 107 के आसपास सेटल हो रहे हैं, वहीं पे ऊपर नीचे थोड़ी वॉलेटाइल है। बट जैसे पहले एक बड़ी करेक्शन आ जाती थी जब प्राइसेस ऊपर जाए, वो नहीं हो रहा है। तो अगर ये ऐसे ही स्टेबल रहते हैं इस लेवल पे जाके, तो काफ़ी मतलब एक वरिंग फैक्टर है, खास करके हमारे लिए भी, क्योंकि हम बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं क्रूड के। और जो जैसे आपने बात की कि मार्केट्स में पहले काफ़ी नेगेटिव था, डिसेलरेशन थी, उसके बाद मार्केट्स रिकवर भी हुई, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आज एक तो एक्सपायरी डे था डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में एक्सपायरी डे था, तो जो शॉर्ट कवरिंग्स थी काफ़ी जो ट्रेडर हैं उन्होंने अपनी रिकवरी पोजिशन, जब मार्केट एक लेवल पे जाके और डिसेलरेट नहीं हो रही है, एक लेवल पे आ गई है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी बना है, अभी मार्केट काफ़ी लो पे है, जो जैसे आपने बताया कि 2-3 साल के लो स्तर पे मार्केट है,
1: तो एक अभी
0: तो 6 महीनों के स्तर पे है, और जैसे पहले 23,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन अभी 23,000 से भी नीचे है मार्केट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो बाइंग आ जाती है, क्योंकि ऐसा एक बाइंग एडवांटेज भी आता है इन्वेस्टर के पास, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, ये जो भी ग्लोबल हेडविंड्स है उसी की वजह से, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसी की वजह से, अदरवाइज इंडिया के।
2: हाउ डू यू व्यू द स्टॉक एक्सचेंजेस व्हिच वंस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कैश व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑगस्ट, typically markets are heightened volatility on monthly expiry days, however CAS has led to such wild swings which you noticed today as well in the benchmark indices, and that too at the fag end of the sessions. How do you react to the CAS bringing about such volatility in the market?
0: Yes, I agree that at the closing time some volatility exists in the
2: within 2 seconds it happens.
0: Yes, in the cash market and in the options also. But otherwise, I believe there is some stability during the day session. When you are in the mid of the day, then the stability is also there. But at the closing time, some volatility happens in the last 10-15 minutes. So I think that is majorly retailers are not investing in the options. So that's why I think they are not impacted. But in the trading segment, this is a worrying factor. And SEBI is also taking measures to resolve it. And I believe there will be some plausible solutions in the coming times.
2: A consultation paper is available till 3rd October.
0: Yes,
2: okay.
0: Yes.
2: Also, the Indian benchmarks have now logged one of the longest weekly losing streaks in years. How much of this fall is domestic because of earnings, valuations, FPI flows versus external, which you mentioned also, oil, US yields, global risk off, etc.?
0: Yes, I believe this is majorly because of the international factors, because our fundamentals are strong, very, very strong, because now we are very good in the IIP numbers, our GDP numbers are 7.8%. Though inflation worries are there, that too because of the international factors, as WPI is significantly increased to the level of more than 9%, and that is also passing through to the CPI. But overall, the other growth indicators, whether the exports are growing 17-18% in merchandise segment, and IIP numbers, core infrastructure, all are steady and growing.

0: significant. But at the global level, the such kind of the news like crude prices are going up and there is no sign of discussion between Iran and US, and again the treasury 10-year treasury bill yield are high and dollar is again strengthening and the US has increased the Fed rate, so all these are the negative factors for the financial markets. That's why the global volatility impact the markets in emerging Asia, like India is impacted by such volatility. So, but domestically, I think there is no bad news from any segment.
1: अभी थोड़ी दिन बाद ही बाजार में दूसरी तिमाही के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे.
0: जी.
1: और आम तौर पे बाजार तिमाही नतीजों को पहले से ही भांप लेता है, महसूस कर लेता है.
2: फैक्टर इन कर लेता है.
1: जी. क्या बाजार अभी भी उन ट्रिगर्स से कहीं उत्साहित होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि उनके नतीजों को बाजार उससे उत्साहित नहीं है?
0: देखिए, नतीजों में क्या होता है कि उससे पहले मार्केट्स इतनी डाउनसाइड या इतनी डिसेलरेशन नहीं लेती हैं, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन ये जो मेजर इम्पैक्ट आता है, जो डिसेलरेशन है, जो अभी हम कुछ पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड फॉल आया, जो मार्केट्स पहले कंसोलिडेट कर रही थी समवेयर बिटवीन 23,000-23,500, बट नाउ मार्केट्स डिसेलरेट बिलो 23,000, बट बिकॉज ऑफ दी
1: 23,000 के स्तर से नीचे अगर आता है तो क्या ये चिंता का सबब है या ये अवसर का समय है?
0: देखिए, मैं तो इसको अवसर का
2: आज 22
0: अवर मैं तो इसको अवसर का अवसर मानूंगा. अवसर मानूंगा क्योंकि अब आप 23,000 के नीचे हैं तो मार्केट का जो वैल्यूएशन है, आई बिलीव दैट इज वेरी लुक्रेटिव नाउ. आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए मार्केट इज वेरी गुड, आई वुड से, बिकॉज एक ना एक दिन तो यूएस और ईरान में पीस होगा, सीज फायर होगा दोनों,
1: बट उसके पहले कितना नुकसान,
0: उसके पहले कितना नुकसान होगा वो मार्केट्स ऑलरेडी उसको फैक्टर इन कर चुके हैं.
1: अगले सप्ताह मौद्रिक नीति भी आनी है रिजर्व बैंक की, तो वो कैसे प्रभावित होगी?
2: डॉक्टर शर्मा, एज माय कॉलीग सेड, आरबीआई एमपीसी पॉलिसी इज नेक्स्ट वीक, सो आर वी सीइंग डीरेटिंग ऑफ इंडियन इक्विटीज after years of premium valuations, which you also just pointed out, or is this mainly a liquidity and risk premium story?
0: I think this is the story of the uncertainty actually, mm-hmm. at the global level that is impacting the market sentiment. Otherwise, markets hold a strong potential to bounce back if some now let's see some good talks or the peace talk starts between US and Iran tomorrow, then the markets will strongly bounce to the
2: sentiments
0: will improve. So I believe this is the story of sentiments and the volatility at the global level, but market pillars like markets are growing, or the economic sentiment or the business sentiment is based on the four major things, like the demand trajectory, second the stability in the repo rate during the last many quarters, and the efforts of the trade and industry, and last the hand holding provided by the government. Many reforms undertaken by the government during the last many years, and particularly during the West Asia crisis during the months of March, April, May. So these are supporting the sentiment of the investors. But at the global level, the uncertainty again impacts the sentiments during the some such kind of volatility.
2: Moving on, 17 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, ISP, recorded year-on-year expansion in July 2026, with the 10 posting double-digit growth. According to the subsectoral trial ISP data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, today, administrative and support services led the pack with growth of 20.9%, followed by retail trade at 18.5%. Real estate rose 14.4%, accommodation and food advanced 12.6%, and banking registered 12.3% annual growth. Index of Services Production tracks short-term changes in the volume of output produced by the formal services sector relative to a specified base year. MOSPI said that the monthly ISPs are being published on trial basis to assess data quality

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और उससे

0: आगे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत के महासागर दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत पहली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहरी ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों की ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बीच मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। आईएनएस तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स वर्ग में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Defense Minister Rajnath Singh said that the Indian Navy is acting as a strategic anchor in realizing India's resolve of becoming a developed nation by 2047. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner, and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today launched a new set

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे हैं 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा की। आज के हमारे खास अतिथि हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, जो कि 16वें फाइनेंस कमीशन के सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं और साथ ही साथ SBI के चीफ ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर सौम्या कांति घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के

0: कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
2: चर्चा शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को किस तरह नई गति देने में योगदान दिया है।
3: एक समय भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती थी। बैंकों की फाइलों में ऐसे ऋण बढ़ रहे थे जिनकी वापसी मुश्किल हो रही थी। इन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। इसका असर सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं था। जब बैंक का पैसा फंसा रहता है तो नए ऋण देने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक और कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट ने मिलकर उस समय ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को जन्म दिया था। इसी चुनौती से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था एसेट क्वालिटी रिव्यू, यानी बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की विस्तृत जांच। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि बैंकों की किताबों में छिपे वित्तीय दबाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और खराब ऋणों की सही पहचान की जा सके। खराब ऋणों की पहचान के बाद अगली चुनौती थी इनका समाधान कैसे किया जाए। इसी क्रम में वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC लागू किया गया। इसका उद्देश्य कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए एक समयबद्ध और व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध कराना था। IBC के तहत ऋणदाता और देनदार दोनों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की महत्वपूर्ण भूमिका है। NCLT के समक्ष कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जबकि इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए NCLT का प्रावधान है। वहीं IBC के क्रियान्वयन और उससे जुड़े पेशेवर तंत्र की निगरानी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI की स्थापना की गई। IBBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक IBC के तहत कुल 1194 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस व्यवस्था के कारण कई मामलों में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही देनदारों ने अपने बकाए का निपटारा किया। लेकिन केवल खराब ऋणों की पहचान और समाधान ही पर्याप्त नहीं था। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होना भी जरूरी था ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकें और नए ऋण उपलब्ध करा सकें। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में कदम उठाए। पूंजी बढ़ने से बैंकों को अपने वित्तीय आधार को मजबूत करने और ऋण देने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिली। RBI के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण ने भी बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत करने में योगदान दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना, उनकी परिचालन क्षमता बढ़ाना और बेहतर तरीके से जोखिम का प्रबंधन करना था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2020 के बीच कई बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ और वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बैंकिंग सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा बैंकों के कामकाज में बेहतर प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और तकनीक का इस्तेमाल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज यानी इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जैसे सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से शासन, जिम्मेदार ऋण वितरण, जोखिम प्रबंधन और तकनीक आधारित बैंकिंग पर जोर दिया गया। इन सभी कदमों का व्यापक उद्देश्य एक ही था, बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना, वित्तीय जोखिम को कम करना और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रभाव को बेहतर करना। इन सुधारों के परिणाम बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों में भी दिखाई दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2016 में 14.5% था, जो मार्च 2024 तक घटकर 2.8% रह गया। सर्वेक्षण के अनुसार बैंकिंग नियमन को मजबूत करने, ऋण वसूली कानूनों में बदलाव, IBC और अन्य उपायों ने बैंक तथा कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया 2018-19 से जारी रही और सितंबर 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। यही बदलाव उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण ने ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज के रूप में रेखांकित किया है, यानी बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों की बैलेंस शीट में पहले की तुलना में सुधार। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है तो वे कारोबार, उद्योग और आम लोगों की ऋण जरूरतों को अधिक मजबूती से पूरा कर सकते हैं। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: डॉक्टर घोष, इससे पहले कि हम एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या फिर बैंक रिकैपिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स के बारे में चर्चा करें, हम थोड़ी सी नजर हमारे अर्थव्यवस्था के हाल पर डालना चाहेंगे। 90 से लेकर अब तक हमारी अर्थव्यवस्था किस माहौल से, किस दौर से गुजर रही थी?
0: इंडियन इकोनॉमी ने, अगर आपने इसका जर्नी देखते हैं कि 1990 से अगर हम शुरू करते हैं, 1991 में जब पहले हम रिफॉर्म शुरू किया था, उसी टाइम में रिफॉर्म वाज बिकॉज ऑफ नेसेसिटी एंड कंपल्शन। नाउ रिफॉर्म इज बेसिकली एक पार्ट है, हमको रिफॉर्म करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। उसी टाइम भी हमने रिफॉर्म किया था, काफी मार्केट में रिफॉर्म किया था, एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म किया था, रूपी को हमने डिवैल्यू किया था, लाइसेंसिंग राज को खत्म करने का कोशिश किया था। लेकिन काफी सारे उसके बाद 1996 के बाद 1990 से 2004 का जो पहले जो सेशन था एनडीए, उसमें तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें आपको पता है कि गोल्डन क्वाड्रेंट बने थे, टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुआ थे, पावर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फिर उसी टाइम में आपको क्रेडिट ब्यूरो का भी आपका स्थापना हुआ था, और उसी टाइम इतने सारे रिफॉर्म्स हुआ था। उसी टाइम में आपको एफआरबीएम कमिटी का भी रिफॉर्म हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है उसमें हमने पहले बार देखा था कि मार्केट में उसको एक जो बोलते हैं कि रिपोर्ट जो आदम जानते हैं, जहां से वो सब लोग उसको देख के बैंक्स बोरो करते हैं, तो ये सारे रिफॉर्म्स उसी टाइम में हुआ था। पावर सेक्टर का पहले जो रिफॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेक्टर एक काफी सेंसिटिव इश्यू है, और अभी से लास्ट 30 साल से पावर सेक्टर को हम रिफॉर्म करने चाहते हैं, तो उसी टाइम खास पावर सेक्टर के भी रिफॉर्म हमने लेके आए थे। तो बहुत सारे रिफॉर्म उसी टाइम चालू हुआ था। फिर 2004 से अगर हम देखें, उसके बाद हमारा उसी जो 4 से 8 में ग्रोथ हमारा अच्छा था, उसी टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था ग्रोथ का जो पुश था, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी उसी टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उसके लिए क्या हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी का मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी को भी मिल गया था, इसके लिए उसी टाइम हम अच्छा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2007-08 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था 2008-09 में जो क्राइसिस के बाद, उसी टाइम क्या हुआ था, उसी टाइम हम बहुत सारे एक्चुअली हमने बहुत फिस्कली एक्स्ट्रा वैकेंट हो गया था। आपको अगर याद है 2009 में हमने पे कमीशन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था
2: जी।
0: हमने उसके साथ हमने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, और उसके साथ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो बोलते हैं वो भी काफी बढ़ गया था। उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके बाद आपको उसी टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 10% से ऊपर रहते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक टैग आ गया कि हमने फ्रेजाइल 5 का हो गया, बैंकिंग सेक्टर का उसी टाइम एसेट क्वालिटी खराब होना शुरू किया, और ये क्या हुआ था कि उसी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बैंक्स ने लेन किया था। लेकिन उसका इशू क्या था कि क्योंकि ग्लोबली जो कमोडिटी साइकिल था उसी टाइम बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसका प्राइसेस का दाम कम हो गया, इसके लिए जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें सारे उनका लोन्स काफी बिगड़ गया। फिर उसके बाद क्या किया, 2015 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हमको सारे बैंक्स को क्लीन अप करके एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आना है। तो उन्होंने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, फिर सारे बैंक्स को एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, जितना उसका लोन्स था वो लोन्स को रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये लोन्स बैड लोन्स है, ये हम वापस नहीं कर सकते है। उसके लिए बैंक्स का जो था प्रोविजन बढ़ गया था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया था, और सारे जो नंबर्स था वो बिगड़ गया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन भी गवर्नमेंट में किया था, और उसके बाद उनके साथ उन्होंने ईज ऑफ बैंकिंग को रिफॉर्म्स किया था। तो इसके चलते क्या हुआ, 3-5 साल के बाद बैंकिंग सेक्टर का हालत, पैंडेमिक के बाद आपको पता है कि पैंडेमिक में पूरा इकोनॉमी बंद हो गया, लेकिन हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग सिस्टम उसपे एक्चुअली वो अच्छा किया उसी टाइम में। तो मैं आपको कुछ अगर नंबर बताऊं कि ये जो AQR हुआ फिर बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 10 साल में जितना उन्होंने रिफॉर्म्स लेके गवर्नमेंट आए हैं उसको हम ईज रिफॉर्म्स बोलते हैं। उसमें बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन किया था, बैंक को रिकॉन्सोलिडेशन किया है, बैंक्स नॉर्म्स को चेंज किया है और बैंक्स को पूरा फ्रीडम दिया है कि आप इसको काम कीजिए। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, कुछ डेटा 2017-18 में बैंकिंग प्रॉफिट था नेगेटिव, मैंने 32,400 करोड़ सारे बैंक्स का प्रॉफिट था 2017-18। आज का दिन 2025-26 में बैंक का प्रॉफिट है 4 लाख करोड़। तो उसका मतलब

0: ये प्रॉफिट आपको 5 गुना बढ़ गया, 5 से 6 गुना बढ़ गया। ग्रॉस ने एनपीए रेशियो रिकॉग्निशन हम इक्यूअर करने के लिए जो 11% था 2017-18 में, आज का दिनों नंबर है 1.7%, तो सबसे अच्छा नंबर है 13 साल का। नेट एनपीओ रेशियो उसका मतलब कितना जो लोन हमारा खड़ा था उसका हमने प्रोविजन किया, आज उसका रेशियो है 0.4%। उसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का जो सारे लोन्स है वो सारे लोन्स एडिक्वेटली कवर्ड है। स्लिपेज रेशियो जो हम बोलते हैं कितना लोन, वो 7.5% था उसी टाइम में, आज वो 1% का आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है 2017-18 में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 174% गिरा था, आज का दिन वो 2025-26 में और 26-27 में वो 10% से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% का आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सारे नंबर्स आज काफी अच्छा है। और हमको अनुमान है कि ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हुआ है, काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, और एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स इसमें जो हुआ है अपार्ट फ्रॉम द एक्यूआर, सेक्टर वाइज अगर आप मुझे पूछे, एसएमई जो सेक्टर है आपका, जो पता है जो बैंकिंग सेक्टर जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है 18-19% हो रहा है, बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपको इतना क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगा, आगे जाके ये चल सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है कि इसमें ये एसएमई क्रेडिट ग्रोथ 23-24% लास्ट 2 साल से चल रहा है, एंड दे आर ऑल सॉलिड ग्रोथ। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स दिया इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और बैंकिंग सिस्टम में जुड़ा है, वैल्यू चेन में ऊपर गया है, और आज का दिन उसका हमने उसका बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे गया है। पहले भी रिफॉर्म्स हुआ था 1998 में, अगर आप देखें उसी जो हमने आपके पहले बोला, उसी टाइम नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन आए थे, फिर उसके बाद बेसेल कमेटी रिकमेंडेशन भी उसी टाइम चालू हुआ था, फिर 2014 के बाद हमने काफी सारे रिफॉर्म्स किया। एक तो उसमें है जो रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड जो हमने किया है। तो मुझे चलते ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज नाउ पॉइज्ड फॉर एन वेरी गुड रन, बिकॉज इसका जो बेसिस है वो काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स।
1: जी बिल्कुल, और अब इन्हीं सब विषयों के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू से। हमारा मानना यह है कि हमारी जो सरकार है उनकी योजना हमेशा से रही है कि पहले समस्या को ढूंढा जाए, फिर उसका समाधान ढूंढा जाए, और फिर बैंकिंग सेक्टर में मजबूती लाई जाए। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो पहले समस्या को ढूंढने पर निर्भर था, और उसके जरिए बैंकों की जो स्ट्रेस लोन्स की स्थिति थी वो ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आए। तो आपके नजरिए से एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाद में सुधार लाने में इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू तो इनेविटेबल था। प्रॉब्लम ये था कि हम उसको पहले 2009 के बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में गया था, हम हो सकते थे उसी टाइम जो लोन खराब है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हम उसको 3-4 साल ऐसे जाने दिया कि उसको हम नहीं करे, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन आगे जाके जो होना था वही हुआ, जैसे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ था, ये सारे जो लोन्स था बिगड़ गया। और इसमें आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बैंक्स का लोन था 20-30%, सारे लोन मोस्टली उसी सेक्टर्स में उस पर बिगड़ गया था। रोड्स था, पावर था, ट्रांसपोर्ट था, इस पे काफी सारे लोन आपको बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बिगड़ गया उसके बाद आरबीआई ने एक रिफॉर्म्स लाया, एक्यूआर रिव्यू, इसको हम बोलते हैं RRR, रिफॉर्म्स रिकैपिटलाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। तो रिफॉर्म्स किया, रिकैपिटलाइजेशन, गवर्नमेंट में 3 ट्रिलियन रिकैपिटलाइज किया, फिर रिजोल्यूशन किया और रिफॉर्म्स किया। तो ये तीनों आरोप करके बैंकिंग सेक्टर में और जो ग्रोथ हुआ, सबसे बड़ा चीज कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आज जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो नंबर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा है, ये पहले था नहीं। तो ये जो आप बीच बीच में आप काफी टाइम आपने ये बात सुनता है कि इतने सारे लोन्स को हमने बैंक्स का राइट ऑफ कर दिया, ये बेसिकली एक ही उगर था। ये लोन जो पहले था, ये लोन को आपको क्लीन अप करना था, क्लीन अप पहले हुआ नहीं, बाद में क्लीन अप हुआ। जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का नेगेटिव था, आज जो 4 लाख करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी है। और मैं आपको बाकी भी जो नंबर्स दिया कि लिक्विडिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सारे नंबर्स डिकेड हाई में है। तो मेरे यही कहना है कि AQR इनेविटेबल, एक नेसेसरी इविल था, हम उसको करना था, हमने कर लिया। 2-3 साल के लिए बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद सारे बैंक्स इन इंडिया आर ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वार्ड फुटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फुटिंग। एंड मुझे लगता है कि जो अब इकोनॉमी आज ग्रो हो रहा है 18 to 19

0: इकोनॉमिक क्रेडिट नीड्स।
1: आपने SMEs का भी जिक्र किया था अपने जवाब में, तो मैं चाहूंगी कि आप SME सेक्टर में जो रिफॉर्म आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और साथ ही साथ 2016 में आए IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के बारे में भी बताएं, और IBC के आने के बाद कंपनियों के बैड लोन से निपटने के तरीके में किस तरह बदलाव आया।
0: देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो मैं IBC लेके आता हूँ। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड 2016 में आए थे, और वो बेसिकली वो एक डिमांड था बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि अगर हमको कोई लोन को रिजोल्व करना है उसको हमको कोर्ट, अगर नहीं होता है उसको हम एक कलेक्टिव मेकानिज्म में डालेंगे, उसमें उसका रिजोल्यूशन होगा। पहले क्या होता था कि अगर हम किसी को रिजोल्यूशन के लिए बैंक किसी प्रोमोटर से किसी को बुलाते थे, वो करते नहीं था। तो ये कोड आने के बाद ये उनके लिए मस्ट हो गया, अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको मार्केट में चला जाएंगे, दूसरा किसी के हाथ में चला जाएंगे। ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि आप अगर ये देख डिबेट देखे, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव डिबेट है कि इतना पैसा आपने लोन उसको मकूब कर दिया, लेकिन उनके साथ ये बात भी बोलना है कि लोन राइट ऑफ जो होता है बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप के लिए, उसके बाद उनके हाथों से उस कंपनी का मैनेजमेंट चला जाते हैं, बिकॉज ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड में एक बीडिंग होता है, जो सबसे अच्छा बीट करेंगे उसको कंपनी मिलेगा। इसके बाद हमने देखा कि काफी स्टील सेक्टर में जो सबसे खराब सिचुएशन से गुजरा था, सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन स्टील सेक्टर में हुआ था। कुछ कंपनीज का नाम आपको पता है, तो भूषण स्टील फॉर एग्जाम्पल, उसको टेक ओवर हुआ और उसी टाइम में करके वो कंपनी आगे चलते रहा। तो ये तो पहला बात है। दूसरा बात है कि अगर आप SME सेक्टर को बात करें, SME सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। पहले रिफॉर्म जो आए थे कि वो जो ECLGS स्कीम, बेसिकली लोन गारंटी, गवर्नमेंट में बोला था कि जो लोन बैंक्स एक्सटेंड करेंगे पैंडेमिक टाइम्स पे उसको लिए कोई उसको रिस्क वेट नहीं लगेंगे, तो उसके लिए वो लोन काफी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट में फिर ECLGS लेके, आपको अगर पता है कुछ दिन पहले ये वेस्ट एशियन क्राइसिस में ECLGS में 2,50,000 करोड़ का लोन बैंकिंग सिस्टम ने दिया है। और उसके साथ SME सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। एक तो फॉर एग्जाम्पल जो SME सेक्टर में अभी स्ट्रीमलाइंड हो गया, लोन अगर मिलना है तो आपको पास अगर पेपर्स है प्रॉपर, ये लोन आप 59 मिनट्स में मिल सकते हैं। उसके बाद जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थे SME सेक्टर, उसको भी सिंप्लीफाई हुआ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक पोर्टल खुला हुआ है, उसका आपको पता है कि उसका नाम है उद्यम पोर्टल। उसमें जितने सारे MSME सेक्टर का प्लेयर्स है जो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, वहां पर आप उसका अगर नाम डालेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से आप जोड़ सकते हैं। तो सारे चीज अगर देखे, ये सारे चीज देख के आज का दिन मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ SME सेक्टर का 24% चल रहा है। MSME सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि जो उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है वो 7 करोड़ का ऊपर है, और हमको 7 करोड़ में अगर पहुंचना है तो हमको और ज्यादा लोन MSME सेक्टर को हम दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपका डिजिटाइजेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, अब रिकॉर्ड आपके पास हो जाते हैं, आप दिन लोन देना आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो ये चीज सबसे अच्छा हुआ है SME सेक्टर के लिए, क्योंकि पहले ये लोग का बीच जो पेपर्स था वो फॉर्मलाइज नहीं था, अभी फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इनका बैंकिंग सेक्टर में इससे जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक छोटा सा चीज में इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए बोलना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए आपने सुना है कि बीच बीच में एक खबर आते है कि इसका जो रिकवरी हुआ है बहुत कम हुआ है, इसका रिकवरी और होना चाहिए था। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसमें एक बात आपको मानना चाहिए कि बीच में जब इंसॉल्वेंसी कोर्ट का दो फेज है, पैंडेमिक का पहले, पैंडेमिक के बाद। पैंडेमिक का पहले क्या हो रहा था कि पैंडेमिक का पहले उन्हें कोर्ट पे बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, लेकिन पैंडेमिक के बाद शायद 1-2 साल आपको पता है कि कोर्ट बंद था, काम नहीं हुआ, उसके लिए काफी सारे आपको बैकलॉग आ गया। तो हो सकता है कि इसमें हम और कुछ रिफॉर्म करें, और कुछ सुधार लेके आए, और ज्यादा कोर्ट्स बनाए, और थोड़ा देर से मेकानिज्म है थोड़ा ठीक से देखे, तो इसमें इंप्रूवमेंट आनी है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई जब लॉ आते हैं उस लॉ में अमेंडमेंट्स लेके उसको हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हो सकते हैं फ्यूचर में इसका हम इम्प्रूवमेंट में इसका कुछ स्कोप है, बट ऑन द होल ये अच्छी रिफॉर्म्स है। एंड हमको जानना, आपको मानना पड़ेंगे कि इस रिफॉर्म्स के लिए जो कंपनी का कंट्रोल आपका हाथों में होता है वो चला जाते हैं दूसरा किसी का हाथों में। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है ये रिजोल्यूशन कोर्ट का।
1: इससे पहले कि मैं IBBI यानी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, NCLAT और NCLT की चर्चा करूं, मैं आपसे एक और विषय में बात करना चाहती हूं, जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। यानी कि एक तरफ तो हमारे बैंक्स थे जो कि स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और दूसरी तरफ थी हमारी कंपनीज

0: क्योंकि सेम समस्या से गुजर रही थी। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इसको एक साथ एड्रेस करना कितना जरूरी था, बजाय इसके कि दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग समस्याओं का समाधान होता। यानी एक तरफ हम बैंकों का समाधान ढूंढते और दूसरी तरफ हम कंपनियों के खराब हुए लोन्स का समाधान ढूंढते।
1: देखिए, ये दोनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए, बैंक्स ने रिकॉग्नाइज किया, लोन रिकवरी चालू हो गया, उसके साथ काफी सारे सेटलमेंट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, मतलब आप पे बिल में आ जाओ, आप कितना पैसा आप दे सकते हैं उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट होगा। तो क्या हुआ, उसके बाद ये सेटलमेंट चालू हुआ कंपनीज का, कंपनीज का बैलेंस शीट का भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। आपको, आप सुनने में आश्चर्य हो जाएंगे, 2020 से 2026 तक आप देखें कंपनीज को जो मार्केट से जो पैसा उठा है, 15-16 लाख करोड़ उनका ओवरऑल कैपिटल उन्होंने मार्केट से उठाया है। और अगर आपका कैश भी देखे, उसका कैश भी उसका काफी सारा, अच्छा 14 से 15 लाख करोड़ कैश है। तो उसका मतलब कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में काफी क्लीन हो गया। उसका पैंडेमिक के टाइम में इंटरेस्ट रेट काफी नीचे चला गया, इसके लिए जो पुराना लोन उन्होंने लिया था वो सारे लोन उन्होंने रीपेमेंट कर दिया। उसका बैलेंस शीट में अभी कोई लेवरेज नहीं है। तो एक तरफ बैंक का बैलेंस शीट इज परफेक्टली फाइन नाउ, कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट है वो काफी अच्छा अभी है, क्योंकि बैंक का कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट में अभी कैश काफी हैंड में है, कैश इन हैंड अच्छे में है और पैसा भी उठा सकते हैं और उसका रेटिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हमारा ट्वाइन बैलेंस शीट के था, दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट।
0: हमारे श्रोताओं के लिए एक बार आप अगर संक्षिप्त में एवरग्रीनिंग का मतलब समझा सकें तो शायद हमें आगे की बात समझने में और आसानी होगी।
1: एवरग्रीन का जो प्रॉब्लम था, पहले ये बात होते थे कि पहले जब ग्लोबल क्राइसिस के बाद 2009-10 में क्या होते थे कि एक लोन अगर खराब हो गया, उसमें के उसी लोन को आप ठीक करने के लिए और लोन उस कंपनी ले रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका हम एवरग्रीनिंग बोलते हैं। जब आपको पता है कि ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे, आप उसको और एक दूसरा लोन देंगे उसी लोन को वापस करने के लिए, तो उसका हम एवरग्रीनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए AQR रिव्यू हुआ था, देखना चाहते थे RBI गवर्नमेंट की कितना सारे स्ट्रेस बैंक के ऊपर है। ये अच्छा है कि वो हम चीज निकल गया। बैंकिंग सेक्टर का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मैं आपको दोबारा बार बार बोलना चाहता हूँ, राजा रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ है और इसी आगे चलते भी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे ही रहेगा।
0: जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि समस्या के तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया समस्या को पहचानना, जो कि एसेट क्वालिटी रिव्यू ने किया। दूसरा हिस्सा हो गया समस्या का समाधान ढूंढना, और तीसरा हो गया उसे इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम देखें तो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: 2016-17 में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी सारे लोन वेवर चलते थे। अगर कोई भी आ गया, बैंक्स कोई बोलते रहते हम गवर्नमेंट पावर में आएंगे तो हमको लोन वेव कर देंगे। इसके लिए क्या होता है कि जो पहले जो लोन वापस कर रहे थे वो भी बंद कर देते, तो वो लोन वेवर खत्म हो गया। क्योंकि अभी बहुत सारे एग्रीकल्चर जो फार्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उसके लिए आप उनको KYC उसका KCC नॉर्म्स हो गया और लोन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया। तो इसमें भी काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, एलाइड सेक्टर के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात कर सकते हो, इंडस्ट्री है, रिटेल है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हुआ है जिसके लिए आज बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपोजिट ग्रोथ है वो इतना अच्छा देख रहे हैं। और दुनिया में अनसर्टेनिटी भरे हुए है, आपको भी पता नहीं है आज US में क्या होगा, कल क्या होगा। आज हो सकता है कि टैरिफ लग गया, हो सकता है कि कल टैरिफ हट भी गया, हो सकता है कि टैरिफ फ्यूचर में नहीं भी आया। पर दुनिया बहुत तरफ से त्रस्त है कि क्या होने वाला है। इसका बीच में अगर इतना अच्छा परफॉर्म करना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट है। और ये जो ग्रोथ भी हो रहा है, इसके लिए क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 20% के करीब क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है लास्ट 2-3 साल में। ये सचमुच मुझे लगता है कि काफी सारा एक आश्चर्य नंबर है। वो समटाइम्स वी थिंक कि इतने सारे क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो रहा है, बट इसके अगेंस्ट में सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स भी बैठे हुए हैं।
0: अब वक्त आ गया है कि हम हमारी चर्चा को बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की तरफ लेकर चलें। जब हम बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की बात करते हैं तो इसमें दो अहम कदम उठाए गए थे। पहला था बैंक रिकैपिटलाइजेशन और दूसरा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करना। पहले हम रिकैपिटल

0: रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो रिकैपिटलाइजेशन जो है वो कितना अहम कदम था ताकि पुराने नुकसानों को आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सके?
1: नहीं देखिए, रिकैपिटलाइजेशन तो करना था क्योंकि सेक्टर के लॉस था, और रिकैपिटलाइजेशन जब कैसे किया भी था, कोई इनोवेटिव उपाय से गवर्नमेंट ने किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स था, तो उसके लिए क्या था, वो कैश न्यूट्रल था, उसके लिए क्या हुआ था, डेट बढ़े थे लेकिन फिस्कल डिफिसिट उस पर नहीं बढ़े थे, तो सबसे बड़ा पहले ये चीज है। तो उसपे आई थिंक ये मुझे इतना याद है 3 लाख करोड़ का अराउंड रिकैपिटलाइजेशन हुआ था 1-2 साल में, तो सबसे बड़ा चीज वो था। दूसरा जो चीज था कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर उसमें बढ़ गया था, इसके लिए आगे चलते अगर गवर्नमेंट उसको स्टेक को नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको अभी पता है कि थोड़ा सा दूसरा का बात है कि गवर्नमेंट IDBI बैंक को डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले बात है। रिकैपिटलाइजेशन तो होना था, रिकैपिटलाइजेशन हमने 3 ट्रिलियन किया था, लेकिन रिकैपिटलाइजेशन हमने कैसे किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से किया था, इसके लिए हमारा ये कैश न्यूट्रल था, उसका मतलब फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारा डेट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, ये तो पहला बात है। और ये बहुत सक्सेसफुल भी था रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज, लेकिन उसके साथ, इसके साथ जो गवर्नमेंट ने किया है, जो मार्जेस, आपको पता है कि हमारा ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक 27 था, लेकिन आज का दिन मार्जर होकर ये 12 था। आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में अनाउंस किया कि एक बैंकिंग सेक्टर कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका रोल होगा कि बैंकिंग सेक्टर का रोड मैप देखने के लिए। इंडिया में एक डिबेट है, अगर आप इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में जो 4-5 लार्ज बैंक्स है, इंडिया में अभी काफी 12 लार्ज बैंक्स है, उस पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन GDP का 22% होता है, तो ये जो 27 से 12 हो गया, इसके लिए आपको क्या हो गया था कि कंसोलिडेशन हुआ। आगे चलते हमारा कोशिश है कि हमारा बैंक्स दुनिया के सबसे अच्छा बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अगर आप देखें वो बहुत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स है, और इसका SBI फॉर एग्जाम्पल उसका रैंकिंग भी काफी अच्छे है अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स देखें। और आगे चलते हमारा यही कोशिश रहेगा, ये कंसोलिडेशन जो हमने 27 से 12 तक लेके आए, अगर हम और कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, दुनिया का जो सबसे अच्छी बैंक्स है उसमें हमें इंडिया का बैंक्स का भी रहेगा, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल अगर इसे हम चलते रहे तो अगले 4-5 साल से हम उसी तरफ जा सकते हैं।
0: डॉक्टर घोष, क्या मर्जर का मतलब हमेशा मजबूती और एफिशिएंसी होता है या इसका एक दूसरा पहलू भी है?
1: नहीं देखिए, इसका पहले तो बहुत सारे है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको एफिशिएंसी, एंड इसको हम स्केल इकोनॉमीज बोलते हैं। जो काम आप समझ रहे हैं कोई एक बैंक कर रहे हैं, अगर दोनों बैंक एक साथ जुड़ जाए उसमें स्केल इकोनॉमीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक एक एरिया में अच्छा है, दूसरा बैंक दूसरा जगह में अच्छा कर रहे हैं, प्रेजेंस दूसरा तरफ है, तो अगर दोनों बैंक को आप जोड़ दे उसका प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा, और इसको हम स्केल इकोनॉमी बोलते हैं। और उसपे क्या होता है, उसपे खर्चा भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर सारे बैंक्स एक साथ आते हैं तो डिजिटाइजेशन के चक्कर में उसका खर्चा भी कम होता है, तो खर्चा कम होता है, स्केल इकोनॉमीज इंप्रूव होता है, जो अलग अलग मार्केट्स होता है कंसोलिडेट हो जाते हैं, और विजन उसका एक साथ बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बैंकिंग कंसोलिडेशन एक अहम मुद्दा है, तो फ्यूचर में भी ये शायद होगा। और इंडिया को जो मैं आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज हमको करना है कि बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमको मर्जर का जरूरत है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बैंक्स तभी हो सकते हैं जब बहुत सारे बैंक्स एक साथ जुड़ जाए।
0: जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी चर्चा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम इन सब रिफॉर्म्स को एक बड़े रूप में देखें, इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इनके पीछे जो व्यापक विजन था वो क्या था हमारी सरकार का, हमारी लीडरशिप का, और साथ ही साथ हमारी आगे की ग्रोथ स्टोरी, हमारे बैंकिंग सेक्टर की आगे की यात्रा किस तरह की दिख रही है?
1: बैंकिंग सेक्टर, अगर आप मुझे देखें, बैंकिंग सेक्टर का फंडामेंटल साउंड है, स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, अंडररेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंक डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज में बहुत आगे हो चुका है, बैंक्स का आज आप देखें एक फिजिटल एक्सपीरियंस है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 20% तक जा रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ भी आप ज्यादा हो गया, FCNR में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का, आपको पता है कि FCNR डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हमने 140 US billion की ज्यादा मोबिलाइज किया, बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेंथ है, और सारे चीज मिला के

0: जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो विजन है वो 2047 तक एक रोड मैप है, जिसे रोड मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा बैंकिंग सेक्टर की कस्टमर फर्स्ट। इसके लिए इसमें अभी जो डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, एआई का यूज करके बैंकिंग सेक्टर को उसका बेस को बढ़ा रहे हैं। और चैलेंजेस तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग सेक्टर को रहेगा डिजिटाइजेशन का युग होगा साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए बैंक्स को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड विल कंटिन्यूअसली हैपन और फ्यूचर बैंक्स का इंडिया में काफी अच्छा होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बोला था, शायद बिल गेट्स बोले थे कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट बैंक्स बट इज अबाउट बैंकिंग। सो बेसिकली बैंक्स का सर्विसेज के लिए एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड। ये जो करंट जेनरेशन था 10 साल 20 साल में हो सकता है बैंक्स में बैंक्स के तरफ लोग और ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली बैंक को सेवी होना है और ये प्रोसेस जो चलते रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारत का ग्रोथ स्टोरी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा और ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर होश हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें बताए और बहुत ही सफाई से हमें यह समझाया कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे मजबूती की ओर बढ़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका रही। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे थे 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने बारापुला के तीसरे चरण और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दिल्ली में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित। और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली वासियों को 1941 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। श्री शाह ने बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। साथ ही मोदी मिल, सावित्री सिनेमा, फ्लाईओवर और लोनी अंडरपास के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग से राजधानी में आधुनिक, मजबूत और नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे को गति मिल रही है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 शुरू होने से मयूर विहार फेज 1 से सराय कालेखा होते हुए दक्षिण दिल्ली और एम्स तक सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि करीब 11 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर को मौजूदा बारापुला नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे पूर्वी दिल्ली, दक्षिण

0: पूर्वी दिल्ली और नोएडा से आने जाने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा। उन्होंने परियोजना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी।
1: मैं बधाई देती हूँ अपने सारे अधिकारियों को जिन्होंने न जाने कितनी बार यहाँ का दौरा किया, एक एक परमिशन के लिए विभागों को संपर्क लिया और संपर्क करने के बाद उन कामों को पूरा करवाया और आज साक्षात रूप में इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं।
0: वहीं श्रीमती गुप्ता ने बताया कि मुकरबा चौक अंडरपास का निर्माण बाहरी रिंग रोड पर यातायात को अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया गया है। परियोजना में 2 वाहन अंडरपास और 1 पैदल यात्री अंडरपास शामिल है। दिल्ली के PWD मंत्री परवेज साहिब सिंह ने कहा कि बारापुला फेज 3 और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन तथा लोनी अंडरपास और सावित्री सिनेमा मोदी मिल फ्लाईओवर का शिलान्यास दिल्ली की कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिवांग मिश्रा के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था मजबूत करना और प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक तथा त्वरित पहचान करना शामिल है। पहले निर्णय के अंतर्गत छोटी सड़कों पर भी मशीनीकृत सफाई व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए दिल्ली नगर निगम को 30 इलेक्ट्रिक वाहन आधारित मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा। दूसरे निर्णय के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से PM 2.5 और PM 10 के प्रदूषण स्रोतों की लगातार त्वरित पहचान और विश्लेषण की व्यवस्था विकसित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि EV आधारित 30 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की व्यवस्था पर 10 वर्षों में लगभग 300 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत 10 मीटर से कम राइट ऑफ वे वाली लगभग 609 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल की गई हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार सड़कों की धूल, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों से निकलने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, परिवर्तन और जन भागीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। शिवांग के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: दिल्ली मेट्रो ने आज हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग परियोजना स्थलों पर निर्माण श्रमिकों के लिए सूचना, शिक्षा और संचार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इस पहल का उद्देश्य निर्माण कार्यों के दौरान श्रमिकों को उनकी दैनिक गतिविधियों से शहर की वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूक करना था। सत्र के दौरान धूल नियंत्रण के व्यावहारिक उपायों पर विशेष बल दिया गया। श्रमिकों को ये भी सलाह दी गई कि वे खाली अवस्था में चल रही मशीनों को बंद रखें, पर्यावरण मानकों के अनुरूप उपकरणों का इस्तेमाल करें और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत रेलगाड़ी में यात्रा करने वालों के लिए ट्रिप पास की सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से नियमित यात्री पहले से ही अपनी यात्राओं की योजना बना सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। NCRTC ने बताया कि इस सुविधा से बार बार टिकट खरीदने या कार्ड चार्ज करने की जरूरत कम होगी और रोजाना के सफर में काफी समय की बचत होगी। दिल्ली नगर निगम द्वारा सुनियो 2.0 यानी 1+7 संपत्ति कर निपटान योजना 2026-27 की आज शुरुआत की गई। महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत करदाता वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और इससे पूर्व के 7 वित्तीय वर्षों तक की संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे राइजिंग लीडर्स प्रोग्राम के प्रतिभागियों से संवाद किया। इस दौरान प्रतिभागियों को MCD के कार्यप्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और प्रमुख नागरिक दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत आज दिल्ली के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर सीलमपुर के डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ

0: प्रोफेशनल स्टडीज दक्षिण पूर्वी दिल्ली के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज और पूर्वोत्तर दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज में आयोजित किए गए। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सत्यवती कॉलेज, मैत्री कॉलेज, केशव महाविद्यालय और छोटू राम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी विशेष शिविर आयोजित किए। दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत आज दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजधानी के नागरिकों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। श्रीमती पंत ने बताया कि दिल्ली की सड़कों की बेहतर सफाई, धूल नियंत्रण तथा स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा 70 नए मैकेनिकल रोड स्वीपर खरीदे जाएंगे। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 6वीं कोर्ट बैठक की अध्यक्षता की। श्री संधू ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रगति की सराहना करते हुए शोध कार्यों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शोध केवल शोध पत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि उसके निष्कर्षों को दिल्ली की वास्तविक चुनौतियों के समाधान के लिए व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में आज दक्षिणी जिला पुलिस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस ने राजधानी के सुनसान पार्कों में गश्त बढ़ाने और डार्क स्पॉट पर विशेष निगरानी रखने जैसे कदमों की जानकारी दी। इस दौरान अनेक विधायकों ने पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने पर विशेष बल दिया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ लेखाकार और लेखाकार के पद पर कार्यरत इन दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर एक संस्था से संपर्क किया और उसकी लंबित FCRA पंजीकरण में सहयोग करने के बदले रिश्वत मांगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चलता है कि वे रिश्वत के बदले कुछ संस्थाओं के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए उनसे संपर्क में थे। गृह मंत्रालय ने बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए इस मामले में उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। FCRA से संबंधित सभी सेवाएं FCRA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाती है और किसी भी FCRA सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के विशेष योगदान की पहचान करना और सम्मानित करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहल शुरू की है। एक रिपोर्ट।
3: श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसमें बड़े शहरों, सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों, प्रमुख पर्यटन स्थलों और आर्थिक केंद्रों को शामिल करना सुनिश्चित किया है। इस पहल का उद्देश्य तय समय सीमा के भीतर निगरानी और समीक्षा के व्यवस्थित ढांचे के जरिए शहरी स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन, साफ सफाई और नागरिकों की भागीदारी में सुधार करना है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से दुर्गापुर में स्वच्छ भारत टेस्ट बेड एंड इनोवेशन सेंटर भी शुरू किया गया। स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली के संकल्प भवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटर का भी उद्घाटन किया। ये पहल सरकारी कार्यस्थलों में टिकाऊ खपत, दोबारा इस्तेमाल संसाधनों की रिकवरी और सर्कुलरिटी को भी बढ़ावा देगी। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
4: किसान को ठीक दाम मिल जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है और उसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे

0: जोड़ दे किसानों ये तय किया तुअर मसूर उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना से देश भर में हवाई यात्रा अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इससे विमानन कंपनियों, हवाई पर्यटन प्राधिकरणों और संबंधित पक्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए हवाई मार्गों के लिए नेटवर्क रणनीतियां तैयार करने और भविष्य के नए मार्ग के विकास पर चर्चा के लिए मंच मिलेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। श्रीमती गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पुस्तिका सौंपी। इसमें पिछले 1.5 वर्ष में दिल्ली में किए गए प्रमुख विकास कार्यों और जन कल्याणकारी पहलों का विवरण है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदक अपने नाम किए हैं। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत 1 स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आसमान साफ रहेगा। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुला के 3रे चरण और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दिल्ली में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: आवासन और

0: शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थ यात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहर का ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू आज नई दिल्ली में रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। उधर नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। इंडिया हैज रिजेक्टेड द अनवॉरंटेड रेफरेंसेस मेड बाय टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that this is matter pertaining to India's territorial integrity and sovereignty and no external party has any locus standi on the issue. On the IBSA statement, Mr. Jaiswal noted that a meeting at the level of foreign ministers was held between India, Brazil and South Africa on the sidelines of the UN General Assembly in New York. He added that after the meeting, the three countries have come out with a joint statement wherein the collective view of the three countries has been put together. Mr. Jaiswal pointed out that there are several economic issues, development issues and certain political issues that have been reflected. On the comments made by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on cross-border terrorism, Mr. Jaiswal highlighted External Affairs Minister's remarks on cross-border terrorism, terming it a cause of major concern and that countries need to come together to fight the global menace. Defence Minister Rajnath Singh today emphasised that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity.

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है मधुरिमा का। मधुरिमा में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी राग के बारे में आपको जानकारी देते हैं और उस राग पर आधारित गीत हम आपको सुनवाते हैं। तो जी हाँ, आज जिक्र होगा राग भैरवी का। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित ये पहला गीत किशोर कुमार जी की आवाज में।
1: दिल आज शायर है, हम आज नगमा है, सब

राग भैरवी का जो थाट है वो थाट है, यानी कि जो भैरवी है उसका जो परिचय अगर दिया जाए तो वो थाट से शुरू होता है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। आरोह और अवरोह में सात सात स्वर साथ लगते हैं। इसका वादी स्वर मा और संवादी स्वर सा है। गाने का जो समय है दिन का प्रथम पहर है, सुबह 6 से 9 बजे, लेकिन इसकी लोकप्रियता इतनी है कि इसके कारण इसे किसी भी समय गाया बजाया जाता है। अक्सर इसका जो प्रयोग है महफिल को समापन करने के लिए गाया बजाया जाने लगा है अक्सर। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित ये गीत फिल्म संगम से।

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
6: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आपका स्मार्टफोन हो

0: अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड,

जी हाँ, अगर हम इस राग के आरोह की बात करते हैं तो सारे ग म प ध नि सा और अवरोह सा नि ध प म ग रे सा पकड़ ग म प ध प म ग रे सा रे नि सा है। और इसमें भजन, ठुमरी, टप्पा, गजल और हल्के संगीत बहुत ज़्यादा गाए बजाए जाते हैं और ये एक चंचल प्रकृति का भावपूर्ण राग है। और इसी जानकारी के साथ ये राग अब यहीं समेटने की बारी आ चुकी है। मैं विमलेश आपसे फिर मिलने का वादा करते जाती हूँ और एक बेहतरीन से गीत के साथ आप सभी को छोड़ जाती हूँ। फिल्म 420 से, श्री 420 से ये गीत।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने जीता स्वर्ण पदक, महिलाओं की ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में रचा इतिहास। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने हासिल किया स्वर्ण पदक, गुलवीर सिंह ने लगाई मेडल की हैट्रिक। 5000 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक, पूजा ने भी हाई जंप में कांस्य पदक हासिल किया। मुक्केबाजी में अंकुश ने फाइनल में जगह बनाई, नरेंद्र ने जीता कांस्य पदक। एशियन गेम्स क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश के कारण रद्द, सेमीफाइनल में भारत श्रीलंका और पाकिस्तान बांग्लादेश आमने सामने होंगे। और भारतीय मूल की 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन बनी सबसे युवा महिला ग्रैंड मास्टर।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियन गेम्स से, जहां एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज कई पदक देश के नाम किए। वहीं आज एथलीटों ने 2 स्वर्ण पदक भी जीता। नीरू ढांडा हो या फिर महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा हो, दोनों ही इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने निशानेबाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। अपना पहला एशियन गेम्स खेल रहे नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल में 28 के एशियन रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। इस इवेंट में गोल्ड जीतने वाली वे भारत की पहली महिला ट्रैप निशानेबाज हैं।

0: सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: It's the target games champion. So we've got gold with a gold in the women's individual trap event, getting in India their fifth gold. The medalist Keir had clinched silver, but this is the moment of glory for India in the individual event. Yes, well done, Neeru, 26-year-old, born in Jind, Haryana, moved to Madhya Pradesh to.
2: Neeru ne qualification mein 118 ank ke saath shirsh sthan hasil kiya. Final mein unhone 28 ank ke saath Asiai record बनाया और एशियाई खेलों के इतिहास में ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इसके अलावा नीरू एशियाई खेलों में ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में पहली भारतीय मेडलिस्ट हैं। नीरू ने फाइनल में जबरदस्त लय दिखाते हुए एक के बाद एक सटीक निशाने लगाए। उनका पहला मिस उनके 9वें शॉट में हुआ, जिससे वो थोड़ी देर के लिए तीसरे नंबर पर आ गई, लेकिन उन्होंने तीसरी और चौथी सीरीज में परफेक्ट हिट्स के साथ तेजी से वापसी की और 20 शॉट्स में 19 हिट्स के साथ टॉप पर पहुंच गई। उन्होंने 5वीं सीरीज में एक शॉट मिस करने के बावजूद अपनी गोल्ड मेडल की पोजीशन बनाए रखी। फिर उन्होंने लगातार 5 सटीक निशाने लगाकर भारत को 5वां स्वर्ण पदक दिलाया। शानदार गोल्ड मेडल। चीन की न्यूनोंग सन ने 26 अंक के साथ रजत और कुवैत की खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले नीरू ने आज आशमा अहलावत और मनीषा कीर के साथ ट्रैप टीम निशानेबाजी में रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने 3 दिन चले 125 शॉट वाले क्वालिफिकेशन राउंड के बाद कुल 328 का स्कोर बनाते हुए ये पदक देश के नाम करवाया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो आज के दिन का पहला गोल्ड मेडल नीरू ने भारत के नाम किया और इस टूर्नामेंट में जैसे ही नीरू ने आज पदक जीता वो भारत का 5वां गोल्ड मेडल था और उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया क्योंकि वह पहली निशानेबाज बन गई है महिला ट्रैप में जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। आइए सुनते हैं स्वर्ण पदक विजेता नीरू ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा।
3: सुपर हाई लेवल पे फीलिंग है, मतलब काफी एक्साइटेड हूँ। अपने देश के लिए गोल्ड जीता है, नेशनल एंथम अपने देश का बजना मतलब मेरे लिए काफी प्राउड की बात है। तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी थी, लेकिन मैंने अपने आप को काम रखा और अपने आप पे फोकस किया, गोल्ड आया। मेडल मेरी माँ को डेडिकेट करती हूँ सर, और मेरे कोच को डेडिकेट करती हूँ, और पूरे इंडिया को डेडिकेट।
0: उधर ट्रैप निशानेबाज शपथ भारद्वाज ने 117 पॉइंट्स के साथ क्वालिफिकेशन में 8वें स्थान पर रहने के बाद पुरुषों के ट्रैप शूटिंग इंडिविजुअल के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शपथ संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर रहे और कतर के मोहम्मद अल रुमाही और कजाकिस्तान के अली शेर के साथ 3 तरफा शूट ऑफ में शामिल हुए। फिर उन्होंने आखिरी 2 जगहों के लिए शूट ऑफ में जीत हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया। कल शपथ से भी पदकों की उम्मीद होगी कि देश के लिए वो स्वर्ण पदक अपने नाम करें। और अब निशानेबाजी से चलते हैं एथलेटिक्स की ओर, जहां महिला टीम ने रिले स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश को 6ठा स्वर्ण पदक दिलाया है। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये एशियाई खेलों के इस प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: भारत की किरण पहल, पुवम्मा माचितिरा, प्राची और विथ्या रामराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बहरीन दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा। इससे पहले गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, स्नेहा सत्यनारायण और हरिता भद्रा ने 4x100 मीटर मिक्स रिले फाइनल में कांस्य पदक अपने नाम किया। इन खेलों में भारत की आखिरी एथलेटिक्स स्पर्धा में धर्मवीर चौधरी, मनु थिक्की नलिल, जय कुमार और विशाल थेन्नराजू ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले फाइनल में कांस्य पदक जीता था। जापान को स्वर्ण और कतर को रजत पदक मिला था। भारत के देव कुमार मीणा पुरुषों के पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 5.50 मीटर के साथ 7वें स्थान पर रहे। महिलाओं की 800 मीटर में पूजा उल्ला 7वें और पुरुष वर्ग में मोहम्मद अफजल 8वें स्थान पर रहे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अगर प्रतिस्पर्धा की बात करें तो भारत ने लेन 6 से रिले की शुरुआत की और किरण को शुरुआती लेग की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्प्रिंटर किरण ने तीसरे स्थान पर बैटन को पास किया। अनुभवी पुवम्मा ने दूसरे लेग में प्राची को बैटन सौंपा, जो पहले ही 400 मीटर में व्यक्तिगत कांस्य पदक जीत चुकी है। प्राची ने भारत को मेडल की दौड़ में मजबूती से बनाए रखा। इसके बाद आखिरी लैप विथ्या के नाम रहा। विथ्या ने जल्द ही अपनी लय पकड़ ली और आगे चल रहे धावकों से अंतर कम करना शुरू कर दिया। 200 मीटर के निशाना के आसपास विथ्या ने अपनी गति तेज की। विथ्या ने फाइनल लेग की शुरुआत में ही इतनी बढ़त

0: बना ली थी कि वे इस चुनौती का सामना कर सकें। विद्या ने दौड़ के आखिरी हिस्से में अपना संयम बनाए रखा और सबसे पहले फिनिश लाइन पार की और देश को स्वर्ण पदक दिला दिया। और श्रोता, आपको हम ये भी बता दें कि ये एशियन गेम्स 2026 में विद्या का तीसरा पदक था। इससे पहले वे अपने अन्य इवेंट्स में रजत और कांस्य पदक जीत चुकी हैं। ठीक एक दिन पहले उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में दशकों पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था। विद्या के लिए रिले में मिला गोल्ड मेडल उनके शानदार 3 मेडल वाले सफर का बेहतरीन समापन था। उधर गुलवीर सिंह ने इतिहास रचते हुए पदक की हैट्रिक पूरी कर ली है। गुलवीर ने पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में आज के फाइनल में कांस्य पदक जीता। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: गुलवीर ने शानदार दौड़ लगाते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया। बहरीन के बिरहानू बालेव ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि जापान के यामागुची तोमोनोरी ने रजत पदक हासिल किया। इससे पहले गुलवीर ने इसी प्रतियोगिता के 10,000 मीटर और 1500 मीटर इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया था। इस जीत के साथ गुलवीर बीते 40 साल में एशियन गेम्स के एक ही एडिशन में 3 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उनसे पहले पीटी उषा ने एशियन गेम्स 1986 में 4 मेडल जीते थे। गुलवीर 5000 मीटर फाइनल की शुरुआत में आगे रहने वाले ग्रुप के साथ बने रहे और शुरुआती 2000 मीटर के बाद तीसरे स्थान पर थे। रेस के निर्णायक दौर में भी उन्होंने अपनी स्थिति बनाए रखी, लेकिन टॉप 2 स्थानों के लिए चुनौती नहीं दे पाए। गुलवीर ने इससे पहले 2023 के हांगजो एशियन गेम्स में 10,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद गुलवीर ने पुरुषों के 1500 मीटर रेस में एक और सिल्वर मेडल जीता। दूसरी ओर महिलाओं की 800 मीटर फाइनल रेस में भारत की पूजा ओल्ला 7वें स्थान पर ही। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर एथलीट पूजा ने महिलाओं की हाई जंप में कांस्य पदक जीतकर 24 साल के सूखे को समाप्त कर दिया। फाइनल में पूजा ने 1.84 मीटर की छलांग के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। ये एशियन गेम्स में महिलाओं की हाई जंप में भारत का पहला कांस्य पदक है। इससे पहले बॉबी एलासियस ने 2002 में सिल्वर मेडल जीता था। पूजा से पहले सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक अपने नाम किया था। कुशारे ने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ जंप के साथ पोडियम पर जगह बनाई थी। और अब बात मुक्केबाजी पर। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में फजलुद्दीन एक्रिनबोव को हराकर फाइनल में जगह बनाई। अंकुश ने सेमीफाइनल में एक्रिनबोव पर 4-1 से शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। नरेंद्र अपना सेमीफाइनल मुकाबला ओरेलबे के 0-5 के एकमत फैसले से हार गए। इससे पहले परवीन हुड्डा ने चीन की ली शू को 5-0 से हराकर महिलाओं के 65 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में प्रवेश किया। परवीन का गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला चीनी ताइपे की चेन नियन चिन से होगा। अब बात टेनिस पर भी कर लेते हैं। सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश ने टेनिस के पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर के मैचों में शानदार जीत हासिल करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सुमित ने दूसरे दौर में 2023 एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता दक्षिण कोरिया के से ओंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराया, जबकि सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावन पर कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से जीत दर्ज की। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। एशियन गेम्स क्रिकेट के सभी सेमीफाइनलिस्ट तय हो गए हैं। वहीं आज 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश के कारण रद्द हो गए। इस वजह से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बेहतर रैंक के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर महिला क्रिकेटर श्री चढ़नी ने गेंदबाजी रैंकिंग में अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। श्री चढ़नी को एशियन गेम्स में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन का रिवॉर्ड मिला है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: एशियन गेम्स में आज 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने थे। क्वार्टर फाइनल में आज श्रीलंका का नेपाल से और बांग्लादेश का मलेशिया के साथ मुकाबला होना था। ये दोनों ही क्वार्टर फाइनल बारिश की वजह से बिना टॉस के रद्द कर दिए गए। तीसरे क्वार्टर फाइनल से श्रीलंका और चौथे क्वार्टर फाइनल से बांग्लादेश को सेमीफाइनल में भेजा गया है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान और हांगकांग के बीच मैच होना था और दूसरा क्वार्टर फाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाना था। ये दोनों ही मैच भी बारिश के कारण बिना टॉस के ही रद्द कर दिए गए थे। पहला सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल श्रीलंका और भारत के बीच होगा। उधर भारत की श्रीचरणी ने गेंदबाजी रैंकिंग में अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग का नया रिकॉर्ड बना है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद बाएं

0: के स्पिनर अपने करियर के बेस्ट 817 पॉइंट्स तक पहुंच गई। श्री चरणी पहले ही T20 अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज हैं। वैष्णवी स्पोर्ट्स कार।
1: और अब बात तीरंदाजी पर भी कर लेते हैं। भारतीय रिकर्व तीरंदाज नीरज चौहान ने दक्षिण कोरिया के 3 बार के ओलंपिक टीम गोल्ड मेडलिस्ट किम जे डियोक को हराकर रूसों के इंडिविजुअल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने जे डियोक पर 6-4 से जीत हासिल की। नीरज शुरुआत में 3-1 की बढ़त लेने के बाद 3-3 से बराबरी पर आ गए थे, लेकिन चौथा सेट टाई होने से मैच 4-4 से बराबर हो गया। उधर राउंड ऑफ 32 में नीरज ने फिलीपींस के गिरविन गार्सिया को 6-0 से आसानी से हराया और तीनों सेट जीत लिए हैं। और एशियन गेम्स में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब बात शतरंज पर। भारतीय मूल की 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन ने शतरंज में इतिहास रच दिया। बोधना ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना तीसरा और अंतिम वुमेन ग्रैंड मास्टर नॉम खिताब जीता।
0: इंग्लैंड की महिला टीम के लिए टॉप बोर्ड पर खेलते हुए बोधना ने टीम की अगुवाई की। उन्होंने 6 गेम जीते और 11 में से 8 का स्कोर हासिल किया, जिससे इंग्लैंड महिला वर्ग में 15वें स्थान पर रहा। बोधना बोर्ड 1 पर टूर्नामेंट की 13वीं सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रही। इससे पहले सबसे युवा विमेन ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड रूस की ग्रैंड मास्टर कैटरीना लैगनो के नाम पर था, जिन्होंने 12 साल की उम्र में खिताब जीता था। उनके अलावा चीन की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन होयू यफान ने भी 12 साल की उम्र में यह खिताब जीता था। शिवानंदन ने यूरोपियन स्कूल्स चैंपियनशिप 2022 में सभी 24 मुकाबले जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था।
1: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव में स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.ear@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
0: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर

0: रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
4: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
5: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
4: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
6: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया।

0: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
1: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
2: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं।
3: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें DBT के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपये मिलता है।
1: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। DBT ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे,

0: कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Defence Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defence preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Keralam and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400 meter relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent.
3: The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interest. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner, and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean.

0: मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में पशुपालन बीमा के डिजिटलीकरण की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रामीण पशुधन क्षेत्र में पशु बीमा पोर्टल के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह मौजूद हैं। एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: एसपी सिंह जी, किस तरह से देखते हैं जो कल ये पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो ग्रामीण पशुधन क्षेत्र में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप समझते हैं?
2: देखिए, इस देश में पशुओं की संख्या और किसानों की समस्याएं, एक तरह से समझिए कि जितनी ज्यादा संख्या है और पशुओं की देखभाल और जो उनकी सुरक्षा का प्रबंधन और किसानों की समस्याओं का निदान, एक ही मंच पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराने की यह एक व्यवस्था है। और ये डिजिटल व्यवस्था होने से पशुओं का पंजीकरण ऑनलाइन होने लगा है, बीमा कवरेज आसानी से मिल जाएगा, सभी प्रक्रियाएं एक ही जगह पर पूरी हो जाएंगी, पारदर्शिता और प्रक्रिया तेज हो जाएगी, बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी, बिना दावों के क्लेम और निपटान तेजी से होगा, धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी, रियल टाइम निगरानी की जा सकती है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो योजनाओं की वास्तविक समय पर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से और किसान की ओर से मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जा सकती है, डेटा प्रबंधन की कार्यप्रणाली में सुधार करने में सहूलियत होगी, सरकार और विभागों को सही स्थिति से समझ में आएगी। जो पूरा पोर्टल बनाया गया है, कह सकते हैं कि पशुपालकों के अनुकूल उनकी सुविधा को, उनकी सहूलियत को देखते हुए इस तरह का बनाया गया है। इस देश के एक छोर से दूसरे छोर के जो बहुभाषी लोग हैं, किसी भी भाषा में वो उस पर अपनी जानकारी लेना चाहे या देना चाहे, तो हिंदी अंग्रेजी समेत करीब अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाएं भी उपलब्ध हैं उस पोर्टल पर। आप जिस भी भाषा में जाकर अपनी बात कहना चाहें या अपनी जानकारी या अपना आंकड़ा उस पर डालना चाहें, ये सब आपको उपलब्ध हो जाएगा।
1: जी,
2: सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है किसानों को, वो बीमारी या दुर्घटना से जो होने वाले नुकसान होते थे किसानों को भारी स्तर पे, पशुपालकों को इससे निजात मिलेगी, मुश्किलें नहीं होगी और उनके जो आर्थिक झटका लगता था, मुश्किल आती थी, वो एक तरह कह सकते हैं एक रक्षा कवच मिल जाएगा, जोखिम से बचाव हो जाएगा। दूसरी चीज की पशुपालकों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन होते थे पशु, उनसे वो सुरक्षा जब उन्हें मिलेगी तो उनकी भी सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी,
1: जो पशुपालकों को इस तरीके से जो सुरक्षा कवच की आपने बात की है, ये उनकी आर्थिक स्थिति

0: इको कितना सहारा दे पाएगा या सहयोग कर पाएगा?
1: ऐसी व्यवस्था है कि किसान इस देश में आप समझिए कि 70% जो पशुपालक हैं उनके पास देश का 80% जो पशु हैं उनके पास हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, मझोले किसान हैं या भूमिहीन किसान हैं जिनके पास कुछ भी और साधन नहीं है गांव में, वो रोजी रोटी और लोगों के यहाँ मजदूरी, खेतिहर मजदूर जिन्हें आप कह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। और अगर मान लीजिए आजीविका के इस साधन पर कोई संकट आता है या उस पर कोई मुश्किलात पेश आती है, उनका पशु बीमार होता है, उनमें दूध देने की क्षमता घट जाती है या पशु दुर्घटना पर किसी बीमारी से या कैसे मृत्यु हो जाती है, ऐसे में तो उसके बेचारे की सारी रोजी रोटी ही खत्म हो जाएगी। सरकार ने जो ये रक्षा कवच उन्हें दिया, मैं इसलिए उसे रक्षा कवच कहूंगा, उससे उनको बहुत फायदे होंगे, उनकी मुश्किलात कम होंगी।
0: इस बीमा से जिस तरह से आपने बताया कि बीमारी, क्या इसमें प्राकृतिक आपदा को भी शामिल किया गया है या जो महामारी से संबंधित दिक्कतें आती थी उसको भी इसमें शामिल किया गया है?
1: देखिए ऐसा है कि पशुओं को किसी भी तरह से हानि पहुंचती है, ये सबका सारा कुछ एक साथ जोड़ दिया गया, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है क्योंकि सरकार ने इसका सारा भार खुद उठाने का दायित्व लिया है, अपने कंधे पर लिया है, सरकारी खजाने से ही सब कुछ दिया जाएगा। यानी पशुपालक को किसी भी स्तर पर कहीं भी किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, संकट उसके ऊपर न आए, जोखिम से उसको बचाव हो, इसके लिए सरकार ने बाकायदा सारी सुविधाएं दी हैं। अब आप समझिए यहाँ तक जितने का पशु होगा उसके जो आधार बनाया गया है किस तरह से पशुओं का बीमा किया जाएगा, पशुओं का बीमा किया जाएगा उनके मूल्य के हिसाब से, वो कितनी उनकी बाजार का उनका मूल्य क्या है, मूल्य के हिसाब से जो उनका बीमा बनता है, बीमे पर जो प्रीमियम बनता है, प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार वहन करेगी, मात्र 15% बहुत नॉमिनल होगा, बहुत कम धनराशि होगी प्रीमियम के तौर पर जो किसान को देनी होगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसान की सुरक्षा का पूरा प्रबंध हर तरीके से, चाहे वो प्राकृतिक तौर से हो या कृत्रिम तौर पर से, कैसे भी अगर दुर्घटना बस की मौत होती है या उसको कोई प्राकृतिक ऐसी कोई आपदा आती है जिसमें बीमारी कोई लग जाती है, सामूहिक संक्रामक तरह की ढेर सारे रोग पशुओं में आते हैं। अभी एक हाल के वर्षों में आपने देखा एक बड़ा रोग संक्रामक चल रहा है लंपी, जिससे उनकी क्षमता घट जाती है, दूध देने की क्षमता घट जाती है, उत्पादकता घट जाती है। तो ऐसे में अगर पशुओं की सुरक्षा का प्रबंध नहीं होगा, उनको इस तरह का बीमा का कवच नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तो सबसे बड़ा संकट उन किसानों पर आएगा, उन पशुपालकों पर आएगा जिनके पास रोजी रोटी का एकमात्र साधन है पशुपालन।
0: आपने बताया कि जो इसका प्रीमियम आएगा उस प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार वहन करेगी और 15% हिस्सा ही पशुपालकों को या पशुधन रखने वाले किसानों को वहन करना होगा। इसमें लाभार्थी का सत्यापन करना या ये जो इस तरह की जो पॉलिसी ली जाएगी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह, कितना आसान होगा या उसके लिए कौन से प्रयास करने होंगे एक पशुधन इस्तेमाल करने वाले को या किसानों को?
1: देखिए इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक के जितने कमजोर कड़ी थी, जहाँ जहाँ से मुश्किलें पेश आया करती थी, उन सबको किसी भी तरह के घपलेबाजी, किसी तरह का भ्रष्टाचार, किसी तरह का मुश्किल ना आए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। ये जो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है पशुपालकों की, देखिए क्या है इसमें, पशुपालक किसान, पशुपालन विभाग, बीमा कंपनियां और पशु चिकित्सक जो लोकल लेवल पे हर ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक में क्या पंचायत स्तर पर वेटरनरी के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये सबका एक मिला जुला मंच है। इस मंच पर हर तरह की सुविधा दी गई है, जैसे हर पशु के कान में एक टैगिंग की जाती है, ईयर टैगिंग बोलते हैं, उनके कान में एक टैग लगता है 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का ईयर टैगिंग जो लगाया जाएगा वो धोखाधड़ी रोकने और पशुओं की सटीक पहचान के लिए इसे भारत पशुधन डेटाबेस के तौर पर से इसे लिंक किया गया है, ताकि कोई गड़बड़ी न करे किसी भी तरह का, कोई और पशु दिखाकर, किसी और पशु के मरने की सूचना देकर किसी तरह की बीमा कंपनियों के साथ धोखाधड़ी न हो सके। सरकार ने यह पुख्ता प्रबंध किया है और इसकी जो क्लेम की है, मान लीजिए किसी का पशु मरता है तो उसे कोई मुश्किल पेश ना आए, तो उसे ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा और ये निपटान की प्रक्रिया इतनी जल्दी होगी कि 21 दिनों के अंदर ज्यादातर दावे पूरे कर लिए जाएंगे, यानी उनके क्लेम का पैसा जो उनको मिलना है वो मिल जाएगा, क्योंकि उनके साथ पशु के मरने की सूचना कौन देगा, ये उसी प्लेटफॉर्म पर जो वेटरनरी का डॉक्टर जो उसका स्टेक होल्डर है, जो उसका एक पक्षकार है, जब बीमा होगा तो ये बीमा कंपनियां, किसान और पशुपालक और ये जितने भी

0: इकट्ठा है, ये सब एक साथ मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी डालेंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डालेंगे और उस पर डालेंगे उसकी डेथ सर्टिफिकेट, ये जारी करेगा वो डॉक्टर, जारी करने के 21 दिन के अंदर, हो सकता है इससे पहले भी उसका दावा मिल जाए।
1: आपने ये तो बात करी कि अगर किसी तरह से उसको बीमारी होती है, किसी तरह से दुर्घटना होती है, क्या प्राकृतिक आपदाओं से भी इन पशुधन को बचाने के लिए इस तरह की बीमा का सुरक्षा कवर मिलेगा?
0: सरकार द्वारा जो ये किया गया है, असमय मृत्यु से होने वाली आर्थिक, मतलब जो किसानों को मिलेगा, हाँ ये दोनों को मिलेगा।
1: मतलब इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी, अगर जैसे कि आजकल बहुत सारे भारतीय क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप,
0: बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, भूस्खलन हो जाए, कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए, तो ऐसे समय में भी ये इसका प्रबंध किया गया है कि उसके उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बीमा कंपनियों के थ्रू सरकार करेगी।
1: पशुधन का मूल्यांकन करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या उस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे सकेंगे?
0: देखिए क्या है, इसके लिए भी सरकार के पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर पशु की खरीद बिक्री भी होती है। एक प्लेटफॉर्म और है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पशुपालन मंत्रालय के पास, विभाग के पास, और हर डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं, हर स्टेट में कह सकते हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां से, क्योंकि पशुओं की खरीद बिक्री का एक बड़ा मुश्किल होती थी कि अगर मान लीजिए हम 500 किलोमीटर दूर से कोई पशु खरीदते हैं और उसको हम कहीं और ले जाना है तो जो उसके ढुलाई और बहुत मुश्किलें पेश आती थी, तो उस पशु के स्वास्थ्य के बारे में, उस पशु की प्रोडक्टिविटी के बारे में, उस पशु के क्वालिटी के बारे में, वो किस ग्रेड का है, वो किस प्रजाति का है, ये सारी चीजें वेटनरी का डॉक्टर प्लस वो जो किसान के यहाँ दूध देने की क्षमता कितनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितनी बार वो बच्चा दे चुकी है, ये सारी डेटा बेस ऑलरेडी होगा, उसके आधार पर बाजार मूल्य तय किया जाता है और उसी मूल्य को आधार बनाया जाएगा।
1: इस पोर्टल का उपयोग किस तरह की किया जा सकता है, क्या सिर्फ कंप्यूटर पे ही, या इसमें कहीं कोई मोबाइल ऐप भी है जिसके द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है?
0: अभी स्टार्टिंग में इसको यार पोर्टल पर ही इसका उपयोग करेंगे
1: जी।
0: जो आपके सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं इस तरह के, CSC जिसको कहते हैं ना, उसके मार्फत आप जाकर के इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अपने पशु को आपको उस पर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि जो बीमा कंपनी है बिना रजिस्ट्रेशन के तो देगी नहीं। आपके पशु का जो बीमा कंपनी है जो देगी, आपको क्लेम देने वाली है, या जो बीमा देगी, जो प्रीमियम वसूलेगी सरकार से या किसान से, वो कंप्लीट जानकारी रखेगी और आपको अपने सामुदायिक CSC केंद्र से जाकर करके उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ एक काम आपके यहाँ हो सकता है कि आपके ऐप अगर आप उस पर डाउनलोड कर लें, हमें लगता है आने वाले दिनों में जल्दी ही इसे ऐप के थ्रू भी संचालित किया जाने की व्यवस्था की जाए जी।
1: किसानों की जो आय आपने सुनिश्चित करने की बात करी, तो क्या इसके लिए सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए क्या कोई और भी उपाय किए हैं जिससे इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके और सभी पशु पालकों को या किसानों को इसका लाभ मिल सके?
0: सरकार के पास सारा डेटा है, क्योंकि जो सरकार लोगों को भेजती है तरह तरह की सूचनाएं मौसम के बारे में, खेती किसानों के बारे में देती है, तो ज्यादातर पशुपालक किसानी खेती से जुड़े हुए हैं, उनके सबके डेटाबेस सरकार के पास है जिनकी इन्फॉर्मेशन लगातार जाती रहती है, और अब उसी के थ्रू SMS के थ्रू सबको ये बराबर जानकारी दी जाएगी और दी जा रही है हमें लगता है। और इसके अलावा जो प्रचार और के संसाधन है, जो हम और आप बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के थ्रू, ये हम और आप बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं उन्हें ये जानकारी देने के लिए ही, उन्हें जागरूक बनाने के लिए ही, कि आपका जो बहुमूल्य पशु है, जो आपके पास ऐसे कीमती पशुओं की मौत हो जाने या उनके नुकसान हो जाने या उनकी उत्पादकता क्षमता घट जाने पर उन्हें नुकसान न हो, इस तरह की जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि जैसे उनकी फसलों के लिए बीमा योजना है, अगर फसल पर कोई नुकसान आ जाता है तो उन्हें कैसे बीमा प्राप्त हो जाता है, ठीक ऐसे ही उनके पशुओं के बारे में सारी जानकारी, क्योंकि 12 डिजिट का टैग लगा है पशु के कान में, यह टैग के थ्रू उसको पता चल जाता है कि पशु की लोकेशन क्या है, पशु सच में मर गया है या नहीं मरा है, या किसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है, तो ये सारी जानकारी किसान को उसी के थ्रू दी जाएगी, डिजिटली ही आसानी से पहुंचा जा सकता है किसान तक।
1: इसमें कुछ रियल टाइम मॉनिटरिंग या निगरानी व्यवस्था की भी सुविधा
0: के लिए ही जो 12 का ये टैगिंग की गई है, उसका मायने यही है, वो एक कह सकते हैं आर्यन टैग है, यही बैठ के आप पता कर सकते हो कि उस पशु की लोकेशन क्या है, उस पशु की बराबर आपको स्टेटस देना पड़ेगा, अगर मान लीजिए पशु बीमार होता है तो इसकी जानकारी भी उसी टैग के थ्रू आपके अपने ऐप पर लगातार देनी पड़ेगी या CSC के थ्रू देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अचानक आपका पशु मर गया, आपने एक दिन बताया कि अभी आज मर गया, जबकि वो मान लीजिए 15 दिन से 20 दिन से महीने से 2 महीने से बीमार चल रहा है, उसकी क्षमता घट रही है, उसका इलाज नहीं हो रहा, नहीं, ये सब आपको लगातार करना पड़ेगा, इसकी सूचना देनी पड़ेगी और वेटनरी डॉक्टर को लगातार संपर्क में रहना होगा, उसको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट को ही आधार बनाया जाएगा। रियल टाइम तभी तो

0: पता चलेगा कि पशु की स्थिति क्या है, किसी भी बीमा कंपनी को जो भुगतान करेगी क्लेम वो कैसे दे पाएगी। इसलिए किसान बराबर जानकारी देता रहेगा, अगर उस पशु किसी तरह के संकट में है तो इसकी भी जानकारी आपको उसमें देनी पड़ेगी।
1: आमतौर पर काफी जटिल व्यवस्था लगती थी कि उम्मीद करते हैं कि जो पशुपालक हैं या जो किसान हैं या सीमांत किसान हैं जिनका मुख्य आय का स्रोत पशुपालन है तो उनके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था इस बीमा पोर्टल के माध्यम से हो सकेगी।
0: ये जो व्यवस्था की गई है लाभार्थी जो अभी दिया जा रहा है कि प्रीमियम का सिर्फ 15% ही देना पड़ेगा पशुपालक को, बाकी सरकार वहन करेगी। इसके लिए एक सीमा तय की गई है। इसकी सीमा यह है कि अगर आपके पास गाय या भैंस अधिकतम 5 मवेशियों का ही आप ये करा सकते हैं।
1: अधिकतम संख्या भी इसमें निर्धारित की गई है,
0: अधिकतम सीमा इसकी तय की गई है। और इसका जो भुगतान की व्यवस्था की जाएगी वो 60% केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी। तो ये व्यवस्था की गई है।
1: एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे सभी श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में पशुपालन बीमा के डिजिटलीकरण की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकार खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को।

0: इतना कि तुअर मसूर उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक सांस्कृतिक विरासत, तीर्थ यात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। संस्कृति मंत्रालय और वर्चुअल भारत ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य सिनेमाई कहानी कथन, डिजिटल अनुभव और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना है। संस्कृति मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि MOU का आदान प्रदान संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल और प्रसिद्ध फिल्मकार भारत बाला ने किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, Urad and Masoor at minimum support price.
3: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Tur, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Rabi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
2: The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade agreements and help farmers secure better returns for their produce and enable India to emerge as a major food basket for the world. The Election Commission today issued notification for the biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and 1 seat in Uttarakhand. BJP leaders and union ministers Hardeep Singh Puri, BL Verma, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, Ramji of BSP and 6 others are completing their terms on the 25th of November. The Commission has also issued notification for bipoll in 1 seat of Rajya Sabha in West Bengal. The seat was vacant due to the resignation of TMC MP Rukmini Malik. Nomination has started from today and polling will be held on 16th October. India has rejected the unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address.

0: Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, this is a matter pertaining to India's territorial integrity and sovereignty, and no external party has any locus standi on the issue. On the IPSA statement, Mr. Jaiswal noted that a meeting at the level of foreign ministers was held between India, Brazil and South Africa on the sidelines of the UNGA in New York. On the comments made by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on cross-border terrorism, Mr. Jaiswal highlighted External Affairs Minister's remarks on cross-border terrorism, terming it a cause of major concern, and that countries need to come together to fight the global menace. Finance Minister Nirmala Sitharaman today met her Qatari counterpart Ali bin Ahmed Al Kuwari on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Both leaders discussed expanding India's UPI payment system across Qatar and strengthening financial cooperation between the two countries. In the Asian Games 2026, India today delivered a strong performance, adding 8 medals, including 2 gold, 1 silver and 5 bronze medals in relay, shooting, athletics and boxing. India won women's 4x400m relay gold, clocking 3 minutes 29.69 seconds at Nagoya in Japan. India also bagged bronze in men's 4x400m relay and another bronze in mixed 4x100m relay. Earlier, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win gold in the women's trap individual event in Japan. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, सीमा पर गतिरोध के समाधान से भारत चीन संबंधों में सुधार आया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भारत का एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी कार्रवाई की कड़ी निंदा की। और एशियाई खेल में भारत ने महिला 4x400m रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत और 26 कांस्य पदक सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंध में सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉ जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि संबंध में अमेरिकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में की गई टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार

0: आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की।
1: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
0: भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि तकनीकी स्तर पर गंगा जल संधि को लेकर बैठकें जारी हैं। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पेशेवर स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। चालक दल के सदस्यों के बीच संवाद और सामुदायिक संपर्क से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। INS तरकश को गुरुवार को लोगों के लिए देखने के लिए खोला जाएगा। भारतीय दूतावास नैरोबी ने सोशल मीडिया पर ये बात कही। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की वार्षिक बैठकों सहित सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पेत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने UPI NPI डिजिटल भुगतान को जोड़ने को शीघ्र चालू करने पर भी बातचीत की। जिनेवा प्रेस क्लब में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कश्मीरी नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र के दौरान यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोकतांत्रिक स्वशासन, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय स्वामित्व, आवागमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के शासन को सुनिश्चित करने की मांग की गई। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राजनयिक को मौजूदा हालात के बारे में रूस के नजरिए से अवगत कराया गया। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात हुई थी। इस दौरान भारत और रूस ने अपने खास और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर INS रणवीर ने अपनी मौजूदा तैनाती के अंतर्गत ओमान की सलालाह बंदरगाह का दौरा किया। ये दौरा भारत और ओमान के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और समुद्री संबंधों को दर्शाता है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशिया

0: खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। उधर मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, सीमा पर गतिरोध के समाधान से भारत चीन संबंधों में सुधार आया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भारत का एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। और एशियाई खेल में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत और 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says border standoff resolution has helped improve India-China ties. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Finance Minister Nirmala Sitharaman describes Saudi Arabia as a trusted and valued strategic partner of India. Activists slam Pakistan over POK crackdown at Geneva meet. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400 meter relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jaishankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said that India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve interests of any nation.
3: We had long been telling the Chinese that a standoff between us, a dip in our relationship, doesn't help either of us. In fact, it is third parties who will take advantage of that. So we also maintained consistently a very elementary principle of statecraft, which is don't get locked into a problem which benefits others. And it took a little while Chinese side to agree with that, for whatever reason. But I don't think that long standoff served our interests. It certainly didn't serve theirs. And to the extent there is an improvement in our relations, I think it certainly helps our position.
2: Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there is an understanding on the trade agreement. India has rejected the unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, this is a matter pertaining to India's territorial integrity and sovereignty and no external party has any locus standi on the issue.
4: India rejects the unwarranted references to Indian Union Territory of Jammu and Kashmir made by the President of Turkey during his UNGA address. This is a matter, as you would understand, pertaining to India's territorial integrity and sovereignty, and no external party has any locus standi on this issue.
2: On the comments made by External Affairs Minister Dr. S.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। ये जो महकी महकी सी ढलती हुई रात है, इन्हीं लम्हों से आती ख्वाबों की बारात है। आओ इसे जी लें, मोहब्बत से सजा लें, कोई साथ छेड़ें, कोई प्यार का गीत गा लें।

ये रात का खामोश समा, आसमान पर झूमता चंद्रमा, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, चुपचाप सी सो जाए तो लगता है कि तुम हो, और जब रात के किसी साए में तुमसे मुलाकात होती है तो आंखों की स्याही से अंधेरे चमक उठते हैं, रात गाने लगती है और दिल अनायास ही कह उठता है, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम तो।

सचमुच बड़े अच्छे लगने लग जाते हैं उनसे मुलाकात के पल, जब वो साथ होते हैं तो ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, सब कुछ बहुत प्यारे, बहुत सुहाने लगने लगते हैं। किसी ठंडी हवा के झोंके के मानिंद, या धड़कनों की धक धक जैसा, या हलक में उतरते किसी मीठे मीठे एहसास जैसा, तन्हाइयों की रातों में महबूब की याद जैसा, या फिर कुछ कुछ इस गीत के जैसा।

फिर तुम और मैं, हर मोहब्बत की कहानी उसी एक प्यार की कहानी है जो सदियों से चल रही है, और हर मोहब्बत से उसी की महक उठती है, हर धड़कनों में उसी के गीत हैं और हर आंख में उसी के महके हुए ख्वाब हैं।

गुलजार साहब के कलम आंखों से बहुत वाबस्ता रही है, तभी तो फिल्म घर के इस गीत को सुनते वक्त महके हुए ख्वाब पलकों पर सिमट आते हैं और दिल में मोहब्बत के हजार रंग अंगनाइयां लेने लगते हैं। गुलजार साहब ने आंखों की महकती खुशबू को भी बहुत करीब से महसूस किया है। क्या आपने भी कभी देखी है आंखों की महकती खुशबू? चलिए हम रूह से इसे महसूस करते हैं गुलजार के लिखे फिल्म खामोशी के इस गीत में।

जी हाँ, प्यार को प्यार ही रहने दो। प्यार अपने आप में एक मुकम्मल रिश्ता है, एक मुकम्मल जिंदगी। प्यार ही से तो जिंदगी में रंग होता है, और जब ये रंग जिंदगी के रंग में घुल जाता है ना, तो सारी दुनिया हसीन लगने लगती है। लेकिन ये इतनी भी ज्यादा ना हो जाए कि ये दिल उनसे जुदाई का दर्द बर्दाश्त ना कर सके और ये

इस गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश।
0: Benchmark domestic indices decline, Sensex falls nearly 250 points, Nifty settles at 22,716. India is working to become world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. And global crude oil prices decline over 1%.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,716 के स्तर पर दर्ज। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रामोहन नायडू ने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का प्रयास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक की गिरावट।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज हुई. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% के नुकसान से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की गिरावट रही. वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से कारोबार की शुरुआत में से ही आज दबाव रहा. दोपहर बाद बाजार में कुछ सुधार के बावजूद सूचकांक लगभग 6 महीनों के निचले स्तर पर दर्ज हुए.
0: Benchmark domestic equity indices declined for the second consecutive session today. The Sensex lost 243 points or 0.33% to close at 72,529. The Nifty fell 64 points or 0.28% to settle at 22,716. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index shed 1%, while the small cap 100 index dropped 0.8%. Markets opened lower this morning, tracking weak global cues. In the first hour of trade, benchmark indices touched the day's low before staging a reversal.

0: Despite a moderation in losses during the afternoon session, the benchmark indices closed near their six-month lows, as persistent global and domestic headwinds, along with pressure related to the monthly Nifty Futures and Options FNO expiry, continued to weigh on market sentiment.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 18 कंपनियों में आज गिरावट रही। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.7%, HCL टेक 2.3% और TCL 1.7% के नुकसान से बंद हुए। हालांकि अडानी पोर्ट 4.4%, सन फार्मा 1.1% के साथ साथ टाटा स्टील और कोटक बैंक 1% की बढ़त बनाने में कामयाब भी रहे।
0: In the sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors edged lower. Among the top laggards, consumer durables skidded 2%, focused IT lost 1.8%, and insurance dropped 1.6%. In contrast, services gained 1.5%, telecommunications rose 1.3%, and metal added 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,462 companies declined, 1,925 advanced and 209 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार दर्ज हुआ। डॉक्टर शर्मा, किस तरह से देखते हैं बाजार की दिशा को? बाजार में कहां कुछ घबराहट सी थी जो बाजार वैश्विक परिदृश्य में कहीं तो बिकवाली के दबाव में रहा, आज लगभग एक बार उसने आज दिन के अपने निचले स्तर को भी छुआ। हालांकि बाद में थोड़ा सा सुधार तो हुआ, लेकिन ओवरऑल आज टोटल माने तो बाजार में गिरावट ही हावी रही।
2: जी बिल्कुल, बाजार काफ़ी वीक था आज, और कारण यही है कि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है वो अभी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो उसका जो उम्मीदें थी कि शायद कुछ ट्रंप में और ईरान में बात होगी, शायद ट्रंप साहब कोई डिसीजन लेंगे, पीस वार्ता शुरू होगी या फिर हॉर्मुज को खोलने की बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। और दूसरे नंबर पे जो एक यूएस ट्रेजरी बिल जो है, जो उसका जो बॉन्ड यील्ड है वो राइज कर रहे हैं, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए या फिर कैपिटल फ्लोज के लिए अच्छे नहीं हैं। और तीसरे नंबर पे जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ दिनों में वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्रूड ऑयल तो बहुत ही अभी
1: ऊपर की
2: चिंता का कारण तो है ही है। और पहले क्या होता था कि वॉलेटिलिटी आती थी, एक बार प्राइसेस ऊपर जाके फिर वापस करेक्शन लेके कुछ ऐसी न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती थी कि करेक्शन हो गई है, कि अभी कुछ शांति वार्ता की बात होने लगी है, तो प्राइसेस एकदम से करेक्ट होते थे। लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है, अभी प्राइसेस ऊपर जाके 105, 106, 107 के आसपास सेटल हो रहे हैं, वहीं पे ऊपर नीचे थोड़ी वॉलेटाइल है। बट जैसे पहले एक बड़ी करेक्शन आ जाती थी जब प्राइसेस ऊपर जाए, वो नहीं हो रहा है। तो अगर ये ऐसे ही स्टेबल रहते हैं इस लेवल पे जाके, तो काफ़ी मतलब एक वरिंग फैक्टर है, खास करके हमारे लिए भी, क्योंकि हम बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं क्रूड के। और जो जैसे आपने बात की कि मार्केट्स में पहले काफ़ी नेगेटिव था, डिसेलरेशन थी, उसके बाद मार्केट्स रिकवर भी हुई, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आज एक तो एक्सपायरी डे था, डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस में एक्सपायरी डे था, तो जो शॉर्ट कवरिंग्स थी काफ़ी जो ट्रेडर हैं उन्होंने अपनी रिकवरी पोजिशन, जब मार्केट एक लेवल पे जाके और डिसेलरेट नहीं हो रही है, एक लेवल पे आ गई है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी बना है, अभी मार्केट काफ़ी लो पे है, जो जैसे आपने बताया कि 2-3 साल के लो स्तर पे मार्केट है,
1: तो एक
2: अभी अभी तो 6 महीनों के स्तर पे है। और जैसे पहले 23,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन अभी 23,000 से भी नीचे है मार्केट। तो यहाँ पे क्या होता है कि तो बाइंग आ जाती है, क्योंकि ऐसा एक बाइंग एडवांटेज भी आता है इन्वेस्टर के पास, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल तो स्ट्रांग है। ये जो भी ग्लोबल हेडविंड्स है उसी की वजह से, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसी की वजह से, अदरवाइज इंडिया के।
0: हाउ डू यू व्यू द स्टॉक एक्सचेंजेस व्हिच वंस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कैस व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑगस्ट? Typically, markets are heightened volatility on monthly expiry days. However, CAS has led to such wild swings, which you noticed today as well in the benchmark indices, and that too at the end of the sessions, How do you react to the gas?

0: bringing about such volatility in the market?
1: Yes, I agree that at the closing time, some volatility exists in the...
0: within 2 seconds it happens.
1: Yes, in the cash market and in the options also. But otherwise, I believe there is some stability during the day session. When you are in the mid of the day, then the stability is also there. But at the closing time, some volatility happens in the last 10-15 minutes. So I think that is majorly retailers are not investing in the options. So that's why I think they are not impacted. But in the trading segment, this is a worrying factor. And SEBI is also taking measures to resolve it. And I believe there will be some plausible solutions in the coming times.
0: A consultation paper is available till 3rd October.
1: Yes,
0: okay,
1: yes.
0: Also, the Indian benchmarks have now logged one of the longest weekly losing streaks in years. How much of this fall is domestic because of earnings, valuations, FPI flows versus external, which you mentioned also, oil, US yields, global risk off, etc.?
1: Yes, I believe this is majorly because of the international factors, because our fundamentals are strong, very, very strong, because now we are very good in the IIP numbers. Our GDP numbers are 7.8%. Though inflation worries are there, that too because of the international factors, as WPI is significantly increased to the level of more than 9%, and that is also passing through to the CPI. But overall, the other growth indicators, whether the exports are growing 17-18% in merchandise segment, and IIP numbers, core infrastructure, all are steady and growing significantly. But at the global level, the news like crude prices are going up and there is no sign of discussion between Iran and US, and again the treasury 10-year treasury bill yield are high and dollar is again strengthening and the US has increased the Fed rate. So all these are the negative factors for the financial markets. That's why the global volatility impact the markets in emerging Asia, like India is impacted by such volatility. So but domestically I think there is no bad news from any segment.
2: अभी थोड़ी दिन बाद ही बाजार में दूसरी तिमाही के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे
1: जी.
2: और आम तौर पे बाजार तिमाही नतीजों को पहले से ही भांप लेता है, महसूस कर लेता है,
0: फैक्टर इन कर लेता है
2: जी. क्या बाजार अभी भी उन ट्रिगर्स से कहीं उत्साहित होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि उनके नतीजों को बाजार उससे उत्साहित नहीं है?
1: देखिए, नतीजों में क्या होता है कि उससे पहले मार्केट्स इतनी डाउनसाइड या इतनी डिसेलरेशन नहीं लेती हैं. थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन ये जो मेजर इम्पैक्ट आता है, जो डिसेलरेशन है, जो अभी हम कुछ पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड फॉल आया, जो मार्केट्स पहले कंसोलिडेट कर रही थी समवेयर बिटवीन 23,000-23,500, बट नाउ मार्केट्स डिसेलरेट बिलो 23,000. बट बिकॉज ऑफ दी
2: 23,000 के स्तर से नीचे अगर आता है तो क्या ये चिंता का सबब है या ये अवसर का समय है?
1: देखिए, मैं तो इसको अवसर
0: का आज 22
1: अवर मैं तो इसको अवसर का
2: अवसर मानूंगा.
1: यस, अवसर मानूंगा, क्योंकि अब आप 23,000 के नीचे हैं तो मार्केट का जो वैल्यूएशन है, आई बिलीव दैट इज वेरी लुक्रेटिव नाउ. आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए मार्केट इज वेरी गुड, आई वुड से, बिकॉज एक ना एक दिन तो यूएस और ईरान में पीस होगा, सीज फायर होगा दोनों.
2: बट उसके पहले कितना नुकसान हो चुका है,
1: पहले कितना नुकसान होगा, वो मार्केट्स ऑलरेडी उसको फैक्टर इन कर चुके हैं.
2: अगले सप्ताह मौद्रिक नीति भी आनी है रिजर्व बैंक की, तो वो कैसे प्रभावित होगी?
0: डॉक्टर शर्मा, एज माय कॉलीग सेड, आरबीआई एमपीसी पॉलिसी इज नेक्स्ट वीक, सो आर वी सीइंग डीरेटिंग ऑफ इंडियन इक्विटीज after years of premium valuations, which you also just pointed out, or is this mainly a liquidity and risk premium story?
1: I think this is the story of the uncertainty, actually, at the global level. That is impacting the market sentiment. Otherwise, markets hold a strong potential to bounce back. If some

0: demand, world demand, because world growth is also decelerated. So oil will not sustain if some talk or some discussion happens between US and Iran. Oil will fall drastically. As I earlier said, that this is very volatile. But now these days, when there is no talk is happening between the two conflicting situations, so that's why oil is becoming sustainable at these numbers. Okay, but so this is not for the longer period.
1: So how quickly, Dr. Sharma, do you expect higher oil prices to feed into domestic inflation? And what does that mean for RBI's rate path in the next 6 to 12 months?
0: I think because now the sentiment is on the basis of the stable repo rate and some rational oil prices were there earlier before 6 months, but now these are very volatile. So these are impacting the sentiments and the price cost margins of the producers. So if the oil goes up, then again there will be some more impact on the price cost margin, the profitability of the producers, and that can impact the sentiment of the businesses.
2: चलिए कच्चे तेल के बढ़ नजर डालते हैं सराफा बाजार पे. घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 0.2 प्रतिशत के नुकसान से 147,667 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ, जबकि चांदी 0.6 प्रतिशत की गिरावट से 221,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. वैश्विक परिस्थितियों में सोने और चांदी की कीमत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है?
0: देखिए, मेरे को तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरा अपना व्यू है, मेरे को लगता है कि अभी दिस इज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डॉलर अभी स्ट्रेंथन हुआ है थोड़ी देर के लिए, और ये गोल्ड में जो फॉल आया तो इसमें
2: कहीं ना कहीं अवसर बनते हैं. जी डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद.
0: थैंक यू.
2: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्स डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,716. इंडिया इज वर्किंग टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, सेज सिविल एविएशन मिनिस्टर. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन ओवर 1%. दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथरा. टिल टुमारो, गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन में आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। पहला गीत फिल्म भीगी रात से मोहम्मद रफी की आवाज में आपके लिए।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और आइए अब सुनते हैं नागिन फिल्म का गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की।

0: फिल्म गोरा और काला केसी गीत के साथ ये गीत मेरे मन में यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आपके लिए होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: एंड नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही। भूमि संसाधन विभाग ने कल नई दिल्ली में नदियों के पुनर्जीवन पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में नदी क्षेत्रों के विकास और जल संरक्षण के लिए जलग्रहण क्षेत्र के विकास के जरिए प्रस्तावित पायलट परियोजनाओं पर चर्चा हुई। भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए उन क्षेत्रों का भी विकास जरूरी है जहां से नदियों में पानी पहुंचता है। निर्वाचन आयोग ने कल दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष शिविर लगाए। इन शिविरों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना है। आयोग के अनुसार बड़ी संख्या में छात्रों ने शिविरों में पहुंचकर SIR और फॉर्म लेने या जमा करने से जुड़ी जानकारी ली। आयोग ने बताया कि अगले दौर के विशेष शिविर 7 और 8 अक्टूबर को लगाए जाएंगे। आयोग ने युवाओं से इन शिविरों का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने असम अरुणाचल प्रदेश अंतरराज्यीय सीमा की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों राज्यों की 12 क्षेत्रीय समितियों की संयुक्त मैदानी यात्राओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने सभी समिति अध्यक्षों से असम के अपने समकक्षों के साथ मिलकर मैदानी दौरे जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि बातचीत और आपसी समझ के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों का जल्द और आपसी सहमति से समाधान किया जाना चाहिए। भारत की स्पिन गेंदबाजी श्रीचरणी ने ICC महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। श्रीचरणी ने 817 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में आगे बढ़ी है। एशियाई खेलों के फाइनल में 3 विकेट लेने के बाद उनकी रेटिंग 754 अंक हो गई है। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन 723 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष 5 में शामिल हो गई हैं।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

आराधना फिल्म का गाना आपने सुना रफी और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। रात गहराती जा रही है, शहर की रफ्तार थमने लगी है और ऐसे में दिल को चाहिए बस थोड़ा सा सुकून, कुछ मीठी यादें और कुछ सदाबहार नगमे।

दो रास्ते फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती पर नजर ठहर जाए तो वक्त जैसे वहीं रुक जाता है। कभी उनकी जुल्फों की नरमी दिल को छू जाती है तो कभी आंखों की गहराई अपने आप कोई कहानी कह जाती है। और जब बात हो ऐसी दिलकश अदाओं की तो क्या ही कहने।

मोहब्बत भी कितनी अजीब है, मिलने की तमन्ना भी रहती है और जब सामने वो आ जाए तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और आंखें शर्म से झुक जाती हैं। यही तो है मासूम मोहब्बत की उलझन। हीर रांझा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

शायद मोहब्बत की कुछ कहानियां पूरी होकर नहीं, अधूरी रहकर ही दिल में जिंदा रहती हैं। महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आपने सुना, रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 12:34 और ठीक 7 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जब इश्क हद से गुजर जाए तो दिल को ना दुनिया की परवाह रहती है ना किसी अंजाम का डर, बस एक इल्तिजा रह जाती है कि इस दीवानी को उसकी मोहब्बत की सजा भले मिले मगर उसके दीवाने को पत्थर से कोई ना मारे। आपने सुना लैला मजनू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

इश्क में शिकायत भी हो, उलहना भी हो और दिल की हार भी, तो अंदाज कुछ ऐसा ही हो जाता है। सामने वाला बेपरवाह निकला, मगर दिल फिर भी उसी पर आ गया। प्यार में शायद यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसे दिल का अपना नजदीकी समझा, वही कभी कभी दिल का दुश्मन बन बैठा। आपने सुना कालीचरण फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

0: कर वक्त और हालात के साथ उनके रंग बदलते दिखाई देते हैं। कोई पल भर में अपना बन जाता है तो कोई अपनी असलियत छुपाकर कई चेहरे ओढ़ लेता है, और शायद इसीलिए कुछ लोग जब चाहें अपने लिए एक नई दुनिया बसा लेते हैं। दाग फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: यूं ही तुम मुझसे

सच्चा झूठा फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी has any locus standi on this issue।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नक्सलवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कल एक नई कृषि पहल की शुरुआत हुई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लद्दाख में उगाए गए लीलियम फूलों की पहली व्यावसायिक एयर कार्गो खेप को रवाना किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह लद्दाख के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ठंडे रेगिस्तान के रूप में पहचाने जाने वाले लद्दाख में अब भी फूलों की खेती सफल हो रही है। प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की पहल पर फूलों की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। देश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम नेपाल में लोगों को भारी नुकसान के बीच अपने घरों और बस्तियों में लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्याग्दी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और उड़ीसा में भी ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला।

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 1 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूँ राखी आपके साथ।

कभी कोई धुन कानों से होकर सीधे दिल तक पहुंचती है, तो कभी किसी गीत के बोल बरसों पुरानी तस्वीर आंखों के सामने ले आते हैं। फिल्मी संगीत की यही खूबसूरती है, वक्त बदलता रहता है लेकिन अच्छे गीत अपनी जगह बनाए रखते हैं। तो आइए आज की इस खूबसूरत महफिल में कुछ ऐसे ही नगमों का साथ हो जिनमें है मिठास, यादों की गर्माहट और सुनने का एक अलग ही सुकून। अभी आपने सुना था भाभी फिल्म का गाना, रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने।

प्यार अगर दिल में गहराई से उतर जाए तो फिर चैन भी उसी का, बेचैनी भी उसी की। इंतजार में बीतती रातें और किसी की याद में ठहरते पल, जैसे दिल को आराम करना ही नहीं। मोहब्बत में डूबे दिल की यही तो दास्तान है। आपने सुना जेलर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

जिंदगी की असली खूबसूरती शायद उसी पल महसूस होती है जब इंसान किसी को अपना मानकर उसके सुख दुख में शामिल हो जाता है। मोहब्बत में खुद को भुला देना, किसी की खुशी को अपनी खुशी समझ लेना, यही तो प्यार का सबसे खूबसूरत रंग है। और जब दिल सचमुच किसी का हो जाए तो फिर जिंदगी की हर राह उसी के नाम से जुड़ी हुई लगती है। अनारकली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने

संसार में जब अपना कोई इतना अजीज हो जाए कि उसकी खुशी ही अपनी खुशी लगे, तो दिल बस यही दुआ करता है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए। अमर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने।

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 28 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत सिर्फ कह देने का नाम नहीं, इसे महसूस करना पड़ता है, कभी भरोसे में, कभी इंतजार में। शायद इसीलिए दिल कहता है, एक बार इस मोहब्बत को परख कर तो देखिए, हो सकता है इस एहसास में आपको वो सुकून मिल जाए। बाबर फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।

कभी कभी दिल में दबे जज्बात इतने गहरे हो जाते हैं कि आंखें खामोश रहें मगर दिल खुद अपनी कहानी कहने लगता है। बिछड़ने का दर्द हो या किसी अपने की याद, कुछ एहसास आंसुओं के रास्ते बाहर आते हैं। आह फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

दिल ही तो है फिल्म से आपने ये गीत सुना मुकेश की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकल स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सेबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का

संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का मकसद सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंचने में मदद करना है। देश भर से शहरी, स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने जायरोप्लेन के लिए पायलट लाइसेंस जारी करने से संबंधित नया सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CAR जारी किया है। जायरोप्लेन के पायलट लाइसेंस के लिए ग्राउंड और फ्लाइंग ट्रेनिंग सिलेबस नामक इस CAR में DGCA से जायरोप्लेन श्रेणी का पायलट लाइसेंस हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जमीनी और उड़ान प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। देश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम नेपाल में लोगों को भारी नुकसान के बीच अपने घरों और बस्तियों में लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरला, माहे, कराईकल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी आपके साथ।

तेरी मेहरबानियां फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज में। एस एच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। रात सुरमई हो, हवाओं में हल्की सी ठंडक हो और चारों ओर दिन भर की भागदौड़ के बाद एक सुकून उतर आया हो, ऐसे में पुराने फिल्मी गीतों की मिठास इस रात को और भी खूबसूरत बना देती है। आइए इस सुरमई रात में यादों के कुछ पन्ने पलटें और उन नगमों का को साथ लें जो कभी दिल के बहुत करीब थे और आज भी सुनते ही वही एहसास जगा देते हैं।

क्या खूब बात कही है। सुकून ना सोने में है ना चांदी में, असली चैन तो उस अपने के साथ में है जिसके होने से जिंदगी में प्यार और अपनापन महसूस होता है। धन दौलत अपनी जगह, लेकिन दिल को ठहराव और चेहरे पर मुस्कान अक्सर किसी अपने के साथ से ही मिलती है। साहिब फिल्म का गाना आपने सुना एस जानकी और बप्पी लाहिड़ी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:31 और ठीक 40 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

प्यार में डर कैसा, जब दिल किसी के नाम हो जाए तो फिर दुनिया की परवाह कहाँ रहती है। मोहब्बत करने वाले अपने एहसास को छुपाते नहीं बल्कि पूरे यकीन के साथ उसे जीते हैं, और शायद इसी जज्बे को इस खूबसूरत गीत ने अपनी खुशबू से नवाजा। जी हाँ, हीरो फिल्म से आपने ये गीत सुना मनहर उदास और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन किसी एक की याद दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि फिर वही हर वक्त याद आने लगता है। वक्त चाहे कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, दिल बस उसी को ढूंढता है। सिंदूर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहब्बत में कभी दिल घबराकर किसी के हवाले हो जाता है तो कभी वही दिल इंतजार और बेचैनी में तड़पने लगता है। इश्क का यही तो रंग है, जहां एक दिल अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और दूसरा उसी मोहब्बत की कसक को महसूस कराता है। जमीन आसमान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:51 और ठीक 46 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमारा ही प्रोग्राम आप सुनेंगे अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना यीशुदास की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। वक्त हुआ है 2:58 और ठीक 41 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में बहुसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवॉरंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। भारत और उभरती आर्थिक व्यवस्था मंच के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दास ने बताया कि 2021-22 से 2025-26 के दौरान भारत ने औसतन 7.9% की वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। श्री दास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस

0: वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संबंध में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन चल रहा है। 2 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Akhila. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi yesterday, Mr. Singh said, "The country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep." The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated that Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. India has reaffirmed its commitment to the goal of a nuclear weapons-free world and the complete elimination of nuclear weapons. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sivir George, delivered India's statement at the high-level plenary meeting to commemorate the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons at the UN headquarters in New York. Secretary George affirmed India's unwavering commitment to combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance at the high-level meeting on the 25th anniversary of adoption of the Durban Declaration and Programme of Action, DDPA, at the ongoing UNGA. India's High Commissioner to Malawi, Amiraram Gujar, yesterday received a delegation from the United Nations Development Programme, UNDP, and the UN Capital Development Fund, UNCDF, to discuss the eKYC and Digital Identity Project in Malawi, supported through the India-UN Development Partnership Fund. UNDP Malawi resident Representative Fenella Frost and UNCDF Regional Head in Nairobi Rufaro Sikyasu led the delegation. Earlier this month, another project supported by the same fund was inaugurated in Sierra Leone, a rehabilitated skills training center in Kenema. The High Commission of India there joined the government of Sierra Leone, UNDP and the UN country team for the inauguration on the September 18th. Election Commission EC has organized special camps at different colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. The camps will continue till today. EC said that a large number of students visited the camps with queries related to SIR and obtaining or submission of forms. It added that the block-level officers, BLOs, present at these camps guided the students to fill their forms, collected the filled-in forms and also resolved queries related to the SIR. Another round of camps will be organized on 7th and 8th of next month. Special camps will also be held at all polling station locations on 4th and 11th of next month for enrollment of all categories of electors. The Commission said that the new applicants attaining the age of 18 years on or before 1st of October this year should apply in Form 6 for inclusion of their names in the electoral roll. The Ministry of Labour and Employment has organized a

के 3:11 हुए हैं। हमराही कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, मोहब्बत में रूठना और मनाना ये सिलसिला चलता ही रहता है। रूठना एक तूफान की तरह होता है जो सब कुछ बिखेर देता है, और मनाना उस ठंडी हवा जैसा जो फिजा को महका देता है। जब से है वो खफा खफा तो हर पल उदास है, जब से है वो खफा खफा तो हर पल उदास है। वे यह नहीं जानते कि उन्हीं से तो हमारे जीवन में उल्लास है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म शागिर्द से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, खफा होना और फिर मान जाना और फिर कसम भी ले लेना कि आगे से अब कभी नहीं रूठेंगे, पर ये कसम कब तक टिकती है वो कुछ पता नहीं। कसम खाना तो आसान है दोस्तों, पर उस कसम पर

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म तेरे मेरे सपने से अभी आपने गीत सुना। जन्मों जन्म का साथ है अपना, ये बात दिल से मान लो। जन्मों जन्म का साथ है अपना, ये बात दिल से मान लो। इस रूह के बंधन को तुम भी अपनी किस्मत जान लो।

नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म त्रिशूल से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, जौहर महमूद इन गोवा फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में।

संभलने की कोशिश तो बहुत की मैंने ए दिल, संभलने की कोशिश तो बहुत की मैंने ए दिल, मगर तुम्हारी याद आई और मन फिर बहक गया। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में आइए सुनते हैं उत्सव फिल्म से ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म कश्मीर की कली से अभी आपने गीत सुना। तपस सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है। तपस सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती हैं, धड़कना दिल को पड़ता है।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म अप्रैल फूल से अभी आपने गीत सुना। कुछ अनकही सी बात कह जाती हैं ये आंखें, कुछ अनकही सी बात कह जाती हैं ये आंखें, बिन बोले ही सारा जहां कह जाती हैं ये आंखें। झुकी तो इकरार बन गई, उठी तो सवाल, जाने कितनों के दिलों पर वार कर जाती हैं ये आंखें।

मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में फिल्म सीआईडी से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लव स्टोरी से।

दोस्तों, अब हमारा भी जाने का वक्त हो चला है और हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: No external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आज सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्यभर की प्रमुख अवसंरचना परियोजना के मॉडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कराईकल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान

सुबह के 4:11 और 12 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का सुबह की सुहानी बेला में स्वागत है। दोस्तों, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। एक नए उत्साह के साथ हम सुबह उठते हैं और दुनिया भी हमेशा नई ही दिखाई देती है। दोस्तों, बहारें हमेशा आती जाती रहेंगी, पर आप अगर सच्चे और अच्छे मन से देखोगे तो दुनिया हमेशा नई ही दिखेगी।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म कस्मे वादे से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, मुस्कुराहट का सही अर्थ एक बच्चा ही बता सकता है। बड़े लोगों की मुस्कुराहट में तो काफी अर्थ होते हैं, और जो हर हाल में मुस्कुराना सीख जाता है वो धरती का सबसे सुखी इंसान बन जाता है।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म धूल का फूल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी एक खेल है, यहाँ कोई पास हो जाता है तो कोई फेल, कोई यहाँ पर खिलाड़ी है तो कोई अनाड़ी। आइए सुनते हैं सीता और गीता फिल्म से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं श्री 420 फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

दोस्तों, दुनिया में क्या चल रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भी आकर यहाँ देखें कि उनकी सृष्टि में क्या हो रहा है। बहार फिल्म से आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हाथी मेरे साथी से अभी आपने गीत सुना। बड़ी संग दिल है ये दुनिया, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। बड़ी संग दिल है ये दुनिया, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। अश्कों में छुपा लूं मैं सारे जहां को, मगर मुझको रोने की आदत नहीं है।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से अभी आपने गीत सुना। तूफान तो हर रोज रास्तों को डराने आते हैं, तूफान तो हर रोज रास्तों को डराने आते हैं, पर जिनके मन में आग हो वो रास्ते खुद बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मन में अगर आपके आग है, कुछ करने की इच्छा है, तो आप जरूर कुछ कर जाएंगे। बस इसके लिए जरूरी है मन की शक्ति और आपका आंतरिक विश्वास। वाणी जयराम की आवाज में फिल्म गुड्डी से आइए सुनते हैं ये गीत।

सौतन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने गीत सुना। इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। भारत के स्पिन गेंदबाज श्री चरणी ने आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। श्री चरणी ने 817 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। वो पहले से ही T20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर एक गेंदबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ा है। श्री चरणी ने महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में भारत के अच्छे प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में आगे बढ़ी हैं। एशियाई खेलों के फाइनल में T20 विकेट लेने के बाद उनकी रेटिंग 754 अंक हो गई है। इंग्लैंड की सोफी एक्लिस्टोन 723 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष 5 में शामिल हो गई हैं। उन्होंने एशियाई खेलों के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रन बनाए थे। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट

सुबह के 5:11:10 हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह सुबह प्रभु का ध्यान सिमरन मन को एकदम शांत कर देता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मन को शांत करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

हरिहरन और अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आपने ये भजन सुना। दोस्तों, अगर हम जिंदगी में देखें तो इसमें थोड़ी खुशियां हैं और थोड़े गम हैं, थोड़ी हानि है तो थोड़ा लाभ है, थोड़ी आशा है तो थोड़ी निराशा भी है, और इसी का नाम ही जीवन है।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म पिया का घर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, ये रंग बदलती दुनिया बिल्कुल पतंग जैसी है, कब कौन क्या रंग बदल लेगा कुछ पता नहीं, और ये भी नहीं पता

सुबह के 5:30 और 20 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म शर्मीली से।